मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 9 अक्टूबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: भारती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और

0: बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय करती है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। आराधना कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है।

0: उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र में। श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर शुभ वाणी है, ये तीनों ही असली रत्न हैं। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए सुरेश वाडेकर के स्वर में गाई इस भक्ति रचना को।
3: कबीर का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, पर्यायवाची शब्द अकबर, जिसे अल्लाह ने अपने नाम में शामिल किया। अतुल ज्ञान के अक्षय भंडारी कबीर का अपने नाम में दास लगाना उनके बड़प्पन का प्रमाण है। चलिए हम आपको काल के ऐसे खंड में लिए चलते हैं जहां आध्यात्मिक व साहित्यिक मार्तंडों ने अपने आप को दास की श्रेणी में रखा। स्वामी हरिदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, संत रैदास एवं संत शिरोमणि कबीरदास। कबीर कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। उन्होंने बड़ा सच्चा सौदा किया। वे जानते थे कि अमीरी के हिस्सेदार तो बहुत जुड़ जाएंगे, लेकिन फकीरी एकमात्र फकीर का हिस्सा होती है। कबीर ने मानस दोहन कर सार भरे दोहे संसार को दिए और हर दोहा अपने आप में परिपूर्ण है। इससे इन दोहों के रचयिता के संपूर्ण होने में कहां संदेह है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे गजल पर भी दोहों की परछाई पड़ी है।

सजा दरबार है मैया का और भक्त झूम रहे हैं। जो ले शरण माँ की उनके सारे संकट दूर होते हैं। शेर पर हो सवार मेरी माँ शेरावाली, श्रोताओं माँ की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और अब लीजिए सुनिए नरेंद्र चंचल के स्वर में गाई इस भक्ति रचना को।

श्रोताओं, इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अहमदाबाद में सत्याग्रह का प्रयोग।

0: 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला और उन्होंने इसे अहिंसक आंदोलन का रूप दिया। यही अहिंसक आंदोलन उनका सत्याग्रह था। अफ्रीका में सफल होने के बाद सत्याग्रही आंदोलन का विशाल रूप लेकर गांधी जी भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़े और सफलता प्राप्त की। गांधी जी कब कब और कैसे सत्याग्रह का प्रयोग करते थे, ये तो उनकी छोटी लड़ाइयों से जाना जा सकता है। चंपारण और खेड़ा के बाद आज गांधी चर्चा में आप सुनेंगे अहमदाबाद में गांधी जी ने कैसे सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये वार्ता डॉक्टर कृष्ण स्वरूप आनंदी की है।
1: अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई में सत्याग्रह के सिद्धांत का विकास हुआ था। गांधी जी ने

1940 में खुद स्वीकार किया था, मैं अपने को संगठित हड़तालों का एक निपुण संचालक मानता हूँ। इस दिशा में पहला सफल प्रयोग मैंने दक्षिण अफ्रीका में अत्यंत विपरीत परिस्थिति में किया था। अहमदाबाद में मैंने सत्याग्रह के शास्त्र का विकास किया है। मैं जानता हूँ कि हड़तालें अव्यर्थ या अदम्य बनाई जा सकती हैं। अहमदाबाद में गांधी जी को दूसरों की इच्छा से मिल मज़दूरों की हड़ताल में शामिल होना पड़ा था। कुछ समय पूर्व

0: अदम्य बनाई जा सकती हैं। अहमदाबाद में गांधी जी को दूसरों की इच्छा से मिल मजदूरों की हड़ताल में शामिल होना पड़ा था। कुछ समय पूर्व जब अहमदाबाद में प्लेग का प्रकोप हुआ था, तब मिल मालिकों ने बुनकर मजदूरों को प्लेग बोनस देकर काम पर आने की ओर आकर्षित किया। कहीं कहीं यह बोनस मजदूरी के 70-80% तक था। महामारी के खत्म होने पर यह बोनस अचानक बंद कर दिया गया। इससे मजदूरों में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने कम से कम 50% का बोनस इस आधार पर मांगा कि महंगाई बढ़ रही है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल मालिक सेठ अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी से मिलकर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थता करके समझौता कराने का अनुरोध किया। ध्यान देने की बात है, इससे कुछ दिन पहले अम्बालाल साराभाई ने ही उदारतापूर्वक दान देकर गांधी जी के साबरमती आश्रम को बंद होने से बचाया था। आवश्यक जांच पड़ताल और गहन सामूहिक विचार विमर्श के बाद यह तय पाया गया कि मिल मालिक मजदूरों को 35% बोनस देंगे, किंतु मिल मालिक मुकर गए। मिल मालिकों ने मजदूरों के सामने यह शर्त रखी थी कि वे 20% बोनस पर काम करने को राजी हो जाएं, अन्यथा तालाबंदी कर दी जाएगी। मजदूरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी मिल मालिकों की इस गलत बयानी और वादा खिलाफी से काफ़ी क्षुब्ध हुए थे। मजदूरों ने शांतिपूर्ण ढंग से महात्मा गांधी और अम्बालाल साराभाई की बहन सुश्री अनुसुईयाबेन के नेतृत्व में हड़ताल शुरू कर दी। कुछ दिनों तक हड़ताल पर रहने के कारण मजदूरों की आर्थिक दिक्कतें बढ़ती ही जा रही थीं। 35% बोनस की मांग को लेकर मजदूरों का जो सत्याग्रह चल रहा था, उसमें मिल मालिकों ने 20% के बोनस का लालच देकर मजदूरों की हड़ताल तोड़ने की कोशिश की। मजदूरों की मूल और वाजिब मांग 35% बोनस की थी। कहीं यह भी न चला जाए, इस संशय में पड़कर मजदूर डगमगाने लगे। यहाँ तक कि बहुत से काम पर वापस लौटने को तैयार हो गए। मजदूरों ने प्रण करके सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अब प्रतिज्ञा भंग देखकर नेता के रूप में गांधी जी को हार्दिक क्लेश हुआ और मजदूरों के इस पतन पर उपवास प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने। इस उपवास के संबंध में गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया था, उसके कुछ अंश यहाँ उल्लेखनीय हैं। हम इस निश्चय पर पहुँचे कि 35% की वृद्धि उचित मानी जा सकती है। अतएव विराट सभा में मैंने घोषणा की कि मिल मजदूर 35% वृद्धि मंजूर करेंगे। और यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि मजदूरों को महामारी के कारण 70% वृद्धि मिलती थी और उन्होंने अपना यह इरादा जाहिर किया था कि बढ़ती हुई महंगाई के आधार पर वे 50% से कम वृद्धि मंजूर नहीं करेंगे। परंतु उनसे कहा गया कि वे अपने 50% और मिल मालिकों के 20% के बीच की इस दर को मंजूर करें। बिल्कुल संयोग की बात है कि मैंने जो दर निश्चित की वो दोनों के बीच थी। थोड़ी बुदबुदाहट के बाद सभा ने 35% की वृद्धि लेनी स्वीकार की। इसके साथ ही ये भी मान लिया गया था कि जिस क्षण मिल मालिक पंच की मार्फत फैसला कराना स्वीकार कर लें, उसी क्षण मजदूर भी वैसा ही करें। जो प्रतिज्ञा शपथ पूर्वक ली गई है, मिल मजदूरों द्वारा उसका भंग होना मेरे लिए असह्य है। इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मजदूरों को 35% वृद्धि नहीं मिलेगी अथवा जब तक वे हार कर घुटने नहीं टेक देंगे, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूँगा। गांधी जी के इस उपवास का जादुई असर हुआ। मजदूरों में एकाएक स्फूर्ति आ गई और वह एक एक करके यह घोषणा करने लग गए कि जब तक उनकी मांग मान नहीं ली जाती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। गांधी जी के उपवास और मजदूरों के उत्साह ने मिल मालिकों की संवेदना को झकझोर दिया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, जिसने मजदूरों की 35% वेतन वृद्धि की मांग स्वीकार कर ली।
1: अब सुनिए गांधी जी की प्रार्थना प्रवचन का एक अंश, जिसमें उन्होंने शांति मार्ग पर चलने का आवाहन किया है। इस अंश का पाठ विजय चौधरी के स्वर में।
2: गांधी जी ने शांति मार्ग के विषय में कहा, हमने इस तरह से मानना शुरू कर दिया है कि हम सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज आपने सुना अहमदाबाद में सत्याग्रह का प्रयोग, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे ऑर्गेनिक सब्जी की खेती और इस विषय पर बात करेंगे डॉक्टर सूर्य नारायण से दिनेश पांडे।
1: डॉक्टर सूर्य नारायण भैया, आप उद्यान विभाग के विशेषज्ञ हैं, तो हम आपसे जानना चाहते कि जो उन किसान भाई हमारे सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी का व्यवसाय के रूप में आप अपनाए हैं, तो कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हो ई मनसा सब कर रहा था, तो ये एक जो विधि है ऑर्गेनिक सब्जी का खेती
2: जी,
1: ये का है, ऐसे भैया हर कैसे लाभ ले सकत हैं, इसके बारे में बताएं।
2: अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ साथ अब स्वास्थ्य परक एवं पर्यावरण मित्र खाद्य उत्पादन की बात कही जा रही है।
1: अच्छा अच्छा,
2: किसान भाई जानते हैं कि सब्जियों को ताजे रूप में प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिससे उन पर रसायनों के अवशेष रह जाते हैं।
1: जी जी,
2: इतना ही नहीं, अकेले रसायनों के सहारे अब उत्पादकता बढ़ाना संभव नहीं रह गया है, इसीलिए जैविक खेती एक सामयिक पहलू है।
1: अच्छा,
2: इससे बहुआयामी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सब्जियों की जैविक खेती कैसे की जाए, इसके लिए जैविक पदार्थों के स्रोतों, प्रयोग करने का समय एवं विधियां, प्रयोग करने में सावधानियां तथा वांछित मात्रा का ज्ञान किसान भाइयों के लिए आवश्यक है। जहाँ तक जैविक स्रोतों का प्रश्न है,
1: जी जी,
2: जीव का कोई भी अंश इस उद्देश्य से मिट्टी में मिलाया जाए कि वह पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे, जीवांश या जैविक पदार्थ कहलाता है।
1: अच्छा,
2: वनस्पतियों से प्राप्त अवशेष व उप उत्पाद जैसे सूखी घास, पत्ती, सड़े गले पुष्प व फल, ठूंठ, भूसा, पुआल, जलकुंभी, जंगली खरपतवार, गन्ने की खोई तथा चीनी मिलों का मल, लकड़ी का बुरादा, पशुओं के नीचे का बिछावन तथा जले हुए पौधों की राख का प्रयोग उपलब्धता

0: के अनुसार किसान भाई कर सकते हैं।
1: एक बात यही जानना चाहे डॉक्टर भैया कि जौन आप बताया कि भाई जीव का कौनो अंश
0: जी
1: यहाँ उद्देश्य से माटी में मिलावा जाए
0: जी
1: कि उपौधन का आवश्यकता, तो जीव का कौने जीव का अंश मिला जा सकत?
0: जी जी आज ये तो मैं पौधों का जिक्र कर रहा था। जहाँ तक ढैंचा, सनई, लोबिया हरी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। खलियाँ हैं जैसे महुआ, नीम तथा सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जंतुओं के से प्राप्त अवशेषों में पशु मलमूत्र, सींग व खुर की खाद, हड्डी का चूरा, खून की खाद, चिड़ियों की विष्ठा, मनुष्य जनित मलमूत्र, मछली का चूरा, इनका भी प्रयोग किसान भाई उपलब्धता के अनुसार कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: जीवांशयुक्त तालाब की मिट्टी मिल जाए तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बागों की मिट्टी या ऐसी पुरानी नालियां जो काफ़ी गहरी हैं उनका भी प्रयोग, उनकी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: कुछ विशेष प्रकार से तैयार जैविक खादें अब आ रही हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ के विष्ठा होती है जो डाइजेस्ट करके निकालता है, पचा करके, उसकी खाद बहुत ही पोषक तत्व से भरपूर होती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नाडेप खाद इसी प्रकार की है, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं।
1: एक बात हो भैया कि ये जोन आप बताओ तो है ना कि किसान भाई ये जोन जैविक स्रोत हैं
0: जी,
1: जोन आप बताएं, एक प्रयोग अपने सब्जी के खेती में कैसे कर सकते हैं, कि का तरीका बा?
0: इनको सब्जी में प्रयोग करने का, जैसे हर चीज़, हर मतलब खाद उसके जैविक स्रोतों का अलग अलग प्रयोग है। सामान्यतः सब्जियों का जीवन काल 6 माह से ज़्यादा नहीं होता है।
1: जी जी,
0: पशुओं व वनस्पतियों के अवशेषों को अंतिम जुताई के समय रोपण व बुआई से पूर्व खेत में बिखेर कर कल्टीवेटर से मिलाकर पाटा लगाएं।
1: जी,
0: खलियों को पौध रोपण से 15 दिन पूर्व मिलाएं। महुआ की खली रोपण के 1 माह पूर्व प्रयोग करें। वर्मी कंपोस्ट व सींग की खाद का खड़ी फसल पर छिड़काव करें। बायो फर्टिलाइजर से नर्सरी से पौध उखाड़ने के बाद शोधित करें।
1: अच्छा,
0: खड़ी फसल में छिड़काव भी इन जैव उर्वरकों का कर सकते हैं। हरी खाद का प्रयोग रोपण के 1 माह पूर्व करें। जैविक स्रोतों की आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग न करें।
1: अच्छा,
0: गोबर की खाद, कंपोस्ट, अन्य जंतु वनस्पति खादें 20 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। खलियों को 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सींग की खाद 1 किलो प्रति हेक्टेयर, जैव उर्वरकों का 50 ग्राम प्रति 10 किलो गोबर की खाद में कल्चर बनाएं तथा ऐसा कल्चर 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
1: अच्छा,
0: जीवाणु कल्चर से बीज शोधन करें, इससे बीज अंकुरण बढ़िया तथा पौधा स्वस्थ पैदा होता है।
1: एक बात ही भैया कि जोन मात्रा आप बताएं है कि 1 हेक्टेयर का मतलब 4 बीघा के हिसाब से
0: जी, पक्के 4 बीघे
1: पक्के 4 बीघा में एक प्रयोग कर सकते
0: जी, जी।
1: एक बात हो भैया कि इतनी जो जैविक स्रोत बा एक प्रयोग करे में
0: जी,
1: किसान भैया हरंग के कुछ सावधानियों को जरूरत बा?
0: हाँ, जैविक स्रोतों को पूर्णता सड़ने के बाद ही प्रयोग करें। अध सड़े तथा बिना सड़े जीवांश खेत में सड़ने हेतु आवश्यक पोषक तत्वों को चूस लेते हैं जिससे खेत कमजोर हो जाता है।
1: जी जी,
0: खेत में दीमक का भी प्रकोप बढ़ता है क्योंकि अधसड़ा जीवांश दीमकों का भोजन होता है।
1: जी जी,
0: खरपतवारों के बीज पुनः खेत में पहुंच जाते हैं जिससे खरपतवार नियंत्रण की समस्या हो जाती है।
1: जी,
0: बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग सब्जियों में शाम को करें।
1: जी,
0: धूप में सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। यदि मृदा में जीवांश पदार्थ कम हूँ तो कल्चर की मात्रा दुगनी यानी 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
1: जी जी,
0: सूखे की दशा या पानी के अभाव में सब्जियों में जैविक खादों का प्रयोग 1/4 कर दें।
1: अच्छा,
0: अन्यथा खादें पानी की मांग पौधों से पूरी करने लगती हैं
1: जी जी,
0: तथा पौधों के अंदर का पानी चूस लेती हैं और पौधा मुरझाकर मर जाता है। खादों का प्रयोग 15 सेंटीमीटर गहराई से ज़्यादा पर न करें क्योंकि सब्जियों की जड़ें इसी स्तर से पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं।
1: अच्छा,
0: बरसात में ढाल के विपरीत मेड़ बनाकर पानी को धीरे धीरे खेत से बाहर निकालें, नहीं तो घुलनशील पोषक तत्व व सूक्ष्म जीव तेजी से बाहर निकल जाएंगे।
1: अच्छा,
0: तथा बिना जल निकास से उनकी मृत्यु हो जाएगी।
1: एक बात और डॉक्टर भैया कि देखा किसान तो हर काम हर प्रयोग लाभ के लिए करत
0: जी,
1: ये जो न सूक्ष्म तत्वन का प्रयोग बा, जैविक स्रोत का प्रयोग बा, ऐसे किसान के लाभ का हो सकत है, एक के बारे में?
0: पौधों को मुख्यतः 16 पोषक तत्व

0: की आवश्यकता होती है, परंतु हम यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन और डीएपी के माध्यम से फास्फोरस व नाइट्रोजन और पोटास के अलावा पौधों को कुछ भी नहीं देते हैं।
1: अच्छा,
0: इससे पौधों में रोग तथा कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, फल व सब्जियां घटिया गुणवत्ता की मिलती हैं।
1: जी जी।
0: जैविक खादों के प्रयोग से सब्जियों में पोषक तत्व भरपूर होते हैं, उनकी प्राकृतिक चमक बढ़ती है, सुवास में वृद्धि तथा स्थायित्व आता है
1: जी।
0: उनकी भंडारण क्षमता बढ़ती है, उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, पौधों के रोग व कीटों के प्रकोप को सहन करने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं।
1: जी जी।
0: इनका रसायनों की तरह अवशेषी प्रभाव नहीं रहता, जिससे खादों के प्रयोग के समय का सब्जियों की तुड़ाई पर प्रभाव नहीं पड़ता
1: जी।
0: सब्जियों को सलाद के रूप में प्रयोग से कोई अप्रत्यक्ष नुकसान नहीं होता है, मृदा में उर्वरता बढ़ती है तथा टिकाऊ खेती की संकल्पना साकार होती है।
1: जी जी। एक बात और डॉक्टर भैया कि हम ये जानना चाहब कि जो सब्जी के खेती करे वाले किसान भैया हरे हैं
0: जी,
1: उनके लिए आपका का संदेश हुआ?
0: किसान भाई जो भी सब्जी की खेती इस समय कर रहे हैं, वो गोबर की खाद अच्छी तरीके से सड़ी हुई यदि प्रयोग 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कर लेते हैं
1: जी जी जी,
0: तो अन्य पोषक तत्वों को अलग से देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा अच्छा।
0: फिर भी यदि किसी कारणवश गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो जैव उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम कहते डॉक्टर सूर्य नारायण भैया आप बहुत अच्छी जानकारी दें। निश्चित बात कि जो उनके सब्जी के खेती करे वाले किसान भैया आ रहे हैं इसे लाभ उठे, ये जानकारी देख लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी किसान भाई सुन रहे थे ऑर्गेनिक सब्जी की खेती किस प्रकार करें, और इस विषय पर डॉक्टर सूर्य नारायण से बातचीत किया दिनेश पांडे ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता सुनवाएंगे। वार्ता का विषय है साचिका एवं पैर दर्द का होम्योपैथिक उपचार।
1: पैरों में दर्द एक आम समस्या है जो सभी आयु वर्ग के व्यक्ति कभी न कभी महसूस करते हैं। पैरों में दर्द के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव या जिसे हम मस्कुलर क्रैम्प्स कहते हैं, नसों की क्षति जो डायबिटीज़ के रोगियों में सामान्यतः देखी जाती है और जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन डी या अन्य पोषक तत्व जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी, खराब रक्त संचार, गठिया, डीवीटी जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसमें कि रक्त वाहिनियों में थ्रोम्बस या रक्त के थक्के जमने लगते हैं, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनसे पैरों में दर्द हो सकता है। शियाटिका बीमारी में भी दर्द पीठ से निचले हिस्से से शुरू होकर के नितंबों और पैरों तक महसूस होता है। इसमें दर्द के साथ सुन्नपन, झुंझुनी या कमजोरी महसूस होती है। दर्द यदि लगातार बना रहे या बार बार होने लगे तो चिकित्सक से सलाह लेना और आवश्यक परीक्षण करा लेना जरूरी है। होम्योपैथिक में शियाटिका रोग से संबंधित विशेष रोग निवारक दवाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा पैरों में होने वाले अन्य प्रकार के दर्द का भी लक्षण के आधार पर उचित और रोग की जड़ से निदान संभव है। कुछ प्रभावी और सामान्य होम्योपैथिक औषधियाँ जो रोग के लक्षणों के आधार पर दिए जाने पर बहुत लाभदायक होती है, उनमें से कुछ का विवरण मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। आर्निका मोंटाना, ये चोट लगने पर या अत्यधिक परिश्रम से होने वाले दर्द जिसमें रोगी दर्द वाले स्थान को छूने से परहेज करे, ऐसा दर्द हो जैसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया हो या त्वचा पर नीला रंग या ब्रूजिंग हो, वहाँ पर प्रभावी होती है। रूटा ग्रेव्यूलेंस, ये मूंछ और मांसपेशियों खास तौर पर जोड़ों में होने वाले दर्द, लिगामेंट इंजरीज की अच्छी दवा है। ब्रायनिया, जिन व्यक्तियों में दर्द के साथ जोड़ों में सूजन या लाली हो, मरीज के जरा से हिलने डुलने में दर्द बढ़ने लगे, उसके लिए

0: दवा का इस्तेमाल लाभदायक है। एक अन्य दवा है कोलोसिंप, जिसमें पैरों में खासतौर पर श्याटिका का दर्द जो मरोड़ के साथ हो, दर्द में दबाव से राहत हो और मरीज दर्द वाली तरफ लेटना पसंद करे, जिससे एक दबाव बने और उसे राहत हो, मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो और जो दबाने पर राहत दे। एक और दवा है निफेलियम, जो झुंझुनी के साथ होने वाले शियाटिका के तेज दर्द, पैर की पिंडलियों में होने वाली मरोड़, सुन्नपन, झुंझुनी, इन सब तकलीफों के लिए एक उपयोगी दवा है। रस्टॉक्स, जो बहुत कॉमन दवा है, पैर की मांसपेशियों की जकड़न और जोड़ों में होने वाले दर्द, जिनमें चलने फिरने के बाद रोगी राहत महसूस करे और नम ठंडे मौसम में दर्द का बढ़ना मिलता हो, उसमें रस्टॉक्स के इस्तेमाल से राहत मिल सकती है। हाइपेरिकम एक नर्व रिलेटेड पेन की अच्छी दवा है, जिसमें नसों में होने वाले दर्द में रोगी को चुभने वाले दर्द के साथ जलन और सुन्नपन भी महसूस होता है। शाइटिका में इस दवा के लक्षण मिलने पर यह दवा बहुत प्रभावी होती है।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था साटिका एवं पैर दर्द का होम्योपैथिक उपचार, और इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

जल है तो कल है। जल की बचत बहुत जरूरी है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 बजे आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनिएगा और दोपहर 12:15 बजे और रात 10:30 बजे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे। नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 8:45। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है। साथ ही 9:00 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप तरुण नंदी के स्वर में गाए गीत और भजन सुनिएगा। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम सुनिएगा 10:05 पर। आज आप साइबर क्राइम पर अर्जुन द्विवेदी निरीक्षक और राहुल कुमार उप निरीक्षक से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की बातचीत सुनेंगे। आज आप इसका तीसरा भाग सुनेंगे। लोकगीत के कार्यक्रम में 10:30 बजे हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत का आनंद लीजिएगा। दिन में 11:00 बजे सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रस्तुति प्रदीप मिश्रा की है। दिन में 11:30 बजे सुनिएगा यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम। आपके फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनिएगा दोपहर 12:30 बजे, प्रस्तुति मधु कुमार की है। दिन में 1:15 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी। शाम 5:15 बजे युवा साथी सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 बजे चर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर।

साथ ही डॉक्टर विजय बहादुर की वार्ता हॉर्टिकल्चर से इनकम हम आपको सुनवाएंगे और लोकगीत का आनंद लीजिएगा अरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में।

रात 8:30 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम में हम आपको के ऋषि कुमार की वार्ता ए डायलॉग ऑन गिफ्ट ऑफ राइटिंग सुनवाएंगे और रात 9:30 बजे सजेगी गजलों की महफिल कार्यक्रम कहकशा में। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि किस सपने वो नहीं जो हमें सुलाते हैं, सपने वो हैं जो हमें जगाते हैं और कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं।

0: गांधी जी ने कहा था कि किसी भी कार्य को कल पर ना टालें, जो भी करना है आज और अभी करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। गांधी जी ने कहा था कि जो इंसान आलस्य का त्याग कर देता है वो एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छूता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: इयम आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति। ह्यः आरब्धे अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां महिला बाल विकास क्षेत्रैः सम्बद्धानां राजनीतिक नेतृणां अधिकारिणां च सहभागिता भवति। प्रधानमन्त्रिणा परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां शिखायाः इदं द्वितीयं सम्मेलनमस्ति। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारी संघव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तये सामूहिक दायित्व भावनायाः प्रवर्धनं तथा केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहकारेण कार्यपरिणामानां त्वरित साधनमस्ति। सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख विषयेषु ध्यानं केन्द्रितमस्ति: पोषणं, प्रारम्भिक शिक्षा, बाल संरक्षणं तथा महिलानां सुरक्षा सशक्तीकरणञ्च। वस्तु सेवाकर परिषदा नवदिल्ल्यां सम्पन्ने स्वकीयस्य 75वें उपवेशने करदातृभ्यः अनुपालन प्रक्रियां सरलीकर्तुं विविधाः उपायाः अनुमोदिताः। एतेषु निर्णयेषु वस्तु सेवाकर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं कराधिकारिणां निगडीकरणं, अधिकाराणां निरसनं तथा अभियोजनस्य सीमायाः 1 कोटि रूप्यकेभ्यः 5 कोटि रूप्यकाणि यावत् वर्धनं सम्मिलिताः सन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती एतस्य घोषणाम् अकरोत्। प्रत्येकस्मिन् प्रकरणे दण्डस्य निर्धारणं, सः अर्थदण्डः भवतु, कारावासः भवतु उत वा उभयं, न्यायालयस्य विवेकाधिकाराय त्यक्ष्यते। वित्तमन्त्री उक्तवती यत् उपवेशने वस्तु सेवाकरस्य मानेषु किमपि परिवर्तनं न कृतं तथा वर्तमानः मूल्यनिर्धारणक्रमः स्थिरः अस्ति। तया सूचितं यत् वस्तु सेवाकर परिषदा सूचनापत्राणां प्रेषणाय, कार्यसञ्चालनाय च समानमानकानाम् अनुशंसा कृता अस्ति।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राज

राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ संतोषी फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है सोनू निगम, अलका याग्निक ने। स्वानंद किरकिरे की रचना है, अनु मलिक का संगीत है। तो आनंद लीजिए इस भजन का।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए जय जगन्नाथ फिल्म का भजन, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है सोमा बनर्जी और लोपिता ने। अभिलाष की रचना है, अक्षय मुंडी ने संगीत दिया है, और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

0: श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्म से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, गांव से लेकर शहरों तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है मजबूत। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। कर दरों में नहीं किया गया कोई बदलाव। और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने तपेदिक मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पुलिस के कुशल खिलाड़ी कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पाने वालों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता शामिल हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 1000 खिलाड़ियों को पहले नियुक्ति मिल चुकी है और 555 अन्य की चयन प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहरों तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है।
2: गांव से लेकर के ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जनपद स्तर तक, जनपद स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, खेल के मैदान से लेकर के मिनी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम से स्टेडियम और स्टेडियम से इंटरनेशनल स्टेडियम आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हो रहे हैं।
3: हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज दे रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करने की सुविधा हो और उस प्रकार के कोचेज भी हो, उस प्रकार की टीम वहां पर उनके साथ कार्य करती हुई दिखाई देनी चाहिए।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, ऊर्जा, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

0: बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में चल रही बड़ी परियोजनाओं को केवल प्रक्रियाओं तक सीमित न रखा जाए बल्कि उन्हें समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जाए। एक रिपोर्ट।
1: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जहां आधारभूत ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की गति तेज करने के निर्देश दिए तो वहीं उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान में चिन्हित परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने, मंडियों में किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं और ग्रेटर नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की प्रगति का हाल भी जाना। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें संस्करण की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी केवल निवेश परियोजनाओं को प्रारंभ करने का अवसर नहीं है बल्कि यह

0: बॉर्डर लॉजिस्टिक हब की प्रगति का हाल भी जाना। समाचार कक्ष से रितेश।
1: मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें संस्करण की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी केवल निवेश परियोजनाओं को प्रारंभ करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को गति देने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल नोएडा में एक निजी इंस्टीट्यूट के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: वित्त मंत्री ने बताया कि कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
3: GST परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी लंबी अवधि तक निरंतर सरकार का नेतृत्व करना दुर्लभ है।
4: आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एज हेड ऑफ गवर्नमेंट 25 साल मुकम्मल हुए हैं। मुझे नहीं लगता विश्व में कोई ऐसा और उदाहरण है जहां निरंतर बिना ब्रेक कोई भी व्यक्ति किसी सरकार का मुखिया रहा हो इतने लंबे अंतराल। वही अपने में कीर्तिमान है, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वही हमारे लिए गर्व की बात हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि यह दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ है।
5: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
6: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
5: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में

0: महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। यह भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के ही नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी इस कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से प्रसारण किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, गांव से लेकर शहरों तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है मजबूत। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। कर दरों में नहीं किया गया कोई बदलाव। और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने तपेदिक मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का किया शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनाएंगे। राग है भैरवी।
3: भैरवी थाट के कुछ राग तो बहुत ही

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुन रहे थे। राग था भैरवी और आपके साथ तबले पर संगत किया था श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने। और अब लीजिए सुनिए देशगान।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: झिलमिल सितारों से बच्चों की मुस्कुराहट समाती है बाल संग बाल गोपाल और नन्ही दुनिया में।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचारों का प्रसारण। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक

0: उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्र योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी

0: विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीडीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों

0: को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. Government caps trade margins on non-scheduled anti-cancer drugs at 30% of MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes, including nutrition, early education, child protection, women's safety, and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges, and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price or MRP, a report.
4: The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore annually. While essential cancer medicines on the scheduled list are already subject to strict government-set ceiling prices, this new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines by limiting their margins. Once an expert committee under the Directorate General of Health Services finalizes the list of medicines to be covered, the National Pharmaceutical Pricing Authority, NPPA, will issue issue the official notification. Cancer incidence is rising in India, affecting about 60 people per lakh population. Treatment places a heavy financial burden on patients and their families, who often pay substantial amounts from their own pockets. The ministry stated that the new cap will curb excessive profiteering, address unfair pricing practices in the market, and ensure fairer prices for patients. With Rishu Jaiswal and Priya's report, Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.

0: special columns to Nana Patekar's memory, collectively hailing him as an irrepressible icon who challenged the hero stereotype with unmatched raw intensity. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. Government caps trade margins on non-scheduled anti-cancer drugs at 30% of MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में खवातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के अख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। सरकार ने कैंसर की रोकथाम की गैर शेड्यूल्ड दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की हद MRP की 30% तय की है। कीमतें 70% तक कम होने की उम्मीद है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में लोकसभा की 1 सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज की जा रही है। सरकारदा अदाकार नाना पाटेकर की आखिरी रसूम पुणे में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। हौसियों ने सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर फिर से हमले किए हैं। भारत ने वहां रहने वाले अपने शहरियों से चौकस और मुस्तैद रहने को कहा है। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ये 2 रोज़ा मीटिंग महकमा जाति सरबराह मीटिंग कल शुरू हुई थी। इसमें ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के शोबे से वाबस्ता सभी रियासतों के सियासी रहनुमा और ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वज़ीर आज़म ने इमदाद बाहमी वफाकियत को मुस्तहकम बनाने, कौमी तरजीहात की इज्तिमाई मिल्कियत को फरोग देने और मरकज और रियासतों के करीबी इश्तराक के जरिए फैसलों के नतीजों में तेजी लाने की खातिर जो नजरिया पेश किया था, ये महकमा जाति सरबराह मीटिंगों के सिलसिले की दूसरी मीटिंग है। इस सरबराह मीटिंग में 4 अहम मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इनमें तग़ज़िया बख्श खुराक, जल, तालीम, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन की सलामती और उन्हें बाइख्तियार बनाना शामिल है। महकमा जाति सरबराह मीटिंग में मरकज और रियासतों की सरकारों के मुतालिका फरीक मखसूस शोबों की तरजीहात पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा वो अच्छे तौर तरीकों की जानकारी एक दूसरे को दस्तियाब कराने और अमल दरामद से मुतालिक चैलेंजों पर भी गौर खौस कर रहे हैं। इसके साथ साथ बेहतर बनाई गई हुक्मरानी और खिदमात बहम पहुंचाने के लिए मुकर्रा वक्त के इकदामात पर भी इत्तफाक राय पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
2: सरकार ने कैंसर की रोकथाम की गैर शेड्यूल्ड दवाओं की सप्लाई और फरोख्त के लिए मार्जिन की हद MRP की 30% तक महदूद कर दी है। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स महकमे की वजारत ने यह उम्मीद जाहिर की है कि इस कदम से दवाओं की कीमतें 70% तक कम हो जाएंगी और इस तरह कैंसर के मरीजों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिल सकेगी। शेड्यूल्ड लिस्ट में शामिल कैंसर की जरूरी दवाएं पहले ही सरकार के मुकर्रर करदा कीमतों की हद के दायरे में आती हैं और अब इस नए फैसले से गैर शेड्यूल्ड कैंसर की दवाएं भी उनका मार्जिन महदूद किए जाने से कीमतों के कंट्रोल के दायरे में आ जाएंगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा

0: सीट पर होने हुए जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मंगल के रोज जिन 5 असेंबली सीटों पर पोलिंग हुई थी उनमें तमिलनाडु में मदुरंतकम और धर्मपुरम, पुदुचेरी में थटन चावड़ी और मगरबी बंगाल में रेजी नगर और नंदीग्राम शामिल हैं। आसाम में नागांव में वाहिद लोकसभा सीट पर भी पोलिंग हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि त्रिपुरा में उमंगों वाले जिलों और मुतहरिक गांवों की स्कीमों के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: नीति आयोग के उमंगों वाले जिलों के प्रोग्राम के तहत त्रिपुरा के दूरदराज जिला धलाई में जबरदस्त तब्दीली आई है। जचगी की देखभाल, बुनियादी तालीम, सीखने से हासिल होने वाले नतायज, माइक्रो आबपाशी और देही सड़कों के राबते में हदफशुदा इकदाम ने जिले की समाजी इकतसादी बुनियाद को मुसलसल मजबूत किया है। बरवक्त डेटा रैंकिंग और कारकर्दगी से मुतालिक तरगीब की बदौलत धलाई ने मुसलसल मुल्क भर के बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जिलों में जगह बनाई है, जिसने ये साबित किया कि डेटा पर मबनी गवर्नेंस और मकामी वसाइल का मिलाप किस तरह पसमादा कबायली इलाकों को बुनियादी सतह की तरक्की के मॉडल में बदल सकता है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर तवील सरहद के साथ दरक्षा गाँव प्रोग्राम सरहदी बस्तियों को खुदकफील मराकज़ में तब्दील कर रहा है। जदीद डिजिटल नेटवर्क्स, तमाम मौसमों के लिए मौजूद सड़कें, पाइप के जरिए पानी की फरामी और शमसी तवानाई देरीना बुनियादी ढांचे के अखला को पुर कर रहे हैं। मकामी हैंडलूम, इको टूरिज्म और सरहदी तजारत की हिमायत करते हुए ये पहल मकामी कारोबार को फ़रोग देती है, नकल मकानी को रोकती है और फाल व लचकदार सरहदी कम्युनिटीज़ को तश्कील देकर कौमी सलामती को मजबूत करती है। हरी श्यामुख पंचायत कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल परिसेवा हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूह को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: एक साथ मिलकर ये दो अहम इकदाम त्रिपुरा में ढांचा जाति और जोग्राफियाई खला को पुर कर रहे हैं। अंदरूनी ब्लॉकों में इंसानी तरक्की को सरहदी बाढ़ के साथ स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी के साथ जोड़कर ये प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर शहरी दूरदराज के अंदरूनी गांव से लेकर जीरो लाइन गाँव तक रियासत की वसी तर तरक्की की कहानी में शामिल हो। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर की आखिरी रसूम पूरे सरकारी एजाज के साथ महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक दोंजे में उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में अदा कर दी गई। उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने उनके कुनबे के अफराद, रिश्तेदारों, दोस्तों और मतदाओं की मौजूदगी में कल रात तकरीबन 11:30 बजे उनकी आखिरी रसूम अदा की। आखिरी रसूम से पहले सरकर्दा अदाकार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: नाना पाटेकर के जज्दे खाकी जब पुणे हवाई अड्डे पहुंचा तो महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजरा आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उनके जज्दे खाकी को डोंजे ले जाया गया, जहां मरकजी वजीर रामदास अठावले, मरकजी वजीर मुरलीधर मोहोल और दीगर अफराद ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। नाम फाउंडेशन के जरिए नाना पाटेकर के सामाजिक काम को भी खास तौर से किसानों की मदद और खुश्क साली से मुतासर बिरादरियों के लिए उनकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। नाना पाटेकर के इंतकाल से भारतीय सिनेमा ने न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार खो दिया है बल्कि एक पुरअज्म सामाजिक कारकुन से भी महरूम हो गए हैं। उनकी बेहतरीन

0: अदाकारी मुनफरिद आवाज और अंदाज और समाजी मुआमलात के तई उनकी लगन को हमेशा याद रखा जाएगा। माधव जय भाई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल धमाका खेज मादों को बेअसर करते वक्त एक हादसे में सीआरपीएफ के 4 अहलकार जख्मी हो गए। माओवादियों ने रियासत में बस्तर डिवीजन के अंदरूनी और दूरदराज के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर देसी साख्त के कई धमाका खेज हरबे लगा रखे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें नाकारा बनाने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: रियासत में सुकमा जिले के बेजी थाने के तहत आने वाले इलाके में एलआर माडगो कैंप के नजदीक बोधराज पादर नाले के करीब गोली बारूद के शोबे से वाबस्ता एक तकनीकी टीम और सीआरपीएफ के अहलकार धमाका खेज मादों को नाकारा बनाने का अमल अंजाम दे रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान एक धमाका खेज हरबे का एक हिस्सा नजदीक में गिरकर फट पड़ा। इस वाकये में 4 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए, इनमें से एक की हालत तश्वीशनाक बताई गई है। सभी जख्मी अहलकारों को मजीद इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: केरलम में इंडिया पोस्ट का महकमा दुबई से तल अबीब जाने वाले हवाई जहाज में सवार 174 अफराद की जान बचाने पर जांबाज भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की इज्जत अफजाई के लिए आज तिरुवनंतपुरम में एक खसूसी तकरीब में एक स्पेशल कवर जारी करेगा। ये वाकया पिछले महीने की 30 तारीख को पेश आया था। फ्लाई दुबई की परवाज में चाकू के हमले में जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छर ने गैर मामूली दिलेरी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए हवाई जहाज को सऊदी अरब के ताबुक में बाहिफाजत उतार लिया था। हौसियों ने एक बार फिर कल सऊदी अरब पर हमलों का दावा किया है, जिनमें रियाज में शाह खालिद बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे, नजरान हवाई अड्डे और खमैस मुशैत में एक फिजाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हौसियों ने वर्करों को वार्निंग दी है कि वो सऊदी तेल मराकज और हवाई अड्डों से दूर रहें। इसके जवाब में सऊदी क्यादत वाले इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोका और तबाह कर दिया और अहद किया है कि इसके कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। इन हमलों के सबब बैन अल-अक़वामी फिजाई सफर में रखना पैदा हो गया है और एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा समेत मुख्तलिफ सरकर्दा एयरलाइंस ने रियाज के लिए अपनी परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने सऊदी हवाई अड्डों पर हौसियों के हमलों की मजम्मत की है। यूएई की खारजी उमूर की वजारत ने यह कहते हुए एक बयान जारी किया है कि ये हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं और अदा किया है कि यूएई सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती रखता है। रियाज में भारतीय सिफारतखाने ने सऊदी अरब में रिहायश पजीर भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट और मुस्तैद रहें और बगैर जरूरत घर से बाहर न जाएं। इस एडवाइजरी में सिफारतखाने ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो जारी वाकयात से मुतालिक कोई वीडियो या खबर शेयर या रिपोस्ट करने से गुरेज करें। उन्हें मकामी हुकाम की जानिब से जारी हिदायत की पाबंदी करने को भी कहा गया है। रियाज में भारतीय सिफारतखाना और जद्दा में कौंसलखाना VFS के जरिए मामूल के मुताबिक कामकाज कर रहा है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत इफ्तिताही मुकाबला जीतने के बाद, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, सीरीज में 1-0 से आगे है। बैडमिंटन में फिनलैंड में 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। सिंधु ने दूसरे राउंड में जापान की रिको गुंजी को 21-15, 21-15 से हराया। छठी पोजीशन की भारतीय खिलाड़ी का मुकाबला अब टॉप पोजीशन की खिलाड़ी और साबिक आलमी चैंपियन थाईलैंड की अतनचोक इंतानोन से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, 5G नेटवर्क की रसाई मुल्क के हर जिले तक हुई, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंडिया मोबाइल कांग्रेस की तकरीब से खिताब। अखबार प्रताप ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि GST के नफाज से पहले मुल्क में टैक्स का निजाम इंतहाई पेचीदा था, मुल्क में वन नेशन वन टैक्स होगा, GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला किया गया। अखबारात ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमलों की भारत की तरफ से की गई मजम्मत को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने एयर चीफ मार्शल

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, वेरी गुड मॉर्निंग। ध्वनि ताल के तरंगों पर मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तेरा चेहरा दिखता है तेरे अल्फाजों में, तेरा चेहरा दिखता है तेरे अल्फाजों में, आज फिर तुझसे हुई रूबरू तेरे लिखे हुए चंद लफ्जों में। जी हाँ श्रोताओं, पत्रों का वो दौर बेहद खूबसूरत होता था जब छोटे से पोस्टकार्ड पर लोग अपनी भावनाओं का समंदर उड़ेल देते थे। कभी खुशी, कभी मीठी शिकायतें, कभी अनकही बातों की मूर्तियाँ बिखरी हुई होती हैं उस कागज़ पर, और भी बहुत कुछ लिखा होता है उस पोस्टकार्ड पर जिन्हें पढ़ने वाले की निगाहों में साफ देखा जा सकता है। कभी आंखें नम हुई तो कभी दिल में एक टीस उठती है, काश उन लम्हों में हम साथ होते तो ये शिकायतें नहीं होती। तो कभी खट्टी मीठी बातें जिनका जायका सिर्फ वो लम्हा कर पाता है। तो श्रोताओं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आज मैं किस अंदाज और

बात कर रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि आज है 9 अक्टूबर और आज हम मना रहे हैं विश्व डाक दिवस। और सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने सुविचार भेजने शुरू कर दिए हैं और सोलापुर महाराष्ट्र से सुविचार विष्णु मिस्क्रीन और उनके परिवारजनों का आया है डाक दिवस पर। ये लिखते हैं कि डाक सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि अपनों के बीच भावनाओं, यादों और रिश्तों को जोड़ने वाला पुल है। साथ समय बदल गया, साधन बदल गए, लेकिन एक चिट्ठी में छिपी भावनाओं की मिठास आज भी अनमोल है। क्या बात है विष्णु जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। और नीरा त्रिपाठी लिखते हैं कि हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को भी हृदय से अच्छा होने का विश्वास कर बैठते हैं। क्या बात है नीरा जी, बहुत ही खूबसूरत। और इनकी एक छोटी सी कविता है डाक दिवस पर जो पढ़ना बनता है। ये लिखती है कि खाकी वर्दी पहन के आता, कंधे पर वो थैला लटकाता, घर घर जाकर आवाज लगाता, अपनों की खबरें सुनाता, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो कभी भी न करता आराम, चिट्ठी और पार्सल उपहार सबको बांटता प्यार। क्या बात है, चिट्ठी का थैला लटकाए, साइकिल पर वो चलता जाए, गली गली के चक्कर काटे, सबके संदेशों को बांटे। क्या बात है नीरा त्रिपाठी जी, बहुत ही खूबसूरत कविता है। और अनामिका सोनकर, रागनी चंद्रा, नीरा त्रिपाठी, विक्रम मालवी, अनिल, रंजीत सिंह, जावेद अहसन, विष्णु मिस्क्रीन, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतने खूबसूरत खूबसूरत सुविचार हमें भेजे और कार्यक्रम में भाग लिया। अब भाई एक गीत बनता है और डाक दिवस पर जो इसका इतिहास है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक पर। तो भाई आ जाइए अपने रेडियो सेट के और करीब क्योंकि डाकिया आ रहा है।

हाँ जी श्रोताओं, डाकिया जब आता है तो खुशी कुछ ऐसी ही रहती है। माने कि सोशल मीडिया का ज़माना है और SMS और मैसेज का ज़माना है, ईमेल्स का ज़माना है, लेकिन जब चिट्ठी आती है ना तो कुछ ऐसी ही खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का इतिहास क्या है विश्व डाक दिवस का। तो 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड के 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, और इसी वजह से विश्व डाक दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया। भारत में पहली बार वर्ष 1766 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई, और भारतीय डाक विभाग 9 से 15 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाता है। वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में प्रथम बार डाकघर के स्थापना वर्ष 1774 में किया। और आपको ये भी बता दूं कि भारत में सन 1852 में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत की गई। विश्व डाक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है ये भी आपको बता देती हूँ श्रोताओं, कि संचार, वित्तीय सेवाओं, पार्सल वितरण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय डाक के योगदान और भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इस वर्ष की क्या थीम है, यानी 2026 की थीम क्या है ये भी बता देती हूँ, कि 2026 की थीम है श्रोताओं की एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं। विश्व का सबसे पुराना डाकघर स्कॉटलैंड में है, डंफ्रीशायर में स्थित स्नैकवॉर्ड डाकघर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब आप कहेंगे कि भारत का पुराना डाकघर कहाँ है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से आप सभी को याद दिला देती हूँ कि भारत का पुराना डाकघर कोलकाता यानी कलकत्ता में है, जिसे हम सभी GPO के नाम से जानते हैं। और अब ये भी बताना बनता है कि भारत का सबसे बड़ा डाकघर मुंबई में है, जिसे हम बॉम्बे GPO के नाम से जानते हैं। यह आकार और डाक की मात्रा दोनों ही दृष्टियों से देश का सबसे मुख्य डाकघर है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेल का संचार करता है। और सबसे ऊंचा डाकघर हिमाचल प्रदेश की स्पीत घाटी हिक्की में स्थित है। और एक बात श्रोताओं की, इसका संचालन संचार मंत्रालय करता है, जो भारत सरकार के अधीन एक सरकारी विभाग है। तो अब सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई। और जब चिट्ठियाँ आती हैं तो क्या खुशी होती है, इस गीत में बताया गया है। आनंद लीजिए इस गीत का।

जी श्रोताओं, हमारी ये कोशिश होती है कि नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम में आप सभी का मनोरंजन के साथ साथ उचित ज्ञानवर्धन भी हो। अब आप ये बताइएगा कि आज का हमारा

0: और अब इसी के साथ अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी। तो अब चलते चलते नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
4: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज हमने समर्पित किया है विश्वनाथ पाटेकर जी को, जिन्होंने, अब आप कहेंगे कि विश्वनाथ पाटेकर कौन है, तो जी जिन्हें हम प्यार से कहते हैं नाना पाटेकर, जिनकी कल हृदय गति बंद होने की वजह से इस दुनिया के रंगमंच को उन्होंने छोड़ दिया। चलिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज उन्हीं को हम समर्पित करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अंकुश फिल्म से। इस गीत को अपने स्वरों से सजाया है अशोक घनश्याम और शेखर ने। अभिलाष की रचना है कुलदीप सिंह ने इस गीत को संगीत दिया है। कहते हैं कि कलाकार कभी नहीं जाता, बस उसका शरीर हम सबसे जुदा हो जाता है। पर वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहता है। नाना पाटेकर को भूलना इतना आसान नहीं है।

किसी अपने का जाना बहुत खलता है। लोग सोचते हैं कि हम उन्हें भूल गए। हम रिश्ते निभाते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, उनको भूलने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर क्या हम उन्हें भूल पाते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं, नाना जी का जन्म 1 जनवरी 1951 में हुआ था और वो हिंदी और मराठी सिनेमा का जगमगाता सितारा कल 8 अक्टूबर सन 2026 को कहीं विलीन हो गया, खो गया आसमान की उन चंद सितारों में। जिन्हें हम खोजने की कोशिश तो करेंगे। नाना जी ने बहुत सारी फिल्में की और हर फिल्म

फिल्म के किरदार को उन्होंने इस तरह जीवंत कर दिया कि वो किरदार बस उनके लिए ही लिखा गया। उनकी एक्टिंग इतनी जीवंत थी श्रोताओं। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं गुलामे मुस्तफा फिल्म का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है इकबाल साबरी और अफजल साबरी ने। आनंद बख्शी की रचना है, राजेश रोशन का संगीत है।

नाना पाटेकर इतनी सादगी से रहते थे कि लगता ही नहीं था कि वो बॉलीवुड के इतने महान कलाकार हैं। हर किसी से बड़ी ही सहजता से मिलते थे। और श्रोताओं, उनकी पहली फिल्म गमन थी, और अगर इस फिल्म का गीत मैं आपको ना सुनवाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। चलिए आपको सुनवाती हूँ गमन फिल्म का ये गीत, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है सुरेश वाडेकर ने। सहरियार की रचना है, जावेद ने इस गीत को संगीत दिया है। और नाना जी को भूलना आसान नहीं है, वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अंबेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
3: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ईसा प्रिया ने कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों, विचारों एवं राष्ट्र सेवा के प्रति उनके योगदान को स्मरण करते हुए उपस्थित लोगों को उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं सांस्कृतिक दलों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। भजनों एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सत्य, अहिंसा, स्वच्छता एवं सद्भावना का संदेश जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। वहीं जिला खेल कार्यालय द्वारा एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित 5 किलोमीटर बालक वर्ग एवं 3 किलोमीटर बालिका वर्ग की वॉक रेस में प्रथम 6 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। आगामी शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह की उपस्थिति में अधिकारियों, दुर्गा पूजा समितियों, रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों एवं डीजे संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में आगामी 11 से 20 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र तथा इसके उपरांत दशहरा पर्व आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि जनपद में 2043 दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना, 12 शोभा यात्राएं, 14 भरत मिलाप कार्यक्रम, 132 मेले, 68 पुतला दहन एवं 185 रामलीला मंचन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 79 अस्थायी एवं 59 अस्थायी घाटों पर मूर्ति विसर्जन की जाती है। बैठक के दौरान थानावार तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। दुर्गा पूजा एवं रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों से उनके समस्याओं, आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने मूर्ति विसर्जन घाटों पर जल सुरक्षा के दृष्टिगत 3-लेयर बैरिकेडिंग, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शरारती एवं असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने अवशेष थानों में भी पीस कमेटी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी तथा पांडालों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी भ्रामक अथवा संदिग्ध सूचना की तत्काल जानकारी पुलिस एवं प्रशासन को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जनपद अंबेडकर नगर के 31वें गौरवशाली स्थापना वर्ष एवं भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अकादमी की 5 दशक लंबी गौरवमयी यात्रा पर भी प्रकाश डाला गया। रंगमंच एवं नाट्य कला के क्षेत्र में अकादमी के योगदान और उसकी समृद्ध विरासत को रेखांकित करते हुए कलाकारों एवं रंग कर्मियों की उपलब्धियों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम में जनपद की गौरवशाली यात्रा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत

0: एवं कला साहित्य की विविध रंगत देखने को मिली। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद के विभिन्न विकास खंडों एवं नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद के विभिन्न निर्धारित विवाह स्थलों पर कुल 443 जोड़ों का सामूहिक विवाह विविध विधान एवं गरिमापूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योत्सना बंधु ने बताया कि जनपद में ईपी रेशियो एवं जेंडर रेशियो मानक से कम है, जिसे बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस हेतु निरंतर पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न विभागों के सहयोग से विशेष अभियान चलाए जाने तथा कोई मतदाता न छूटे, इसके उद्देश्य को साकार करने के लिए पात्र नागरिकों को 100% मतदाता सूची में शामिल किया जाना है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग चल रहे निरंतर पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत ईपी रेशियो एवं जेंडर रेशियो को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से समस्त अहर युवा छूटे हुए मतदाता, प्रथम बार मतदाता बनने की अर्हता रखने वाले, बेघर मतदाता, दिव्यांग मतदाता तथा महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची में नाम शामिल होने से कोई भी अहर मतदाता न छूटने पाए। अंबेडकर नगर में बेमौसम हुई तूफानी बरसात और जगह जगह गिरे ओले से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तैयार धान की फसल गिर गई है, जिससे फसलों के सड़ने का खतरा हो गया है। जिला प्रशासन ने किसानों को राहत पहुँचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि
1: जनपद अंबेडकर नगर में चक्रवात अर्नब के कारण भारी बारिश हुई है और बहुत तेज हवाएं चली हैं, जिसके कारण फसल का भारी संख्या में नुकसान हुआ है, जिसके लिए हर तहसील में टीमें गठित की गई हैं और ये टीमें लगातार लेखपालों से आख्या प्राप्त कर नुकसान का मूल्यांकन कर रही है और तत्क्रम में राहत पहुंचाई जाएगी।
0: फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जो गाँव में फसलों के नुकसान का सर्वे कर रही हैं।
2: अंबेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का।
3: विगत 4 अक्टूबर को भारतीय खेल प्राधिकरण के फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत पंडित जे एन डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शहर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 400 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत योग के साथ हुई, साथ ही फिटनेस गतिविधियों के बाद बांदा की सांसद कृष्णा पटेल और विधायक सदर प्रकाश द्विवेदी ने झंडी दिखाकर विशाल साइकिल रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को फिट रहो, साइकिल अपनाओ और पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। इस दौरान विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रदूषण और ट्रैफिक संबंधित समस्या से निजात मिलेगी। बांदा में विगत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन व विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने टूल किटों का वितरण किया। इस अवसर पर स्थानीय पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज ग्राउंड में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्थानीय विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में योजना के 77 लाभार्थियों को अलग अलग तरह के टूल किटों का वितरण करने के साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म उत्सव आशीर्वाद दिया के रूप में मना रहा है। बारिश के बाद स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसी गंभीर संक्रमित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ लोगों को इन बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक कर रही हैं, बल्कि वहां पर कैंप लगाकर बीमार लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गंभीर संक्रमित बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। बांदा के सीएमओ डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में जल जनित और मच्छर जनित रोगों में इजाफा होता है, खासकर स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके लिए जिला अस्पताल में 8 बेड का अलग से वार्ड बनाया गया है, साथ ही इस रोग के उपचार से संबंधित दवाएं जिला अस्पताल और सभी सीएचसी पर उपलब्ध हैं। इससे संबंधित हर तरह की जांच के साधन भी अस्पतालों में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि
4: स्वाइन फ्लू को लेकर तो विशेष रूप से सतर्क हैं। उसके लिए हमारी तैयारियां ये हैं कि जिला अस्पताल में हम लोगों ने 8 बेड का एक अलग से वार्ड बनाया हुआ है। अभी जितने भी जल प्लावित गांव थे और जहां से हमें सूचना मिल रही है, जहां पानी ठहर गया बरसात की वजह से, वहां भी हम लोग एक्टिविटी करा रहे हैं, जिसमें कि अभी हम लोगों ने 32 गांव कवर किए हैं, जहां पर लार्वी सेडल का छिड़काव किया गया, फॉगिंग कराई गई, क्लोरीन की गोलियां बांटी गई हैं।
3: जितने भी जल प्लावित गांव हैं, वहां विशेष स्वास्थ्य टीम को भेजकर स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं। यूपीएसटीएफ और जनपद पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद की। एसटीएफ को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक डीसीएम गाड़ी को

0: प्रेस कर तलाशी के दौरान प्रतिबंधित कोडीन सिरप की 250 पेटियों से 100 ml की 30,000 बोतलें बरामद की हैं, जिनकी बाजार में 60 लाख से अधिक कीमत बताई जा रही है। एसटीएफ ने बिसंडा थाना पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें प्रतिबंधित कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस उपाधीक्षक के त्रिपाठी ने बताया कि जनपद बांदा अंतर्गत यूपी एसटीएफ को अवैध कोडीन सिरप के परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी।
1: जनपद बांदा अंतर्गत यूपी एसटीएफ को अवैध कोडीन सिरप के परिवहन की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एसटीएफ द्वारा स्थानीय थाना बिसंडा से संपर्क कर एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें एक डीसीएम गाड़ी को ट्रेस करके रोका गया। उक्त डीसीएम गाड़ी की तलाशी में अवैध 100 ml कोडीन सिरप की कुल 30,000 बोतलें बरामद हुई, जिनका कुल वजन 3,000 लीटर था। डीसीएम ड्राइवर सहित कुल 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। मौके से फर्द बनाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन निगम ने यूपी रोडवेज में तैनात आउटसोर्सिंग बस परिचालकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म करके इन परिचालकों को सीधे संविदा पर रखने की घोषणा की गई है, जिससे अब

0: सहित कुल चार व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। मौके से फर्द मनाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन निगम ने यूपी रोडवेज में तैनात आउटसोर्सिंग बस परिचालकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म करके इन परिचालकों को सीधे संविदा पर रखने की घोषणा की गई है, जिससे अब परिचालकों का मानदेय भी बढ़ जाएगा। सरकार के इस फैसले की घोषणा होने के बाद बांदा रोडवेज में तैनात आउटसोर्सिंग परिचालकों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए उन्हें संविदा कर्मी का दर्जा देने के साथ ही उनका मानदेय भी बढ़ाया है, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए देशगान।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, मौसम बरसात तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है और मौसम सरमा अपनी आमद का पता दे रहा है। सामिन, जिसकी वजह से दिन में गर्मी और रात में सर्दी का एहसास हो रहा है। सामिन, इन दोनों मौसमों के दरमियान का जो मौसम होता है वो बेहद हसास होता है। आज के सेहतनामा की थीम है बदलता मौसम बदलती सेहत। इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद सिद्दीकी साहब, एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट एट सीएचसी मियांगंज उन्नाव। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम का हमारी सेहत पर सबसे ज़्यादा क्या असर पड़ता है?
2: बदलते मौसम में जो हालात आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है,
1: बिल्कुल,
2: हवाओं में नमी का असर होता है,
1: बिल्कुल,
2: तो इससे जो है सेहत के ऊपर बहुत असर पड़ते हैं।
1: हाँ,
2: खासकर जो बच्चे होते हैं जो इनकी उम्र 5 साल से कम होती है,
1: जी,
2: या उम्र दराज लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है,
1: जी,
2: और किसी दूसरे मर्ज में मुबतला होते हैं, तो ऐसे में जब मौसम बदलता है तो उनके ऊपर बदलते मौसम का असर होता है। वो इस तरह से होता है कि जैसे बच्चे हैं तो अब जब ठंड शुरू होने वाली है तो ऐसे में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर कम होने की वजह से,
1: जी,
2: जिससे वो फ्लेयर अप करने लगते हैं, और ऐसे में बच्चों को खांसी, नज़ला, जुकाम,
1: जी हाँ,
2: रेस्पिरेटरी डिजीज होने लगती हैं। इसी के साथ ही साथ जो उम्र दराज लोग हैं जिनमें सांस की बीमारी पहले से होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, तो उनको जो है बार बार सांस की बीमारी के अटैक आने के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर जो आमतौर पर नॉर्मलाइज रहते हैं टेम्परेचर पर, नहीं आम टेम्परेचर पर, ऐसे जब टेम्परेचर गिरता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको उस तरह से सांस की बीमारी जैसे एज़मा है या COPD जैसी बीमारियाँ होती हैं,
1: जी हाँ,
2: तो उसमें जो है उसके जो अटैक्स होते हैं, रिकरेंस जो होता है वो बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की है 5 साल तक की बच्चे और बुजुर्गों की, तो सबसे पहले एक बात यह है कि कहा जाता है कि जो नौजायदा बच्चे होते हैं उनके लिए पहली ठंडक और पहली गर्मी सबसे अहम होती है। इसी तरह बात करते हैं बुजुर्गों की। जैसा कि अभी आपने बताया कि अस्थमा के पेशेंट जो आ रहे हैं, हाइपरटेंशन के हैं या कार्डियक डिजीज के हैं, अब ऐसे मौसम में सबसे पहले उन बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, अपनी डेली जो रूटीन है वो कैसे बदलें, क्या खाएं क्या पिए, इस पर आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब?
2: बच्चों के मामले में जो है उनको जो है टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना चाहिए,
1: जी,
2: ज्यादा खुले में नहीं जाएं ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। साथ ही साथ जो उनके वैक्सीन्स लगाए जाते हैं बच्चों को, खासकर उसका ध्यान दें और उसको जरूर करवाएं
1: बच्चों के लिए,
2: जी
1: जी,
2: क्योंकि इससे जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज जो कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है उन पर अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है,
1: जी।
2: और होता यह है कि कभी कभी वैक्सीन लगाने में कभी बच्चों को बुखार आ जाता है,
1: बिल्कुल,
2: तो वो 1-2 दिन का होता है और वो पैरासीटामोल देने से तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। वो 1-2 दिन की परेशानी बाद में आने वाली बीमारी जो काफी लंबी हो सकती है, उसमें खर्च भी लोगों का बढ़ सकता है,
1: जी जी जी,
2: और टाइम लॉस भी हो सकता है, वैक्सीनेशन करा लेने से ये सब चीजों से और इन परेशानियों से बचा जा सकता है,
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह से जो बूढ़े लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, जिनको किसी तरह की बीमारी है पहले से,
1: जी जी जी,
2: तो उनको चाहिए कि अपनी दवाएं जो हैं वो मायना वक्त पर लेते रहें और ठीक से लेते रहें,
1: ठीक है।
2: दूसरे, पहनने ओढ़ने का इंतजाम अच्छे से रखें। इसी तरह से जिनको सांस की बीमारी होती है उसमें साल में 1 मरतबा उनको एडवाइज किया जाता है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले लें,
1: वैक्सीन ले लें,
2: जिससे जो है उनको जो है अटैक जो है कम हो सकते हैं और नहीं आ सकते हैं और वो उससे महफूज रह सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात की है, क्या ये हुकूमत की तरफ से फ्री लगाए जाते हैं या प्राइवेट में जाके लगवाना पड़ता है? इसके लिए क्या प्रोसेस है? हाँ। जो हमारे सामाइन है वो शहर के भी हैं और गांव के भी, जो इस वक्त सुन रहे हैं बड़े गौर से इस प्रोग्राम को, वो जानना चाहते हैं इस बात को।
2: इसको खुद से ही लगाना पड़ता है, अभी चूंकि ये जो है नेशनल

श्रोताओं भी अब देश गान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: है
1: जी,
0: इसी तरह H2N2 है, H3N1 है, H5N1, इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं
1: जी,
0: जिसमें आम तौर पर जो मोस्ट कॉमन जो मिल रहा है कम्युनिटी में वो H1N1 है।
1: हाँ, इस वक्त बहुत ज्यादा इसका नाम लिया जा रहा है।
0: हाँ, इसकी वजह से जो है फीवर आता है और बुखार के साथ साथ बदन में दर्द, सर दर्द, और बदन का दर्द कुछ ज्यादा होता है, जनरलाइज फीवर होता है,
1: नजला, जुकाम, बुखार, तेज सब।
0: हाँ, 3 से 5 दिन में आमतौर पर ठीक हो जाते हैं लोग, कभी कभी ज्यादा दिन भी ले लेते हैं।
1: जी,
0: आमतौर पर जो है ये ओवर क्राउड में, छींक में,
1: छींक
0: खांसी
1: आने
0: से
1: से दूसरे को फैल
0: हाँ
1: जाता है।
0: दूसरों को फैल जाता है, इसलिए जब भी किसी को हो तो चाहिए कि अपने मास्क वगैरह लगा के रखे, थोड़ा सा आइसोलेट रहे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है पैरासीटामॉल वगैरह ले ले, पानी वानी अच्छे से पानी वगैरह पिए, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखे, और 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता
1: एक
0: है।
1: ऐसा कहा जाता है कि जो स्वाइन फ्लू से लोग परेशान हैं या उनको ये मर्ज लाहिक हो चुका है, तो वो किसी से हाथ ना मिलाए, मुसाफा ना करें, ये परसेप्शन है या गलत फहमी है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
0: देखिए, जो डिजीज्ड पर्सन है, जिसको बीमारी है और वो एक्टिव डिजीज है, यानी कि जो है, तो उसमें यह है कि वायरस सिक्रीट हो रहा होता है उसके सिक्रीशंस में, बात
1: जी,
0: करेगा तो फुमाइश निकलती है, छींकेगा तो फुम निकलते हैं,
1: कभी ना कभी मुंह पोछ लेगा या कभी हाथ,
0: ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलती
1: हाँ
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उसमें अगर आदमी एहतियात करता है तो बेहतर है, क्योंकि हर वक्त तो आदमी हाथ धोता नहीं,
1: बिल्कुल सही बात है,
0: इसलिए ऐसे में बेहतर यह है कि हाथ वगैरह ना मिलाए, थोड़ा सा एहतियात करे,
1: जी।
0: वो ज्यादा बेहतर है।
1: डॉक्टर साहब, अभी हम आ रहे थे जब इस प्रोग्राम को करने के लिए, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं हमारे, बहुत अच्छे जानने वाले, और वो प्रोग्राम भी सुनते हैं, उनका जो एक सवाल था, उनका ये कहना था, सवाल तो नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के जो वायरस डिजीज होते हैं, जो वायरल डिजीज है, इनका कंप्लीट और सक्सेसफुल इलाज एलोपैथी में है ही नहीं। अब हम इस पर आपको ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं।
0: देखिए, अगर सिर्फ इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं
1: जी,
0: तो इसके टाइप होते हैं ABC, जिसमें AB जो है बहुत कॉमन है और यही डिजीज काज करता है। इसके अगेंस्ट में जो A सब टाइप है उसके अगेंस्ट एंटीवायरल मेडिसिन है, लेकिन चूंकि ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा जो है फिजिबल नहीं है,
1: जी जी जी
0: इसलिए वो दवा नहीं दी जाती है, लेकिन उसके लिए अगेंस्ट में दवा है जिसमें एमेंटेडीन है,
1: हाँ
0: रिमेंटेडीन है, जो कि इस वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है,
1: जी,
0: लेकिन ये कम्युनिटी में प्रैक्टिस में यूज़ नहीं होती है, ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जो हाई रिस्क कंडीशन में काम कर रहे हैं
1: और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ तो उसमें प्रोफाइलेक्सिस में दी जाती है, ऐसे आमतौर पर इसका यूज़ नहीं किया जाता।
1: अगर हम टाइफाइड बुखार की बात करें, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और अकलता ही रहता है, इसका इलाज डॉक्टर साहब क्या होना चाहिए और कितने दिन तक होना चाहिए?
0: देखिए, टाइफाइड की बात आपने की है, तो एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कम्युनिटी में टाइफाइड को लोग ओवर डायग्नोज कर रहे हैं,
1: जी,
0: आमतौर पर बुखार टाइफाइड नहीं होता है,
1: और फिर भी
0: लेकिन मरीज जो है वो अपने गांव में या आसपास के किसी डॉक्टर से जो है प्यास जाता है, और वहां से जब एक इन्वेस्टिगेशन स्लिप लेकर के आता है जिसमें लिखा होता है कि टाइफाइड पॉजिटिव,
1: विडाल पॉजिटिव
0: विडाल पॉजिटिव है, या एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन जितना ये पॉजिटिव लेकर के आ रहे हैं कम्युनिटी में इतना जो है टाइफाइड फैला हुआ नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम इसमें ये कहेंगे कि अगर किसी को लगता है कि उसको टाइफाइड है तो पास के अस्पताल में जाकर के, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर से बताएं जाकर के, अपनी मरीज और अपनी परेशानी बताएं, ये ना बताएं सीधे कि मुझे टाइफाइड है, इससे जो है एक तो शुरू में ही आप परसेप्शन गलत चला जाता है,
1: हाँ, और वो घबराहट किसी
0: हाँ,
1: को हो जाती है
0: तो,
1: जो नहीं समझते हैं।
0: हाँ तो ये इसकी वजह ये है कि जो है विडाल है या जो और चीज़ें हैं जो है, जैसे जो हम कार्ड टेस्ट करते हैं उसके लिए एंटीबॉडी एंटीजन की,
1: जी जी जी
0: इसमें क्रॉस रिएक्शन होता है, फॉल्स पॉजिटिव भी बहुत आता है,
1: बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है,
0: हाँ,
1: एक लैब ने बना दिया,
0: हाँ दूसरे सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी डिपेंड करता है, विडाल के जो है कराते हैं लोग वो शुरू में ही करा लेते हैं,
1: हाँ,
0: या एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर लेते हैं, हालांकि जो है टाइफाइड फीवर के लिए अगर आप उसको सस्पेक्ट करते हैं, उसमें जो है आपको ऐसा मिल रहा है कि आप शक कर रहे हैं कि जो है
1: टाइफाइड
0: हो
1: है,
0: सकता है, तो उसका रिक्तम यह है कि पहले हफ्ते में ब्लड कल्चर कराते हैं
1: जी,
0: और ब्लड कल्चर जो है ऐसे भी जो है डेफिनेटिव डायग्नोसिस देता है,
1: बिल्कुल सही बात है,
0: अगर एक हफ्ता हो गया है तब आप ये एंटीबॉडी एंटीजन वाला टेस्ट करा सकते हैं, और अगर फीवर 2 हफ्ते से ज्यादा का हो गया है तब आपको चाहिए कि जो है आप विडाल टेस्ट कराएं। हाँ
1: डॉक्टर साहब, ये हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है और हमारे सामईन सुन रहे हैं, बदलता मौसम और बदलती सेहत। सामईन, कल आलमी योम ज़हनी सेहत यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर और एक सवाल हमारे सामने आ रहा है, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर मौसम बदलते वक्त ये देखा जा रहा है बहुत सारे लोगों को सर दर्द बढ़ने लगता है, या जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनका दर्द और तेज हो जाता है, तो ऐसा किस वजह से होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है?
0: देखिए, जो माइग्रेन की बात है तो उसमें यह होता है कि

0: ज़्यादातर धूप में निकलने में या टेम्परेचर बढ़ने में बढ़ता है।
1: ठीक है,
0: उसमें यह होता है कि वैसो डायलेशन हो जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो वैसो डायलेशन के साथ बढ़ जाता है और पल्सेटिंग हेडेक होता है।
1: जी,
0: इसमें जो है गर्मी से बचने की जो है
1: सलाह दी जाती है,
0: सलाह दी जाती है और उससे बच के रहना चाहिए। और जो दूसरा हेडेक वगैरह दूसरे हैं जैसे कि सर्दी वगैरह में हो जाते हैं, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से होते हैं।
1: ठीक है,
0: ब्लड सप्लाई कम हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस होता है और हल्का सा जो है डिजीनेस आ जाती है या थोड़ा सा लगता है कि सर चकरा रहा है या सर दर्द हो रहा है।
1: जी,
0: तो ये एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में जैसे कि बहुत सर्दी है या बहुत गर्मी
1: तब होता है,
0: तब की चीज़ें हैं, बहुत हल्के उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, ठंडक जैसे जैसे बढ़ती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। एक और आम बीमारी है, वो ये है कि हाथों पैरों में झुनझुनी सवार हो जाती है, थरथराहट शुरू हो जाती है, अकड़न हो जाती है, या कभी कभी घुटने में दिक्कत होने लगती है, पैर मोड़ने में कड़कड़ाहट होती है, तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या इलाज हो सकता है?
0: जो हाथों पैरों में झुनझुनाहट आपको महसूस होती है, ये जो है ठंड बढ़ने के साथ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, उससे बढ़ती, जिसकी वजह से नर्व एंडिंग्स जो है वो सेंसिटिव हो जाती है। उसमें ऐसा महसूस होता है कि पिन चुभाई जा रही है, जो है निडल
1: चुभन महसूस होने लगती है,
0: महसूस हो रही है।
1: जी,
0: ये भी आमतौर पर एक्सट्रीम टेम्परेचर पर होता है और इसका इलाज ये है कि हल्का सा जो है आप उसको गर्म कर लें किसी तरह से, हल्के यानी कि वार्म ल्यूक वार्म वाटर में अपने हाथ पैर को डाल लें, थोड़ा सा गर्मी आ जाती, ठीक हो जाता है।
1: जी
0: हाँ, लेकिन उन लोगों को इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उसमें न्यूरोपैथी हो गई है, या कोई अल्कोहलिक्स है, उसमें जो है दिक्कत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उनके अंदर आमतौर पर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है।
1: बिल्कुल,
0: या विटामिन बी12 की कमी है।
1: जी,
0: तो ऐसे पेशेंट्स को जो है सप्लीमेंटेशन में विटामिन बी12 वगैरह
1: लेना चाहिए,
0: लेना
1: वो
0: चाहिए।
1: भी डॉक्टर की सलाह से।
0: हाँ, डॉक्टर की सलाह से लें, कभी खुद से कोई मेडिसिन ना।
1: बिल्कुल सही बात है। जो नौजवान तबका है और इस मरज से बहुत परेशान है, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है?
0: जो नौजवान तबका है उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत जरूरी है
1: और वो हर तरह से है, वो किसी भी मरज में हो, इसके लिए खास तौर से आप क्या कहेंगे नौजवानों को?
0: नौजवानों के लिए कहना यह है कि वो भाई आम तौर पर जो है देखिए लाइफस्टाइल की डिजीजेज उनमें ज़्यादा आ रही।
1: जी, जैसे
0: आजकल जो है कोई भी अगर जो है फ्री है और उसके पास कोई काम नहीं है तो मोबाइल तो उसके हाथ में है ही है
1: सबसे ज्यादा। जी,
0: तो मोबाइल है तो मोबाइल पे वो कितने घंटे गुजार देता है पता ही नहीं लगता।
1: स्क्रॉल करता जाता है,
0: करता जाता है, वो क्या देखना चाहता है वो कभी मिलता ही नहीं।
1: ये चीज है, उसकी तस्कीन नहीं होती है।
0: हाँ, तो उसमें ये होता है कि जो है आमतौर पर आप देखेंगे कि यंग एज में आपके पास आएंगे और वो सीधे कहेंगे मुझे डॉक्टर साहब सर्वाइकल हो गया।
1: उनको पता भी नहीं है अभी, और वो ये नहीं जानते कि सर्वाइकल क्या है।
0: हाँ,
1: वो डायरेक्ट यही कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया है।
0: हाँ, तो हालांकि ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है, आमतौर पर 40 की उम्र के आसपास होती है।
1: जी,
0: ये जो उनको तकलीफ हो रही ये लाइफस्टाइल डिजीज है क्योंकि वो मोबाइल देख रहे हैं और बराबर सर उनका झुका हुआ है, उसकी वजह से गर्दन की जो मसल्स हैं
1: वो खिंच रही हैं,
0: वो खिंच जाती हैं, उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जिसकी वजह से नर्व में कंप्रेशन, जो नसें हैं उनमें दबाव पैदा हो जाता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है।
0: उससे उनको झुनझुनाहट, टिंगलिंग, नमनेस, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं।
1: जी जी जी,
0: और वो ये समझते हैं कि जो है हमें जो है सर्वाइकल हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: हालांकि ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए बेहतर ये है कि आदमी को अगर मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो एक तो गर्दन सीधी रख करके इस्तेमाल करे और जो है कम से कम जो है वो इस्तेमाल करे, ज़रूरत पे ही इस्तेमाल करे, सिर्फ उसमें लगा ना रहे।
1: उसके बदल में अच्छी किताबें पढ़ ले, कम से कम कोई उसका बदल ज़रूर ढूंढ ले।
0: हाँ, उसका बदल ढूंढ ले, और भी दूसरी चीज़ें हैं अब बाहर स्पोर्टी एक्टिविटी में करा।
1: हाँ, खेल कूद में लगे,
0: फिजिकल फिटनेस रहेगी और उससे जो है आप फिट रहेंगे।
1: डॉक्टर साहब, स्टूडियो की घड़ी ने इशारा कर दिया कि इस प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, चलते चलते आप हमारे सामईन को कोई खास पैगाम देना चाहेंगे, वो पैगाम आप अपना जरूर दें हमारे सामईन को।
0: चूंकि ये आपने जो है प्रोग्राम बदलते मौसम में सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है इसे रखा था,
1: जी,
0: तो चलते चलते हम आपके सामईन को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन जरूर कराएं,
1: जी,
0: ताकि जो है उनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से जो है महफूज रखा जा सके। दूसरे, आम तौर पर अगर कभी आपको बीमारी होती है, किसी भी तरह का बुखार या कोई चीज़ होती है, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, आसपास में जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ जा करके अपने परेशानी को बता करके इलाज कराएं।
1: बिल्कुल, खुद से मेडिकल स्टोर से
0: हाँ,
1: ना लें,
0: खुद से बाहर से नहीं लें क्योंकि ऐसे में कुछ दवाएं नुकसान कर सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरे ये है कि अपनी परेशानी बताएं, ये ना बताएं जा करके कि मुझे टाइफाइड हो गया है या मेरे लीवर पे सूजन है।
1: जी, खुद ही डायग्नोस ना करें।
0: हाँ, खुद अपनी डायग्नोसिस ना बताएं, इससे जो है परसेप्शन गलत जाता है, डायग्नोसिस भी गलत हो जाती है। कभी कभी आदमी भीड़ लगी हुई है,
1: उसी
0: आपने जो बताया
1: वही प्रिस्क्रिप्शन,
0: तो इससे इलाज गलत हो जाता है।
1: जी,
0: इसका ख्याल रखें।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं तरुण नंदी। आज आप इनके स्वर में गाए गीत और भजन का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं तरुण नंदी के स्वर में गाए ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप तरुण नंदी के इस स्वर में गए इस भक्ति रचना का आनंद ले रहे थे, और अब हम आपको सुनवाते हैं तरुण नंदी के ही स्वर में गया ये गीत। इस गीत की रचना की है सतीश आलोक ने।

श्रोताओं, अभी आप तरुण नंदी के स्वर में गए इस गीत का आनंद ले रहे थे और इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विभाग से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधान हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
2: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआरमडगू कैंप के पास बोधराज पदर नाले के करीब एम्यूनेशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तल अवीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैच की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा

0: होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05:13 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे साइबर अपराध पर अर्जुन द्विवेदी निरीक्षक और राहुल कुमार उप निरीक्षक साइबर सेल से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की बातचीत का तीसरा भाग। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयाग में। पिछले दो एपिसोड्स में हमने जो साइबर फ्रॉड होता है, या वो चाहे पैसों का मामला हो या किसी के व्यक्तिगत पहचान अस्मिता को धूमिल करने की कोशिश की गई हो या उसको क्षत विक्षत करने की भी कोशिश की गई हो, तो कैसे पुलिस मदद करती है, हम कहाँ जाएं, कहाँ कंप्लेन रजिस्टर कराएं, सॉल्यूशन क्या है, उस पर बात कर रहे हैं। और इस बातचीत के सफर में साथ दे रहे हैं अभयकांत तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
3: धन्यवाद नेहा जी।
2: और पिछले दो एपिसोड्स में जो एक्सपर्ट हमारे रहे हैं, अर्जुन द्विवेदी जी आप इंस्पेक्टर हैं और राहुल जी सब इंस्पेक्टर हैं, आप दोनों का भी स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम
5: जी। धन्यवाद।
2: आप दोनों ने बहुत अच्छे रूल्स बताए कि व्हाट्सएप पर जुड़ने से पहले भी सतर्क रहें, वेबसाइट के बारे में भी बताया और 1090 के बारे में, 1030 के भी बारे में बताया। अब क्या एक व्यक्ति बैंक भी जाके कोई एप्लीकेशन दे सकता है, उससे भी कुछ मदद मिलने की संभावना है?
5: अगर किसी का साइबर फ्रॉड होता है तो अपने बैंक को जा सकता है। बैंक जाने के बाद भी बैंक के स्तर से अपने अकाउंट को फ्रीज करा देगा एक अनिश्चित काल के लिए, जिससे उसके अकाउंट से फर्दर फ्रॉड ना हो सके। और जब उसको लगेगा हम सेफ हैं तो खुलवा लेगा और बैंक आसानी से उनके एप्लीकेशन में खोल देगी। अदरवाइज कुछ हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि कुछ लोग अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, उनके अकाउंट में कहीं से पैसे आए हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के लिए भी फ्रीज होते हैं, तो वो अपने बैंक में जाके एक प्रोसेस है जी आर एम के माध्यम से अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, खुलवाने के लिए वहाँ पे एक एप्लीकेशन देते हैं। वो उस एप्लीकेशन के बिहाव पे बैंक मैनेजर उसको उस वेबसाइट पे अपलोड करेगा तो बैंक के नोडल के पास जाएगा। देन बैंक नोडल उसको वेरीफाई करने के बाद रिलेटेड पुलिस स्टेशन पर भेज देंगे, जिससे वहाँ के पुलिस स्टेशन से वो वेरीफाई होने के बाद किससे फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस अकाउंट को ओपन करने की व्यवस्था की गई है।
2: कोई MRM पोर्टल भी होता है? लोगों ने कुछ बातचीत में कई बार लोगों ने सजा किया कि भाई कोई MRM पोर्टल होता है, वहाँ पे भी आप अपनी रिक्वेस्ट या अपनी समस्या रख सकते हैं।
5: जी नहीं, MRM पोर्टल जो होता है उसमें किसी अकाउंट में किसी व्यक्ति के साथ जब फ्रॉड होता है तो यदि पैसे होल्ड होते हैं तो बैंक उसको अपडेट करती है कि हमारे बैंक के इस अकाउंट में इतने पैसे होल्ड हुए हैं, इसको विक्टिम के पक्ष में उसको रिलीज किया जा सकता है। तो MRM पोर्टल पे आने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन से विक्टिम से संपर्क किया जाता है, उसे बताया जाता है इतने पैसे आपके होल्ड हुए हैं, इतने पैसे जिसमें से यह पैसा वापस आ सकता है। इसके लिए विक्टिम को स्वयं MRM पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट रेज करनी होती है। रिक्वेस्ट रेज करने के बाद वो हमारे पुलिस पोर्टल पे शो होने लगती है, जिसके बाद हम उसे फर्दर कार्रवाई करते हैं।
2: राहुल जी, ये 1930 से अलग है MRM पोर्टल?
5: जी नहीं, अगर मैं कहूँ तो 1930 या जो पोर्टल है cybercrime.gov.in, MRM एंड GRM एक दूसरे से लिंक है। कंप्लेन आप साइबर क्राइम में करेंगे या 1930 करेंगे, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस यदि अकाउंट खुलने के लिए, किसी का अकाउंट फ्रीज है खुलने के लिए, तो वो GRM पे जाएगा। यदि पैसे अनफ्रीज होने हैं, पैसे वापस आने हैं, तो MRM पे आएगा।
2: अच्छा, मतलब अगर आपने एक जगह कंप्लेन रजिस्टर करा दी है तो ये इत्मीनान रखिए कि सारी जगह कंप्लेन आपकी पहुंच चुकी है।
5: जी बिल्कुल, जैसे आप कंप्लेन रजिस्टर करते हैं विदिन 5 मिनट्स या उससे कम समय के अंदर वो संबंधित पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन शो होती है एंड एक्सेप्ट होके उस पर कार्रवाई के लिए वो आ जाती है। 5 मिनट के अंदर, जाहिर सी बात है हम लोग बात जिससे भी कम समय है उतने समय में आ जाती है। और यदि कंप्लेन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत है, आपने कंप्लेन में कोई गलती की है, तो संबंधित थाने से आपको तत्काल कॉल भी आता होगा कि आपके कंप्लेन में यह गलती है, हो सकता है अकाउंट नंबर गलत भरा हो या कुछ भी गलत भरा हो, उसके लिए आपको सुधारने के लिए पुलिस स्टेशन से कॉल भी आता है कि आपने ये गलती भरी है, आप पुलिस स्टेशन पे आइए, यह चीज देखिए आपने यह भरा है, क्या यह सही है, यदि सही है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो स्वामी

0: किया जाता है, अदरवाइज उसमें जो चेंजेज हो पुलिस स्टेशन स्तर पे बैंक अकाउंट नंबर, यूटीआर नंबर, अमाउंट, समथिंग जो भी हो उसे चेंज करके उसे सही ट्रैक पे लाया जाता है।
1: दोस्तों को बताते चलें, एमआरएम मनी रिस्टोर मॉड्यूल है, इसका फुल फॉर्म है, आप चाहे तो इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इन जानकारियों के साथ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक भी लेते हैं, श्रोताओं को फिर से सुनाते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, गीत से पहले हम लोग बात कर रहे थे MRM पोर्टल की और GRM पोर्टल की कि अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है तो कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। एक और बात मैंने बहुत लोगों में देखी है कि अगर कोई समस्या होती है तो वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं, तो क्या ये जो स्टेप है ठीक है या नहीं, या इंतज़ार करना ज़रूरी है?
1: बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी आप रजिस्टर कराते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, वापस वो उसी पुलिस स्टेशन पर आएगी जहां का आपने एड्रेस लिखा हुआ है। इसलिए अगर आपने थाने में दिया तो भी उतना ही उसको इज्जत दी जाएगी जितना आप बाहर कहीं देते हैं, क्योंकि आनी घूमकर वहीं पर है, पुलिस स्टेशन पर ही है।
0: अच्छा, मतलब आपको जो जानकारी मिलेगी, आपका जो पता है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि मेरा थाना कौन सा है।
1: जी,
0: ये जानकारी रखिए कि आप जिस भी इलाके में हैं, आपका नजदीकी थाना कौन सा है, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी।
1: बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक बार आप धार्मिक संस्थान का पता ना जाने चलेगा, लेकिन बेहद जरूरी है कि आप थाने का रास्ता जाने,
0: ताकि अगर कोई मुश्किलात हो। वैसे तो ऐसी मंगल कामना करते हैं हम अपने दोस्तों के लिए कि इस तरह की मुश्किलात ना आए, लेकिन सजग होना बहुत जरूरी है।
2: सजग होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपके साथ हो सकता है कि समस्या ना आए, आप अवेयर हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस में किसी के साथ आ सकती है, तो आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं।
1: ये जोड़ना बहुत जरूरी है,
2: कर सकते हैं,
1: ये जरूरी

0: है कि आप अपने ही नहीं जाने बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को इस बारे में जागरूक अवश्य ही करें।
1: अच्छा, एक और बात कुछ लोगों ने कही कि भाई जिस नंबर से अगर साइबर फ्रॉड हुआ या किसी की पर्सनालिटी को, उसकी अस्मिता को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, तो हम FIR ना कराएं या हम कहीं कुछ ना बताएं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि आपने नहीं बताया और कभी इन केस आपको कोई दिक्कत आई, दोबारा कुछ ऐसा हुआ कि भाई आपके ही नंबर से, आपके ही नाम से किसी ने कुछ और कहने की कोशिश की, बताने की, फंसाने की कोशिश की, तो बेहतर है एक बार थाने पे जाके रिपोर्ट करना जरूरी होता है?
0: बेहद जरूरी है। आप ऑनलाइन भी कर दें, अब तो आपके मोबाइल पर थाना है, ठीक है, आप मोबाइल ऐप से भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा दें, रजिस्टर्ड है तो आप भविष्य के लिए भी सुरक्षित हैं।
2: अर्जुन जी, जैसा कि नेहा जी ने बताया कि फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा जो साइबर क्राइम हो रहे हैं
0: जी,
2: तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है
0: जी,
2: तो एक आम नागरिक को सोशल मीडिया का यूज करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि हम इन अपराधियों से बच सकें?
0: सबसे जरूरी है कि अनधिकृत रूप से किसी भी लिंक को क्लिक ना करें, ठीक है, जो उनकी जानकारी में नहीं है और उनके मोबाइल पर डिस्प्ले हो रहा है उसको क्लिक ना करें। APK फाइल नहीं खोलनी है। APK फाइल लोग खोल देते हैं वो फ्रॉडस्टर द्वारा ही भेजा हुआ होता है, यहाँ तक कि APK फाइल फॉरवर्ड कर देते हैं लोग, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने कॉन्टेक्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। इतना लापरवाह होना कतई उचित नहीं है। APK फाइल नहीं खोलना है।
2: और जो ये सार्वजनिक वाईफाई प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कहीं जाते हैं किसी कैफे में,
0: कोशिश करें कि अगर जरूरी नहीं है तो सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें।
2: और एक केस और है कि मान लीजिए कि आपके फोन में तो पूरा डाटा है, पूरा डेटा है
0: जी,
2: कि कभी फोन खो जाए या चोरी हो जाए
0: जी,
2: तो उस केस में सबसे पहले क्या, कौन सा कदम उठाएं?
0: फोन खो जाता है, पुलिस को सूचना देना बेहद जरूरी है। उसके बाद पुलिस के सूचना बगल वाले के फोन से आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दें, अपना नंबर बंद कर दें, ये बेहद जरूरी है, ठीक है। कंप्लेन करें, नंबर बंद कर दें, आपसे संभव है तो कंप्लेन की कॉपी पुलिस तक पहुंचा दें, नहीं संभव है तो पुलिस अपने आप डाउनलोड कर लेगी।
1: अच्छा, मोबाइल नंबर का कोई 10 डिजिट का ऐसा कुछ होता है?
0: IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, वो नंबर हो तो थोड़ा सा सुविधा हो जाती है, अन्यथा की स्थिति में हमें वो नंबर निकालना होता है, थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है उसके लिए।
1: यानी आप जब मोबाइल खरीद रहे हो तो अपनी कोई अगर डायरी आपने बना रखी है तो उसमें वो नंबर जरूर नोट करके रख दें।
0: जरूर नोट कर, क्योंकि आदमी डिजिटल होता जा रहा है और बेसिक चीजें छोड़ता जा रहा है। फोन गुम होने के बाद सामान्य तौर पे लोग बता देते हैं कि आप IMEI नंबर लेके आइए, तभी आपकी फर्दर प्रोसीडिंग शुरू होगी
1: जी।
0: उसके बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास वो नंबर होता नहीं, वो इतने डिजिटल हैं, वो मतलब सामान्य तौर पे आदमी पासवर्ड भी अपना याद नहीं रखना चाहता है, अपना ईमेल खोलता है तो रीजनरेट करता है पासवर्ड। तो हम टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इतना बेस्ड हो जा रहे हैं। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी, कि एक व्यक्ति को कॉल आता है कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लिए हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहा, हाँ भैया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हमारे पास बड़ा काम है नहीं। उसने कहा कि आप बंद क्यों नहीं करवा देते? कि हाँ भैया बंद कर दो। कह अच्छा ठीक है, एक OTP गया होगा, बताओ, बंद कर देते हैं। वो OTP बताते हैं
1: जी,
0: 96,000 जितना उनकी लिमिट थी
1: जी,
0: वो चला गया। तो आप इतने डिजिटल मत हो जाओ कि आपको क्रेडिट कार्ड बंद कराना है तो आप बिस्तर पे लेटे लेटे भैया OTP ले लो, बंद कर दो।
1: जो भी काम करना है आप बैंक जाइए, विजिट करिए।
0: आप इतना तो एफर्ट कर ही सकते हैं कि आप अपनी पासबुक प्रिंट कराने बैंक चले जाएं, अपना कार्ड बंद कराना है बैंक चले जाएं। ये बहुत ध्यान रखना है कि जो नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं उसमें फ्रॉडस्टर के नंबर बहुत अधिक होते हैं। जो आपको हम बता रहे हैं cybercrime.gov.in, वो cybercrime.gov_in कर देगा, आदमी ध्यान नहीं देता है, साइट पे विजिट कर रहा है
1: जी।
2: कई फेक वेबसाइट।
0: आपने जरूर सुना होगा कि प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा था तो इतनी फेक वेबसाइट पर बुकिंग हो रही थी, रूम की और होटल की, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब महाराष्ट्र का आदमी, उड़ीसा का आदमी अपने घर बैठा बैठा ऑनलाइन बुकिंग कर लेता है, आके प्रयागराज स्टेशन पे उतरता है, अब भी वो संपर्क में है, ठीक है, कि गाड़ी नहीं आ पाई है, आप पे कर दीजिए, मैं दूसरी गाड़ी भिजवा रहा हूँ, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। वो पे करके दूसरी गाड़ी से साइट पर पहुँचता है, वहाँ कोई चीज़ है नहीं, ना तंबू है, ना कनात है, ना कुछ है, ना कुछ है, ठीक है, और लोकेशन करेक्ट है उसके पास। तो इतना डिजिटल नहीं होना है, अगर इतना डिजिटल होना है तो अवेयर भी रहना है।
1: बिल्कुल, अपने रिश्तेदारों के संपर्क में भी आप रह सकते हैं। अगर आपको दूर कहीं किसी शहर में होटल बुक कराना है और वो रजिस्टर्ड होटल नहीं है, उसका GSTN नहीं है, वो सब कुछ चेक

0: ठग लेंगे। अभय जी, इस बातचीत के दौरान आपने कुछ गोल्डन रूल्स का भी जिक्र किया, तो राहुल जी हमारे सुधीर श्रोताओं को जरूर वो गोल्डन थंब रूल्स क्या हैं बताएं।
1: जी, मैं आपको 10 गोल्डन रूल बताना चाहूंगा। वैसे तो बहुत है, पर मैं उसमें 10 जो मुख्य हैं जो मेरी तरफ से, उसमें पहला है OTP पिन CVV और पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। दूसरी, UPI पिन पैसा रिसीव करने के लिए नहीं लगता है। तीसरी बात, अननोन QR पेमेंट रिक्वेस्ट को बिना वेरीफाई के एक्सेप्ट ना करें। चौथी बात, किसी अननोन व्यक्ति के कहने पर रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। पांचवी बात, इन्वेस्टमेंट में गारंटी या यूजुअली हाई रिटर्न के लालच से सावधान रहें। नेक्स्ट, पुलिस CBI ED या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के नाम पर धमकी देने वाले व्यक्ति को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। सातवीं बात, सोशल मीडिया पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट फोटोग्राफ को सोच समझकर शेयर करें। आठवीं बात, AI जनरेटेड वॉइस या वीडियो पर कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। नौवीं बात, फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 या ऑफिशियल वेबसाइट cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट दर्ज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, घबराइए मत, छिपाइए मत और देर मत करिए।
0: बहुत शुक्रिया राहुल जी इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए और ये गोल्डन थंब रूल्स हैं उनको बताने के लिए। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रही है, बहुत कुछ जाना है हमने इन 3 एपिसोड्स के दौरान।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ थे अर्जुन जी और राहुल कुमार जी। हमने बात की साइबर फ्रॉड, उससे बचने और साइबर फ्रॉड हो जाए तो उसके बाद क्या हम कदम उठा सकते हैं, उस बारे में। हमें आशा है कि हमारे श्रोतागण इस जानकारी से काफी लाभान्वित होंगे। तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज आपने सुना साइबर अपराध पर अर्जुन द्विवेदी निरीक्षक और राहुल कुमार उप निरीक्षक साइबर सेल से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी जी की बातचीत, और प्रस्तुति अभय कांत तिवारी की थी। आज आपने इसका 3रा भाग सुना। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज आप हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में गाए लोकगीतों का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं हरविंद कुमार यादव और साथी। और अब हम आपको सुनवाते हैं हरविंद कुमार यादव और साथियों के ही स्वर में गाया लचारी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम और अब लीजिए सुनिए अरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में गाया लचारे गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम और अब लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और आज के कलाकार हैं हरविंद कुमार यादव और साथी, इन्हीं के स्वर में लीजिए सुनिए दादरा गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में गाए लोकगीतों का आनंद लिया। इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

गांधी जी ने कहा था कि किसी भी कार्य को कल पर ना टालें, जो भी करना है आज और अभी करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जिस व्यक्ति ने अपने मन की इंद्रियों पर पकड़ बना ली, वो सफल होने से नहीं रह उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात कही गांधी जी ने। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही कला।

आकार। दोस्तों, अदब की दुनिया में जब भी ऐसे कलाकार का जिक्र होता है जिसकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिल और जहन तक पहुंचती है, एक ऐसा कलाकार जिसने पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं निभाए बल्कि उन किरदारों में गुस्सा भी दिया, दर्द भी दिया, हंसी भी दी और सच बोलने की हिम्मत भी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार मेरे यानी ज्योति के साथ। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये गेस कर लिया होगा कि एक ही कलाकार में आज हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है, हम बात कर रहे हैं उनकी जिनकी आवाज में एक अलग ही वजन था। संवाद छोटा हो या बड़ा, वो उसे हर तरह से व्यक्त कर देते थे। इस तरह से व्यक्त करते थे कि वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहता बल्कि एक एहसास बन जाता था।

0: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं।
1: हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली नाना पाटेकर की।
0: तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें।

ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को छीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो, तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा, यू ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मांगता बस तुमको हूं, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताओ मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए, मेरे लिए भगवान।

श्रुता नाना पाटेकर जी को समझने के लिए उनकी फिल्मों की पूरी लिस्ट याद करना ज़रूरी नहीं है, बस उनकी आवाज़ याद कर लीजिए। वो आवाज़ जो कभी गुस्से में गरजती थी, कभी दर्द में टूटती थी, कभी किसी मासूम किरदार की तरह ठहर जाती थी, और कभी उसी आवाज़ से ऐसा कॉमेडी बन जाता था कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था। और यही तो कमाल था नाना पाटेकर का, एक कलाकार लेकिन कितने चेहरे। दोस्तों, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक थॉट थे, एक एटीट्यूड थे। तो चलिए आज उनके फिल्मी सफ़र, उनके आइकॉनिक स्टाइल और उनकी ज़िंदगी की कुछ खास बातों को याद करते हैं।

दोस्तों, क्या आपको पता है कि नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और पोस्टर्स पेंट करने से की थी। संघर्ष के उन दिनों से निकलकर 1978 की फिल्म गमन से बॉलीवुड में कदम रखा और फिर 1989 की फिल्म परिंदा में अन्ना का रोल निभाकर तहलका मचा दिया। और इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। और दोस्तों, सिर्फ परिंदा ही क्यों, फिल्म प्रहार में उनका कड़क आर्मी ऑफिसर का किरदार कौन भूल सकता है। इस फिल्म के लिए उन्होंने खुद आर्मी इंडियन आर्मी के साथ असली ट्रेनिंग ली थी।

साल 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर। इस फिल्म के डायलॉग्स ने तो मानो थिएटर्स में आग लगा दी थी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, ये डायलॉग सिर्फ सिनेमा के संवाद नहीं थे, ये समाज के खोखलेपन पर सीधा प्रहार थे। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। नाना पाटेकर जी सिर्फ सीरियस या एंग्री रोल ही नहीं करते थे, कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं था। वेलकम के उदय भाई को कोई कैसे भूल सकता है। कंट्रोल उदय कंट्रोल भाई, ये सोशल मीडिया पर मीम्स की बात जब भी आती है तो उदय भाई का कैरेक्टर सबसे ऊपर आता है। फिल्म वेलकम, राजा बाबू और टैक्सी नंबर 9211 जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी।

अगर बात करें पर्दे के पीछे के नाना पाटेकर की, तो वो एक बहुत ही संवेदनशील इंसान थे। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त किसानों की मदद के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन की भी शुरुआत की थी और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज में लगा दिया। वो सही मायने में आम जनता के हीरो थे। एक तरफ थिएटर्स में सीटियां बजाने वाला उनका डायलॉग, तो दूसरी तरफ किसानों के आंसुओं को पोंछने वाला उनका

मायने में आम जनता के हीरो थे। एक तरफ थिएटर्स में सीटियां बजाने वाला उनका डायलॉग, तो दूसरी तरफ किसानों के आंसुओं को पोंछने वाला उनका व्यक्तित्व वाकई काबिले तारीफ था।

श्रोताओं, आज हमारा दिल थोड़ा भारी है क्योंकि सिनेमा जगत के इस महान अभिनेता ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी अदाकारी, उनके संवाद और समाज के लिए उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: यार एक बात बताओ, सुबह सुबह जब आपकी फोन स्क्रीन ब्लिंक करती है और मैसेज आता है ऑटो पे सक्सेस ₹199 डेबिटेड टू योर मंथली प्लान, हम मैसेज को इग्नोर मार देते हैं और सोचते हैं अरे हटाओ यार, ₹199 में आजकल आता ही क्या है, इट्स फाइन। लेकिन कभी आपने गौर किया है, एक तरफ ये ₹199 चुपचाप हमारी जेब से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही रील्स खोलो, कोट ब्लेजर पहने 20 साल का एक लड़का कहता है, तो दोस्तों अगर तुमने 18 साल की उम्र में 500 के SIP शुरू नहीं की तो भाई तुम अपनी लाइफ में बुरी तरह से लेट हो चुके हो। लाइक सीरियसली, मतलब करे तो करे क्या भाई।

तरफ कॉफी और ओटीटी का खर्च, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट का फोमो। आज इसी उलझन की परतें हम खोलेंगे और मैं बता दे रही हूँ बहुत ही क्लियरली कि ये कोई बोरिंग फाइनेंस का लेक्चर नहीं होने वाला है, बल्कि हम समझेंगे कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ना हमारे दिमाग को वही ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं, और पैसे को लेकर हमारा रवैया असल में कैसा होना चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक गाने के साथ, और ये गाना आपको ये भी याद दिलाएगा कि जिंदगी की उलझनों के बीच मुस्कुराना भी जरूरी है।

हार्वर्ड के एमबीए रिसर्चर्स ने एक टर्म निकाला है जिसे कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग, यानी फ्रिक्शनलेस पेमेंट। इसी लैंग्वेज में कहें तो दर्द कम करूं और जेब खाली करूं। यस, ये समझिए कि जब आप 10,000 रुपए का फोन खरीदते हैं तो दिमाग को दर्द होता है, आप दो बार सोचते हैं, लेकिन जब कोई ऐप कहती है बस ₹199, आई रिपीट, इट्स नॉट 200, इट्स जस्ट ₹199।

पर मंथ, तो आपके दिमाग का पेन सेंटर ट्रिगर ही नहीं होता और इसे कहते हैं माइक्रो पेन। सोचिए जरा, एक ओटीटी ऐप ₹199, एक म्यूजिक ऐप ₹99, क्लाउड स्टोरेज ₹125, जिम की ऐप ₹299। अलग अलग देखें तो ये छोटी मूंगफली जैसे लगते हैं, लेकिन जब आप साल के एंड में इन्हें जोड़ते हैं तो ये तकरीबन 25,000 से 30,000 बन चुके होते हैं। कंपनी जानती है कि आप साइनअप तो जोश में कर लेते हैं, लेकिन कैंसिल करना उफ भूल जाते हैं। और इसे कहते हैं इनर्शिया इकोनॉमी, यानी आपकी आलस से दूसरों की कमाई। तो क्या आप भी अपनी आलस का बिल भर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। हमारे आसपास दो तरह की थिंकिंग बहुत फेमस है। पहली थिंकिंग, पैसा तो हाथ की धूल है भाई, आज है कल नहीं, और जो भी कहो सब यही रह जाना है। और दूसरी थिंकिंग, पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं। उफ, अब सच ये है कि ये दोनों ही बातें थोड़ी थोड़ी अधूरी हैं भाई। देखिए, पैसा ना तो हाथ की धूल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब घर में कोई बीमार होता है या जब महीने के आखिरी हफ्तों में राशन लाना होता है तो ये धूल काम नहीं आती है, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई काम आती है। लेकिन पैसा ही सब कुछ हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप दुनिया का सबसे महंगा बेड या गद्दा खरीद सकते हैं लेकिन सुकून की नींद नहीं। आप 5-स्टार होटल में डिनर टेबल बुक कर सकते हैं पर साथ बैठकर हंसने वाले सच्चे दोस्त नहीं। पैसा आपकी ज़िंदगी का ड्राइवर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपकी गाड़ी का पेट्रोल है। देखिए, पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन गाड़ी कहाँ जाएगी ये फैसला आपका होना चाहिए। पैसे की रिस्पेक्ट का मतलब कंजूस बनना नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी की चाबी अपने हाथ में रखना है।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, इट्स मी पूजा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जिससे बहुत से लोग डरते हैं और बहुत से लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई कैसिनो या रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है देश की अच्छी कंपनियों के विकास में छोटा सा हिस्सेदार बनने का। आपको हर दिन चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई ये रॉकेट साइंस है। अगर आप महीने में सिर्फ 500 या 1000 भी किसी सिंपल इंडेक्स फंड या SIP में डालकर भूल जाते हैं, तो टाइम आपके पैसों के लिए एक जादुई काम करता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, यानी पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी जब पैसा कमाने लगे। तो अभी ये सवाल है, ये जो हमारी परचेजिंग पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग में जिस तरह से अब हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, तो इसमें हम कैसे खुद को थोड़ा सा अलर्ट और खुद को बचा के रखें? तो दो सिंपल स्टेप हो सकते हैं। पहला, द 30-डे कार्ट रूल। जब भी कोई महंगी चीज ऑनलाइन मंगाने का मन करे, तो उसे तुरंत बाय नाउ मत करिए, बल्कि उसे कार्ट में डालो और 30 दिन का वेट करो। और आप यकीन मानिए कि आप भूल जाएंगे कि सच में आपको जरूरत है भी या नहीं। 30 दिन बाद आपको लगेगा कि ये इतनी भी जरूरी नहीं है कि इसे तुरंत ही मंगा लिया जाए। और दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आज रात अपने फोन के ऑटो डेबिट वाले मैसेज को देखो और जिस ऐप को महीने में 2 बार भी नहीं खोला है, उसकी छुट्टी कर दो भाई।

पैसों के पीछे इस कदर भागो कि अपनों के साथ चाय पीने का वक्त ही ना मिले, और ना ही पैसों को इतना बेफजूल समझो कि कल की अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों की तरफ देखना पड़े। अपनी मेहनत की कमाई की इज्जत करो, थोड़ा सा बचाओ, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, और बाकी इसे अपनी आज की जिंदगी खुलकर जियो।

आपकी दोस्त पूजा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे फिर यूथ एक्सप्रेस के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ट्विन इन रहो, अपनी वाइब में रहो, और सबसे जरूरी मुस्कुराते रहो।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम

0: की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of the Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day event, which began yesterday, is witnessing the participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities,

12:30 पर फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत सुनेगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, जिसे प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। दिन में 12:00

5:15 पर और रात में 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बड़ी गुलाम अली खां का ख्याल गायन।

बहनी सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी 1:15 पर। 2:30 पर प्रस्तुत होगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया शाम 5:00।

5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर विजय बहादुर की वार्ता, हॉर्टिकल्चर से इनकम, साथ ही सुनिएगा अरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में विकास गीत।

7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में एस के घोष के स्वर में गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। रात 8 बजे और रात 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

9:30 पर सुनेगा गज़लों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। ये थी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों की सूचना। जनपद प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रामचंद्र पटेल ने हमें ये सूचित किया है कि उनकी पुत्री काजल पटेल 12 सितंबर 2026 से ग्राम मोहम्मदपुर नौगवा राजापुर से लापता हैं। काजल की उम्र 18 वर्ष है, इकहरा बदन है, ऊंचाई 5 फुट 1.5 इंच है, चेहरा लंबा है। काजल ने गुलाबी रंग की फ्रॉक और लेगी पहन रखी है। काजल के पाए जाने की संभावना प्रयागराज के आसपास व्यक्त की गई है। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो वो कृपया थाना सुराव से संपर्क करें।

इसी संबंध में लीजिए सुनिए एक और सूचना। जनपद प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार विनोद गौतम ने हमें ये सूचित किया है कि उनकी पुत्री काजल 27 जुलाई 2026 समय 10 बजे से हीरामनपुर से लापता हैं। काजल की उम्र 18 वर्ष है, रंग सांवला, शरीर की बनावट सामान्य है, लंबाई 4 फीट 9 इंच है। काजल ने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ है। काजल के बारे में जिसे भी जानकारी प्राप्त हो वो कृपया नज़दीकी थाना से संपर्क करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से ख्याल गायन राग पीलू में।

这边来，别来，这边来，这边来。

जग बन

चटना चटना।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़ी गुलाम अली खां का राग पीलू में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: मैडम मैं बोल रहा हूँ, रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ मैडम, और रहने वाले हैं जिला फरियादाबाद, गाँव का नाम है और
0: जी
1: रहते हैं मुंबई मुम्बरा कल्याण फाटा।
0: जी जी
1: मैडम इसमें मैं ड्यूटी करके आया हूँ नाइट।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो अभी आपने कौन से गाने की फरमाइश करनी है इसके बारे में बताइए।
1: मैडम, हमारा नाम है राम जाने।
0: जी,
1: हाँ
0: इसका कोई भी गीत?
1: हाँ मैडम, इसमें सभी गाने अच्छे हैं, मिल जाएगा इसमें तो।
0: जी बिल्कुल, आपको सुनवाने जा रहे हैं राम जाने फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये कार्यक्रम मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रसारित किया जाता है और रिकॉर्डिंग का समय है सुबह 10:30 से 11 के बीच। तो अब देखते हैं हमारे संग कौन से श्रोता जुड़े हुए हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर, मऊ।
0: जी जी जी
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: परदेश फिल्म का नाम है परदेश
0: जी,
1: इसके सारे गीत हम मेरे पसंद है।
0: अच्छा,
1: कोई भी गीत।
0: अच्छा, परदेश फिल्म के वैसे गीत वाकई में बहुत ही अच्छे थे, सारे गाने अच्छे थे इस फिल्म के, फिल्म भी बहुत अच्छी थी। तो अब आपने फरमाए। हाँ जी
1: जी, हमको कोई श्रोता बहुत पहले याद किए थे, मैं नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ बताइए नाम।
1: प्रेमचंद यादव हैं
0: जी,
1: राजेंद्र कुमार हैं प्रतापगढ़ से, शारदा प्रसाद चक्रवर्ती।
0: अच्छा, ये श्रोता आपस में नाम लेते रहते हैं, जो भी सुनते हैं नाम इसका।

0: कार्यक्रम में
1: जी
0: वो
1: जी
0: जरूर नाम लेते
1: मेरा नाम
0: हैं।
1: प्रेमचंद यादव लिए थे।
0: अच्छा,
1: वो जब फोन उनका आता है तो जी मैम वो जी।
0: तो चलिए अब आपको सुनवाएं आपकी पसंद का परदेश फिल्म का गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो, अपना नाम बताएं।
1: दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी, हृदय से धन्यवाद करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है सिलसिला,
0: जी।
1: अमिताभ बच्चन साहब के साथ में लता जी ने गीत को गाया है, ये कहाँ आ गए हम।
0: वाह, बहुत ही सुंदर गीत चुना है शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने। और बहुत दिनों के बाद सिलसिला फिल्म के इस गीत की फरमाइश भी आई है। तो गीत सुनवाने से पहले अगर आपको किसी के नाम लेने हो तो ले लीजिए।
1: जी, याद करना चाहता हूँ मीरापुर प्रयागराज से शिवानी बिटिया को, और हमारे जो मित्र हैं सुरेंद्र यादव जी प्रयागराज से, प्रेमचंद यादव है भाड़िया प्रयागराज से, और राकेश कुमार जी भैया मेजा से हैं, राजेंद्र कुमार जी और प्रभाकर जी प्रतापगढ़ से। इन सभी दोस्तों के साथ में रेडियो प्रयागराज को, आकाशवाणी को सुन रहे सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
2: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बताइए।
1: अभिमन्यु।
0: अभिमन्यु जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ग्राम शेरपुर प्रयागराज
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है फूल और कांटे
0: जी।
1: गाने का बोल है बाबा तुमसे मिलने को दिल करता
0: जी। बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। किसी के नाम तो नहीं लेने मित्रों के?
1: हमारे दोस्त हैं रंजीत पासी
0: जी
1: जनका से, और करण पासी जनका से, गोरा पासी जनका से।
0: तो अब आपको सुनवाते हैं फूल और कांटे फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: संगम नगरी प्रयागराज नेवी क्लब बनपुकरा से पवन निषाद बोल रहा है मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: भीगी पलके का।
0: भीगी पलके का गाने के बोल याद है?
1: आने सुसके आए बाहर, जाने सुसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरे दिलों।
0: ये भीगी पलके फिल्म का गाना तो नहीं है पवन जी? तो ये जो आपने फिल्म का नाम बताया है, ये जीने की राह फिल्म का गीत है, आने से उसके आए बाहर।
1: हाँ मैम,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में है। जी जी
1: हाँ,
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले

दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पॉवर्टी मुहिम के तहत जिन खानदानों की निशानदेही की गई है वो सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासत में सरमायाकारी की तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की सिमत में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें एडिशन की तैयारियों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी न सिर्फ सरमायाकारी के मंसूबों को शुरू करने का एक मौका है बल्कि रियासत में रोज़गार पैदावार और इक्तसादी सरगर्मियों को बढ़ाने का एक अहम ज़रिया भी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST काउंसिल की 57वीं मीटिंग कल नई दिल्ली में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की सदारत में हुई। काउंसिल की मीटिंग के बाद वज़ीर ख़जाना ने कहा कि काउंसिल ने जुर्माने और कैद का फ़ैसला मजाज अदालत की सवाबदीद पर छोड़ दिया है। GST काउंसिल ने गिरफ्तारी के इंतज़ाम को हटाने की सिफारिश की है। काउंसिल ने इस्तगासे की हद को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से कम टैक्स चोरी करने के केसेस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब आम जुर्माने की रकम को 25,000 रुपए से कम करके 10,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनका सफ़र जन सेवा से देश सेवा, लोगों की खिदमत के मंत्र और खिदमत के लिए उनके अटल अज़्म से भरा हुआ है। खिदमत और गुड गवर्नेंस के इस विज़न के वजह से हुकूमत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की है। आज इस खसूसी सीरीज़ में हम इस बात की मिसाल पेश करेंगे कि नारी शक्ति वंदन एक्ट जैसे इकदाम के ज़रिए इस विज़न को किस तरह नाफिज किया गया है।
1: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
2: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय फ़ज़ाइया के 94वें यौम तासीस के मौके पर गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में वाक़े हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर कल एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। इस दौरान तैयारों ने एयर शो में परफॉर्म किया। प्रोग्राम में लड़ाका तैयारों और हथियारों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इनमें ब्रह्मोस मिज़ाइल के साथ देसी तैयारे तेजस, आकाश और ध्रुव भी दिखाए गए। एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एयरफोर्स डे परेड की सलामी ली और फौजियों की बहादुरी और नज्म व ज़ब्त की तारीफ की। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी।

0: सात सुरों की इस हसीन सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं निकहत
1: और मैं अनामिका,
0: स्वीकार कीजिए हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, जिंदगी कभी धूप की सुनहरी सी मुस्कान है,

0: तो कभी बादलों की भीगी सी चुप्पी, कभी उम्मीदों की सरगम है तो कभी यादों की मधुर थाप, और जब मौसम करवट बदलता है तो हवाओं में एक नई कहानी घुल जाती है, रुत रंग बदलती है और दिल अपने गीत चुन लेता है। इन्हीं बदलते एहसासों, महकती फिजाओं और धड़कती धुनों के साथ हम लेकर आए हैं आपका मन चाह कार्यक्रम
1: हेलो गृहलक्ष्मी,
0: एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपके दिल की धड़कनों से जुड़ेंगे आपकी पसंदीदा गीत, जहां आपकी एक कॉल इस महफिल को बना देगी और भी खास और भी खूबसूरत।
2: जी हाँ, और इस बात पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी

0: तो श्रोताओं, हमारी टेलीफोन लाइन ओपन हो चुकी है अब से लेकर, यानी दिन के 1:15 बजे से लेकर 2 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज इस प्रोग्राम में हमने 2 फिल्मों के गीतों को शामिल किया है, फिल्म तेरे नाम और उमराव जान। तो इन 2 फिल्मों में से किसी एक फिल्म का कोई गीत अपनी पसंद का आप सुन सकते हैं, और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें कॉल कीजिए आकाशवाणी प्रयागराज के नंबर पर। हमारा नंबर है
1: 0532-242-3649। हमारा दूसरा नंबर है 0532-2970-462। तो फटाफट हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आपका कॉल हमें हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हौसला देगा।
0: जी, तो भाई हमें संकेत मिल रहा है कि पहले कॉलर इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो,
2: नमस्कार निकट जी और अनामिका जी को सादर नमस्कार, नमस्कार। और सभी को और पूरी गृह लक्ष्मी टीम को सादर नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे।
2: मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं धीरज जी?
2: हम अच्छे, और मेरे ख्याल से आकाशवाणी प्रयागराज परिवार और आप सभी अच्छे हो गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे हैं। और बताइए गुजरात का मौसम कैसा है?
2: मौसम तो अभी डांडिया की तैयारी हो रही है।
0: जी जी,
2: और आप सभी को आमंत्रण है सभी बहनों को और भाइयों को, क्योंकि नवरात्रि का डांडिया एक शारीरिक कसरत भी पूरी पाता है, सेहत के लिए भी अच्छा है।
0: जी जी बिल्कुल। और धीरज जी, और अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आप हमेशा कॉल करते हैं इस प्रोग्राम में, हमें बेहद खुशी होती है, लेकिन कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्या करते हैं आप?
2: मैं बचपन से रेडियो से जुड़ा हूँ आकाशवाणी से।
0: जी,
2: जब छोटा 17 साल था, 57 साल हुई, तो 40 साल का सफर है आकाशवाणी से।
0: जी जी जी, तो हमारा जो फोन है वो डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि धीरज जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। तो धीरज जी, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो धीरज

0: तो उमराव जान, फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले श्रोता कॉलर की तरफ। हेलो,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते,
0: अपना परिचय दीजिए।
1: प्रेमचंद सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, और जब हमारी श्रोताओं से बात होती है तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं।
1: जी हमारा कुछ ऐसा ही हाल होता है, जब आपसे बात हो जाती है हम दो और अच्छे अलग हो जाते हैं और
0: जी
1: काम में मन भी लगा रहता है।
0: जी
1: जी
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: वैसे देखिए, रेडियो का साथ अगर हो ना तो काम में तो मन लगता ही लगता है, और साथ ही हमें बहुत सारी जो जानकारी है वो भी प्राप्त होती है, और मनोरंजन तो होता ही है।
1: जी बिल्कुल, जो आपके यहाँ से हेलो फरमाइश मधु जी पेश करते हैं ना,
0: जी
1: जी उनकी भी काफी अच्छी प्रस्तुति होती है और भी काफी अच्छे श्रोताओं से बातें करते हैं, बड़ी अच्छा प्रसारण करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी
1: जी
0: मधु जी की तरफ से आपको शुक्रिया कहते हैं। और प्रेमचंद जी, बताएं
1: जी
0: आज इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का कौन सा गीत शामिल किया जाए?
1: आप सुनवा दीजिएगा तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग।
0: तेरे
1: जी
0: नाम का टाइटल ट्रैक आप सुनना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल
0: तो आपकी पसंद का गीत आपकी रेडियो सेट पर पहुंच रहा है उज्जैन में। बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी फोन करने के लिए।
1: जी, धन्यवाद। प्रेम सिंह सिसोदिया।
0: जी, प्रेमचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे कहेंगे कि आपने इस कार्यक्रम से आप जुड़े और अपनी पसंद का गीत हमें आपने बताया, और बस उज्जैन में पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो निखत जी, लगता है हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार। यादव माता जलालपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपको, हम आपको भाई कि आपने हमें कॉल किया, हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े। तो बताइए
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो सब लोग?
0: जी जी बिल्कुल, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आप बताइए कि
1: जी
0: आप अच्छे हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं, जहाँ हैं आप वहाँ का मौसम भी बताइए ज़रा हमें।
1: जी मौसम ठीक है
0: मौसम ठीक है
1: जी
0: जी, और आपकी सेहत ठीक है ना जी?
1: जी सर, ठीक
0: जी तो बताइए,
1: ठाक।
0: आज तो आपको पता ही है कि हम आपके लिए जो दो फिल्में आपकी फरमाइशी गीत पे आधारित है उनके नाम तो आपको पता है, लेकिन हम फिर से बता देना चाहेंगे कि फिल्म
1: जी
0: है
1: सर,
0: पहली उमराव जान, और दूसरी गीत आप जिनके सुन सकते हैं उस फिल्म का नाम है तेरे नाम। तो आप बताइए कि किस फिल्म के गीत को आप तक हम पहुँचा दें? तेरे नाम का कौन सा गीत?
1: तेरे नाम कोई भी
0: जी
1: गीत सुनना
0: जी जी
1: चाहते हैं
0: ठीक
1: जी,
0: है
1: तो गीत
0: ठीक
1: तो हम
0: है
1: आपको सुनवाएंगे,
0: सर, मैं
1: लेकिन
0: नाम लेना चाहता
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: जी सर, अभी हमारे हेलो फरवाइज में मेरा नाम लिया गया है, वो शारदा प्रसाद प्रजापति
0: जी
1: मथुरा से।
0: जी जी
1: बहुत बहुत उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैम।
0: जी
1: और प्रेमचंद यादव हैं हमारे जी, तो अपने
0: प्रयागराज हाईवे के। जी
1: जी जी
0: सर
1: तो
0: जी
1: अपने सभी
0: ठीक है,
1: साथियों के साथ मिलकर सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: तो इस गीत को सुनने के लिए हमारे कुछ और श्रोताओं ने फरमाइश की थी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अनामिका, कुछ श्रोताओं की मैसेज आए थे इस गीत को सुनने के लिए, तो उनके नाम बता दें।
1: बिल्कुल भाई, नाम थे उनके अगस्त मणि त्रिपाठी जी सिद्धार्थ नगर से, रीना यादव जी ने फरमाइश की थी नवाबगंज से, दीपमाला जी कानपुर से, संजीव तिवारी जी महाराष्ट्र और साधना शुक्ला तेलियरगंज से।
0: और इस बीच हमारे एक श्रोता टेलीफोन लाइन से जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो,
2: नमस्ते मैम, दोनों मैम को
0: नमस्ते। अपना नाम बताइए।
2: रेखा यादव कुखड़ा हरिया प्रयागराज से बोल रही हूँ
0: जी। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं रेखा जी, कैसी हैं?
2: अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और बताइए क्या क्या कर रही थी इस वक्त आप? क्या कर रही थी इस वक्त, क्या हो रहा था?
2: क्या मैम?
0: क्या हो रहा था इस वक्त, क्या कर रही थी आप?
2: कुछ नहीं मैम, रेडियो सुन रही थी।
0: रेडियो सुन रही थी? तो रेडियो आप सुन रही थी तो घर के कामों से फ्री होकर सुन रही हैं या घर के काम भी साथ साथ चल रहे हैं रेडियो के सुनने के साथ साथ?
2: नहीं मैम, इस समय फ्री हूँ।
0: फ्री हैं जी। और बताइए रेखा जी, अभी नवरात्रि का पर्व नजदीक है और दशहरा का पर्व भी आ रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ आपकी तरफ से कर ली गई हैं?
2: हाँ मैम, बस तैयारी कर रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ।
0: जी जी जी, तो बताइए आज इस कार्य

0: में आपकी पसंद का कौन सा गीत शामिल किया जाए?
1: तेरे नाम का ओढ़नी नाचू ओढ़ के यार दिल परदेसी हो गया।
0: अच्छा, ये
1: अच्छा
0: गाना
1: जी,
0: पसंद है आपको।
1: यस मैम।
0: तेरे नाम फिल्म आपने देखा है?
1: हाँ मैम, जब रिलीज हुई थी तभी देखे थे, तब से अभी तक नहीं देखे।
0: अच्छा, कैसी लगी थी फिल्म ये आपको?
1: बहुत अच्छी लगी थी मैम, ये गाना तो हमें पूरा याद था पर इस समय हम भूल गए हैं।
0: अच्छा, चलिए एक लाइन ही गुनगुना के हमें सुना दीजिए तुम जी। कोई बात नहीं रेखा जी, आपकी पसंद का गीत हम आप तक भेज रहे हैं, आनंद लीजिए इस गीत का। और गीत सुनने के बाद भी कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।
1: ठीक है मैम, नमस्ते।

0: श्रोताओं, इस समय जारी है सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी, और आज इस प्रोग्राम में हमने दो फिल्मों के गीतों को शामिल किया है, फिल्म तेरे नाम और उमराव जान।
1: तनिखा जी, एक और कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बस मैम, दुआ है आप लोगों के, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
0: और आपका नाम?

0: करना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल, नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गुतनी, तहसील कोंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: वाह, इस खूबसूरत अंदाज में कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए शुक्रिया। राजन जी कैसे हैं?
1: बस मैम दुआ, आप लोगों की, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और बताइए कैसा चल रहा है आपका कामकाज खेती बाड़ी का?
1: बस मैम आप लोगों की दुआ, बहुत अच्छा चल रहा है। इस वक्त तो कटाई वटाई के फिलहाल समय धीरे धीरे आ रहा है।
0: जी, तो आपने खेत में क्या क्या लगाया है?
1: धान ही लगाया है मैम।
0: जी, तो धान तो इस समय तैयार होने की स्थिति में है।
1: जी,
0: जी बताएं।
2: तो देखिए, निखत जी ने तो आपसे बात कर ली और आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बता दी, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर जिन फिल्मों के गीत आप सुनना चाहते हैं, अगर उनकी कुछ पंक्तियां आप गुनगुना दें तो बहुत अच्छा होगा।
1: जी मैम, तेरे नाम का कोई सरगीत
2: अच्छा
1: तेरी।
2: जी, तो हम सुनवा तो देंगे, लेकिन क्या कुछ अल्फाज में अपने व्यक्त करना चाहेंगे? कुछ गीत की पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे?
1: जी नहीं मैम, इस वक्त हम कहीं दूसरी जगह खड़े, यहाँ पे आस
2: जी
1: पास हमारे कुछ लोग भी खड़े हैं।
2: जी ठीक है, तो लीजिए तेरे नाम का हम ये प्यारा सा गीत आप तक और आपके दोस्तों के पास भी पहुंचाते हैं। तो एंजॉय कीजिए अपना ये प्यारा सा गीत अपने साथियों के साथ। तो धन्यवाद हमें फोन करने के लिए। नमस्ते।

0: तो भाई हम अपने सभी सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं की जो लगातार फरमाइश आ रही है फिल्म तेरे नाम का गीत सुन रहे हैं, तो हम उन्हें बता दें कि आज इस प्रोग्राम में हमने उमराव जान फिल्म के गीत को भी शामिल किया है। और जो हमारे अगले श्रोता जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से, हम उम्मीद करते हैं कि वो उमराव जान फिल्म का ही गीत सुनेंगे। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते।

0: हाँ नमस्ते
1: नमस्ते,
0: नमस्ते।
1: अपना परिचय दीजिए।
0: संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया झूंसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बात कर रहा हूँ
1: जी
0: मैम।
1: महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
0: बस मैम बढ़िया है, सब अच्छा सब चल रहा है। कनम से आप लोगों का कार्यक्रम सुनते रहते हैं,
1: जी
0: समय
1: जी
0: बीतता रहता है, इससे बहुत अच्छा लगता है कनम से जो है
1: जी जी
0: आप
1: और
0: लोगों
1: हमें भी
0: का।
1: बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे श्रोता लगातार हर एक कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और हमें फोन कॉल्स भी जरूर करते हैं।
0: तो
1: महेंद्र जी बताएं कि आज इस कार्यक्रम
0: हाँ।
1: में आपकी पसंद का कौन सा गीत शामिल किया जाए।
0: आज उमराव जान का ये कौन सी जगह है दोस्तों जो है, क्योंकि
1: जी जी
0: तेरे नाम को कई गाने सुन चुके,
1: जी जी
0: सुन रहे
1: जी
0: थे अभी, कल
1: बिल्कुल, आपकी
0: कभी।
1: आपकी पसंद का गीत हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन जरा हमें ये बताएं कि रेडियो पर आप कौन कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं?
0: रेडियो मैडम सुबह खुल जाता है आराधना भजन, फिर रामचरित मानस, नमस्कार प्रयागराज, फिर हेलो फरमाइश,
1: वाह
0: कई कार्यक्रम आपका जो है ग्रामीण वाला भी सुनते हैं, सब
1: जी
0: लोकगीत भी पसंद ज्यादा है हमको जो है।
1: जी जी यानी बहुत सारे कार्यक्रम
0: हाँ
1: आप सुनते हैं।
0: हाँ मैम सुबह चलता रहता है कार्यक्रम भी, और रेडियो भी चलता रहता
1: जी जी तो महेंद्र जी, आकाशवाणी
0: है जो
1: प्रयागराज के प्रति अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए, कार्यक्रमों को सुनते रहिए। फिलहाल सुनिए आपकी पसंद का ये गीत। बहुत
0: है।
1: शुक्रिया,
0: थैंक यू मैडम, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।

0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं आपका।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और अब आप प्यारा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए हमें।
1: मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है।
0: जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी श्रोता हम सभी प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। और हमें बहुत उम्मीद होती है, एक इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी महफिल तभी मुकम्मल है जब आप सभी श्रोताओं का कॉल आता है। तो बताइए,
1: जी
0: आज आपके साथ साथ और भी साथी हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं?
1: जी जी
0: जी, तो बताएं कि आज तो आपको फिल्म का नाम हमारी पता ही होगा, लेकिन आप कहें तो हम फिर से फिल्मों का नाम बता दें कि भाई आप जो आज फिल्मों की गीत की फरमाइशी हमारे तक पहुंचा रहे हैं, वो दो फिल्में हैं, उमराव जान और दूसरी है तेरे नाम। तो बताएं कि आज आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए?
1: उमराव जान का कोई भी गीत।
0: जी ठीक है, हम उमराव जान का कोई भी गीत आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ थोड़ा सा और अपने बारे में जिक्र करना चाहेंगे?
1: जी हम तो ब्लाइंड हैं।
0: जी कोई बात नहीं है, ये आपकी बहुत अच्छी, एक मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी कार्यक्रमों को जिस तरह सुनते हैं, अपनी आवाज़ के ज़रिए अपना प्यारा सा संदेश हमें पहुँचाते हैं, ये बहुत प्यारी सी नेमत है ईश्वर ने आपको दी है कि इतनी खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ में आप सारे।
1: गाने भी गाते हैं थोड़ा
0: अरे वाह, तो आप गुनगुना दीजिए।
1: सा,
0: जी जी बिल्कुल,
1: थोड़ा सा गा के सुना दें।
0: जी
1: हाँ
0: जरूर
1: जी हाँ
0: सुनाइए
1: जी
0: सुनाइए।
1: बिल्कुल सुनाइए। चेहरा है या

0: जरूर था। उमराव चैन का ये
1: फेमस डायलॉग वाकई आज भी हमारी जुबानी बनी हुई है, और मुझे लगता है कि जितनी बार भी अगर कहूँ उतनी बार कम लगता है। और निखत जी, देखिए हमारे एक और श्रोता हमसे फोन कॉल्स पे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
2: हेलो।

0: श्रोताओं, सुरों की इस महफिल में आज आपकी फरमाइशों ने जो रंग भरे वो बेहद खूबसूरत थे। हर धुन में आपकी मुस्कान थी, हर गीत में आपकी चाहती थी। इस सुहानी से सफर में कभी यादों की नर्म छाँव मिली तो कभी खुशियों की उजली सी बहार। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में सहयोग रहा हमारी टेक्निकल टीम के अलावा उद्घोषिका ज्योति कुमारी की, और इस प्रोग्राम को आज आपके लिए लेकर आई थी मैं आपकी सखी निकहत
1: और मैं अनामिका।
0: और अब इजाजत दें, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: has further strengthened the message that a daughter is not a burden but a source of strength for the family and society. Over the past 10 years, Beti Bachao Beti Padhao has grown beyond a government scheme into a powerful social movement promoting the dignity, education and equal opportunities of the girl child. With Jitendra Dwivedi, Saleha Ghazi, Akashwani News, Jaipur.
1: The External Affairs Ministry has said that U.S. Department of Labor's decision concerning the Permanent Labor Certification PERM program for certain companies is distinct from the H-1B visa program. The ministry in a statement said the suspension of PERM applications does not by itself affect the validity of existing H-1B visas or the status of H-1B visa holders and their dependents. It added that though there could be some impact on the permanent residency or green card process of eligible employees of the affected companies. Earlier, the Trump administration had announced the suspension of a key employment-based green card process for 8 major technology and outsourcing companies, including Indian firms Infosys, TCS, Wipro, and HCL. The action also covers Cognizant, Cape Gemini, Microsoft, and Adobe. In cricket, India will take on the West Indies in the second of the 5-match T20 international series in Ranchi today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match, with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory. The India Meteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over South Interior, Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins Thattan Chavadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies US suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले

0: से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
4: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द
1: स्टैंडर्ड सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे।

0: श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुच्चेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, ईडीएआर, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए ईडीएआर पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच1 और अनुसूची एक्स में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं, बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के

0: इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
3: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से

0: परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
0: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
0: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: मिलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
0: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर, हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं
0: जी। तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था
0: जी।
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है
0: जी।
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
0: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
1: जी हाँ बिल्कुल, तो आइए श्रोताओं, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं,
0: क्योंकि भाषा

0: केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, श्रोताओ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
0: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
1: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले।

0: जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सूबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं,

0: में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुमेधा साहब।
0: बोले सोनिहाल।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थीं और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें

0: मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हों। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। प्राइमरी चैनल पर हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में 4:58 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, विविध भारती पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। सुनते रहिए विविध भारती।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजेंगे। अब आज की शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया।

बच्चों जय हिंद। बच्चों जरा घड़ी की तरफ तो देखो, क्या टाइम हुआ है? शाम के 5 बजे का। तो आ जाओ रेडियो के पास, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना प्रोग्राम खास नन्ही दुनिया। नन्ही दुनिया जिसमें होती है ढेर सारी मस्ती, शरारत, मीठी मीठी बातें और प्यारे प्यारे गीत। तो बच्चों गीत तो हम आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन पहले थोड़ी सी मजेदार और कुछ मीठी मीठी सी बातें कर लेते हैं। तो बच्चों कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूँ। अरे रे घबराइए मत, टेस्ट बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा है और पता है बहुत ही मजेदार है। बच्चों इसमें मैं आपसे पूछूंगी एक पहेली और आपको उसका देना है जवाब, ठीक है? तो चलिए पूछती हूँ। कागज की बनी हूँ पर उड़ती नहीं, हर शहर घूमती हूँ पर थकती नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? बताओ बताओ बच्चों, सोचो सोचो जरा कि कौन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से जानो। फिर से चलो एक मैं और क्लू देती हूँ। खड़ा रहता हूँ गली मोहल्ले के मोड़ पर, सब मुझे खिलाते हैं कागज फाड़ मरोड़ कर, मेरा रंग है लाल, बताओ मेरा नाम। तो बच्चों आपने जो सोचा था आपको कुछ समझ में आया इस पहेली का जवाब? कि थोड़ा सा और टाइम दे देती हूँ, चलो थोड़ा जल्दी से अच्छे से सोचो और बताओ कि इन दोनों पहेली का जवाब क्या होगा। वैसे मुझे पता है कि हमारे जो नन्हे साथी हैं बहुत समझदार, बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें पता होगा इसका जवाब। तो भाई आपका जो जवाब है मुझे मालूम हो गया है, वो है लेटर बॉक्स। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। तो बच्चों अगर तुम्हें अपनी नानी या किसी दूर रहने वाले दोस्त को अपने जन्मदिन की बधाई देने हो तो तुम क्या करोगे? मोबाइल पर व्हाट्सएप या कॉल? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि स्मार्टफोन आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे? भाई मैं तो जरूर तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और बच्चों आपको पता है आज ही के दिन पूरी दुनिया में चिट्ठियों को एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए डाक विभाग का गठन हुआ था। तो भाई आज तो सेलिब्रेशन बनता ही।

ये आज तो इस पर बात जरूर होनी चाहिए, है ना? तो बच्चों, बहुत साल पहले जब बस, ट्रेन या हवाई जहाज नहीं होते थे, तब राजा महाराजा अपने संदेश भेजने के लिए पता है किसका इस्तेमाल करते थे? कबूतर की मदद लेते थे। कबूतर अपने चोंच में चिट्ठी दबाकर उड़ जाते थे, है ना जादुई? और बाद में इंसानों ने खुद पैदल चलकर या घोड़ों पर बैठकर संदेश पहुंचाना शुरू किया, जिन्हें हरकारी कहा जाता था। और आज हमारे पोस्ट ऑफिस और डाकिया भैया, है ना, वो हम तक ये पहुंचा देते हैं, है ना? तो बच्चों, अब एक चिट्ठी का जो मजेदार सफर है ना, वो आपको बताती हूँ कि चिट्ठी कैसे पहुंचती है एक जगह से दूसरे जगह। तो क्या तुम्हें पता है कि जब तुम लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालते हो तो वो तुम्हारे दोस्त तक कैसे पहुंचती है? ये एक सुपर हीरो मिशन जैसा है। सबसे पहले आप अपनी चिट्ठी को चमकीले लाल रंग के लेटर बॉक्स में डालते हैं। डाकिया भैया आते हैं, डिब्बा खोलते हैं और सारी चिट्ठियां एक बड़े थैले में भरकर पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं। वहां चिट्ठियों पर बड़े मजेदार ठप्पे लगाए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि चिट्ठी कहाँ से आई है। और इसके बाद चिट्ठियों को गाड़ी, ट्रेन या हवाई जहाज में बैठकर अपने अपने शहरों की तरफ दौड़ पड़ती हैं। और आखिर में उस शहर के जो डाकिया भैया होते हैं, वो आपकी चिट्ठी लेकर साइकिल या बाइक पर आते हैं और घंटी बजाते हैं, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, डाक आई है ना? मजेदार सा ये सफर। तो बच्चों, अब मैं बताती हूँ कि दुनिया का सबसे जो छोटा अजूबा है वो क्या है। जब हम चिट्ठी भेजते हैं तो इस पर एक छोटा सा लाल रंग बिरंगा टिकट लगा होता है ना, ये चिट्ठी का हवाई टिकट होता है। इन टिकटों पर सुंदर फूल, मजेदार जानवर, कार्टून या बड़े बड़े हीरोज की तस्वीर बनी होती है। बहुत से बच्चों को अलग अलग देशों के डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक होता है। तो बच्चों, आपको है कि नहीं, है ना? आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है इसका शौक हो और हो सकता है कुछ को ना हो। तो जिन्हें शौक है वो इकट्ठा करते होंगे, और जो इकट्ठा किया जाता है ना डाक टिकट, उसे कहते हैं फिलाटेली। और बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कुछ और मजेदार और अनोखी सी बात भी मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि पानी में तैरता पोस्ट ऑफिस, आपने सुना है कभी? हो सकता है ना सुना हो, या हो सकता है सुना भी हो, लेकिन हमारे वो नन्हे दोस्त जिन्होंने नहीं सुना है, उनको बता दूं कि हमारे देश भारत के कश्मीर में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो पानी में तैरता है। इसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और एक है पिन कोड का जादू, जो मैं बता रही हूँ ना कि कुछ मजेदार और अनोखी बात आपको बताऊंगी, तो वो है एक अनोखी बात, पिन कोड का जादू। चिट्ठी पर जो 6 अंकों का नंबर लिखा होता है ना बच्चों, वो है एक सीक्रेट कोड। इसे देखकर डाकिया भैया तुरंत समझ जाते हैं कि चिट्ठी किस गली या मोहल्ले में भेजनी है। तो बच्चों, कैसा लगा आज ये डाक टिकट का सफर, ये मजेदार सी अनोखी बातें, और ये दुनिया का जो अजूबा है डाक टिकट, इसके बारे में जानकर आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी भी आपको मिली होगी, है ना? तो जैसा कि दीदी ने वादा किया था कि हम बातें करेंगे और साथ में आपको प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाएंगे, तो बातें तो हो गई हैं और आगे भी बातें होंगी, लेकिन अब मैं आपको सुनवाती हूँ बहुत ही प्यारा सा गीत।

तो बच्चों, आपको ये गीत कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना? और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि बातें भी होंगी और गीत भी आपको सुनवाएंगे, तो गीत तो हमने आपको सुनवा दिया और अब फिर से बातों की करने की बारी है ना? तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली सैनिकों की फौज रहती है? ये फौज 2400 घंटे बिना सोए आपकी रक्षा करती हैं। इस सुपर हीरो फौज का नाम पता है क्या है? उनका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी हमारा इम्यून सिस्टम। तो आइए अब एक मजेदार कहानी से जानते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करता है। तो बच्चों, हमारे चारों तरफ हवा में, मिट्टी में और खाने की चीजों में बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें जर्म्स यानी कीटाणु कहते हैं। इनमें वायरस और बैक्टीरिया शामिल हैं। ये कीटाणु चोरों की तरह होते हैं जो हमेशा शरीर के रूप में बने इन खूबसूरत किले के अंदर घुसकर हमें बीमार करने की फिराक में रहते हैं। और बच्चों, चोरों को रोकने के लिए हमारे किले में सबसे पहले आती है हमारी त्वचा। हमारी त्वचा एक मजबूत दीवार की तरह है जो कीटाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। हमारी नाक के छोटे छोटे से बाल और आंखों के आंसू भी इन कीटाणुओं को बाहर ही रोक देते हैं। अगर कोई चालाक कीटाणु गलती से चोट के रास्ते या नाक मुंह के जरिए अंदर घुस भी जाता है ना, तो अंदर बैठे जो सैनिक हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इन सैनिकों को विज्ञान की भाषा में WBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये सैनिक अलग अलग तरह के होते हैं और सबका अपना एक खास काम होता है। जैसे सिपाही है, सिपाही का काम क्या होता है? ये सैनिक पूरे शरीर में गश्त लगाते रहते हैं। जैसे ही इन्हें कोई कीटाणु दिखता है, ये दौड़कर उसे जिंदा निगल जाते हैं और खत्म कर देते हैं। और बच्चों, ये जो सैनिक है ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी, सिपाही है, जासूस और निशानेबाज भी होते हैं। ये बहुत समझदार सैनिक हैं। ये दुश्मन को देखते ही पहचान जाते हैं और उनके खिलाफ खास हथियार बनाते हैं। इन हथियारों को एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी कीटाणुओं को वैसे ही जकड़ लेती हैं जैसे पुलिस चोरों को हथकड़ी लगाती है। और तीसरा है कमांडो। ये हमारे शरीर के सबसे खतरनाक कमांडो है। अगर कोई कीटाणु हमारे शरीर की किसी कोशिका के अंदर छिप जाता है ना, तो ये कमांडो उस खराब हो चुकी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं ताकि बीमारी आगे ना फैले। और जब लड़ाई होती है तब पता है बच्चों क्या होता है? तब हमारे शरीर के जो सैनिक और बाहर के कीटाणुओं के बीच जोरदार लड़ाई होती है, तो फिर हमें बुखार आ जाता है। बुखार आने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर ने अपना तापमान बढ़ा दिया है।

ताकि गर्मी से सारे कीटाणु मर जाएं। इसलिए बुखार आना इस बात का सबूत है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी ताकत से लड़ रहा है। जैसे सैनिकों को ताकतवर बनाने के लिए अच्छे खाने और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी चीज़ों की? कि रंग बिरंगे फल और सब्ज़ियाँ आप खाएँ, भरपूर नींद लें, है ना। तो सेब है, संतरा है, पपीता, ये जो हरी सब्ज़ियाँ हैं ये आप ले लीजिए। ये सब हमारे सैनिकों के लिए पावर कैप्सूल की तरह काम करती है, सारे विटामिन्स। और बच्चों, अब घड़ी की सुई कह रही है कि आपको टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। तो अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रही थी नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। थोड़ी ही देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: दोस्तों, युवाणी का मतलब सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं है, ये एक सोच है, एक जज्बा है और एक ऐसा मुकाम है जहां हम बात करते हैं आपकी आकांक्षाओं की, आपके सपने की और आपके करियर की।
1: तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया रेडियो के उस मंच पर जो सिर्फ है और आपके लिए है। तो मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश
0: और मैं हूं उन्नति।
1: तो आप सुन रहे हैं युवाओं की धड़कन, देश की आवाज़, यानी आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
0: दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर और आज का दिन वाकई बेहद अद्भुत है क्योंकि ये एक तरफ पूरी दुनिया को जोड़ने वाला संचार यानी कि डाक का जश्न मनाता है,
1: तो दूसरी तरफ देश के भीतर रहकर देश की रक्षा करने वाले आम नागरिकों के जज्बे को सलाम करता है।
0: आज के डिजिटल युग में जब हम एक क्लिक पर संदेश भेज सकते हैं, तब डाक विभाग का महत्व कम नहीं बल्कि और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है।
1: उन्नति, वैसे आज का जनरेशन जो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीले टिक का इंतजार करती है, उन्हें क्या पता है कि उस जमाने में पोस्टमैन की साइकिल की घंटी की आवाज सुनकर दिल की धड़कनें कैसे बढ़ जाती थी।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, जानकारी की बात यह है कि आज के दिन यानी 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड के बर्न में

0: यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की स्थापना हुई और इसी को याद करने के लिए 1969 में टोक्यो में हुए सम्मेलन के बाद हर साल ये दिवस मनाया जाने लगा। और भारत 1876 में यूपीयू का सदस्य बना और वो ऐसा करने वाला पहला एशियन कंट्री बना।
1: साल 2026 की थीम है वन पोस्टल नेटवर्क इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं।
0: बिल्कुल दोस्तों, भारतीय डाक दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारत में 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
1: भले ही आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन दूर दराज के गांवों तक दवाइयां, सरकारी योजनाएं और बैंकिंग पहुंचाने में पोस्ट ऑफिस आज भी रीढ़ की हड्डी जैसी है।
0: बिल्कुल, जहाँ ना इंटरनेट काम करता है और ना ही कोरियर कंपनी पहुँच पाती है, वहाँ आज भी खादी वर्दी या साइकिल पर सवार डाकिया आज भी लोगों की सेवा कर रहा है। जैसे हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हर रोज़ एक नया एपिसोड लेकर के आते हैं, जिसमें जानकारी के साथ साथ गीतों का संगम भी होता है। तो क्यों
1: बिल्कुल।
0: ना मिथिलेश, हमारे श्रोताओं को आज का पहला गीत सुनवा दें।

0: तो दोस्तों, वर्ल्ड पोस्ट डे के साथ साथ आज का दिन बेहद खास है, टेरिटोरियल आर्मी डे यानी प्रादेशिक सेना दिवस।
1: प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना का वो अनूठा हिस्सा है जो ये साबित करता है कि देश की रक्षा के लिए सिर्फ फुल टाइम सैनिक होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक भी बंदूक उठा सकता है।
0: दोस्तों, वैसे तो इसका इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है, लेकिन आज़ाद भारत में 9 अक्टूबर 1949 को देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था।
1: इसमें 18 से 42 वर्ष के वो भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं जो पहले से ही किसी अन्य पेशे में शामिल है, जैसे डॉक्टर, वकील, किसान, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सरकारी कर्मचारी में कार्यरत है।
0: इन्हें हर साल 2 महीने की कठोर सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये नियमित सेना की तरह तैयार रहें।
1: बिल्कुल, शांति के समय देश में आने वाली आपदाओं या आंतरिक सुरक्षा में मदद करते हैं ये। युद्ध के समय इन्हें फ्रंट लाइन पर भी तैनात किया जा सकता है और इन्होंने 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
0: दोस्तों, प्रादेशिक सेना की एक विशेष शाखा है जिसे इको टास्क फोर्स कहते हैं। ये वाहिनी देश में बड़े पैमाने पर वनीकरण और नदियों की सफाई पर विशेष कार्य करती है। तो दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय था वर्ल्ड पोस्ट डे और टेरिटोरियल आर्मी डे, लेकिन हम आपसे और भी बातें करेंगे एक
1: म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर के आते हैं, तो उसी कड़ी में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक कहानी जिसकी कहानीकार हैं ओमजा सिंह। तो आइए सुनते हैं ये।
1: नमस्कार, मेरा नाम है ओमजा सिंह और आज हम कहानियों की चर्चा करेंगे। हम सब कहानियों से बने हैं और हम सब में अनेक कहानियां हैं। हर इंसान, हर जीव, हर वस्तु की अपनी कहानी है। तो बात यदि कहानियों की शुरू हो ही गई है तो बात किताब की भी क्यों ना कर लें। किताब की कहानी की क्या बात है, पूछो किताबों से तो कुछ गुनगुनाती हैं। किताब की धूल से भी खुशबू कुछ यूं आती है। बुजुर्ग किताब अनंत किस्से सुनाती है। सुनो, क्या तुम्हें भी किताब बुलाती है? नई किताब में सपने हजार हैं, बच्चे की कक्षा कल है, पर किताब तो अभी से तैयार है। सुनो जरा, क्या किताब की आवाज़ है? किताब की कहानी की क्या बात है? किताब की कहानी की क्या बात है? मैं जो कहानी कहने जा रही हूँ वो शायद कोई ऐसी गहन कहानी नहीं है जो आपको विचार में डाल दे। शायद यह आपको विचार से मुक्त कर कुछ क्षणों के लिए आपको आपके बाल्यकाल, आपके बचपन में ले जाए। कॉपी किताब की दुकानों में जो किताबें और कॉपियों की सुगंध होती है वह एक नवजीवन की सुगंध होती है। कितने ही बच्चों ने वहाँ से पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, रंग इत्यादि जाने क्या क्या अपने जीवन के न जाने कितने सपने पूरे करने के लिए खरीदे होंगे। कितने माँ बाप अपने बच्चों को पहले दिन स्कूल भेजने का सपना लिए वहाँ जाते होंगे। तो यही स्टेशनरी की दुकान होती है जो अपने अंदर न जाने कितनी कहानियाँ लिए चली आ रही हैं। यह दुकानें छोटी रही होंगी चाहे बड़ी, बच्चों की आँखों से देखिए या आँखों में बचपना ला कर देखिए, देखिएगा ज़रूर। अच्छा, मोहल्ले की एक बहुत पुरानी किताब की ऐसी ही दुकान है जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। कहानी में एक मुख्य पात्र हैं जिसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और एक दादा हैं। तो कहानी यूँ है कि दुकान तो इतनी पुरानी है कि शायद मोहल्ले के अंकल आंटी लोग भी अपने बचपन में विद्यालय की कॉपी किताबें यहीं से ले जाते होंगे। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर हर सामान मिल ही जाता है। स्कूल के प्रोजेक्ट के सामान से लेके कॉलेज के असाइनमेंट तक का हर सामान, A to Z सब कुछ मिल जाता है। ईंट की दीवार है जिसपे कुछ जगह प्लास्टर है और कुछ जगह ईंट अभी दिख रही है, पर कुछ भी कहो, दुकान में घर जैसा कुछ तो है। यह दुकान एक बूढ़े दादा की है। कद में मध्यम कद के हैं, चेहरे में गुस्सा, स्वाभिमान, शांति और बालपन सब झलकता है। बाल थोड़े सफेद हैं, दादा की उम्र हो गई है पर फिर भी बच्चे से लगते हैं। अब कैसे लगते हैं पता नहीं, बस लगते हैं। उनके क्या ही कहने, अक्सर जब भी देखो किताब पढ़ते या बेचते ही दिखते हैं। खाली बैठे तो शायद उन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। मेरे लिए तो वह दादा है पर सोचता हूँ तो समझ आता है कि वह भी कभी बेटा थे, फिर भैया हुए, फिर अंकल जी, फिर अब दादा। इंसान का नाम तो नहीं बदलता पर ये संबोधन के शब्द बदलते रहते हैं, और नाम से ज़्यादा ये वही इंसान है। खैर, अब दादा की बात करते हैं। समय के सफ़र के दौरान दादा ने कितने ही स्टेशन देखे होंगे। दादा अगर किताब

होते तो अपनी दुकान की पुरातन कहानियों की या इतिहास की किताबों के संग्रह की एक सुंदर किताब अवश्य होते। वैसे हम लोग उन्हें किताब वाले दादा भी कहते हैं, और किताब वाले दादा कहते हैं कि सामान तो मेरे समय का हुआ करता था। देखो, इसी मेज पर कभी मैंने इस दुकान की शुरुआत की थी। जेब में पैसे कम हुआ करते थे। यह मेज इस दुकान की पहली नींव है, मेरा पहला साथी। गिनती की कुल 10 किताबें लाया होगा, वह बिक गई। तो 20 किताबें लाया, वह भी बिक गई। तब तो मैं समझ गया कि भाई दुकान तो अब चल पड़ी है। तब से आज का दिन है कि इतनी किताबें इस दुकान में है कि उसकी गिनती के लिए एक किताब लानी पड़ी है। मेरे जितना बूढ़ा तो मेरा यह मेज भी होगा। हाँ, एक दो बार इसकी थोड़ी मरम्मत की जरूरत जरूर पड़ी है, लेकिन ये आज भी मेरे दुकान के साथ पूरी पार्टनरशिप में है। इसी मेज पर बैठे बैठे मुझे यह पता ही नहीं चला कि ये समय पता नहीं कब बीत गया। किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन था मैं, लेकिन जेब ने धोखा दे दिया। परिवार की मजबूरियों ने हाथ में से किताब छीन ली। पर मैं भी बड़ा जिद्दी था, सोचा किताब तो छोड़ूंगा नहीं। कलम भी अब हाथ में उठाई ली है, तो इन्हें भी अब क्यों छोड़ूं? तो क्यों ना अपना भविष्य लिखने की जगह कलम को ही अपना भविष्य बना लूं और दूसरों को अपना भविष्य लिखते देखूं। सच कहूंगा, शुरू शुरू में लगता था कि काश दुकान के इस तरफ नहीं दुकान के उस तरफ होता मैं, दुकान पर मैं आया होता। काश मैं विद्यालय जा रहा होता। काश की ये किताब मैं अपनी कक्षा के लिए ले रहा होता। काश की एक खाली कॉपी मैं खरीद रहा होता। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ समय के साथ सामान्य सा लगने लगा। मैं अपने आसपास देखा तो देखा कि मैं तो यही चाहता था कि मैं किताबों के एक ढेर में बस बैठा रहूं, तो मैं वहीं तो हूँ, इसमें क्या बुरा है? दिन भर किताबों के इर्द गिर्द रहना ही तो मेरा स्वप्न था। किताबें पढ़ता रहता हूँ और बेचता भी हूँ, कुछ पैसे भी आते हैं और मज़ा तो खूब आता है। ये कहकर दादा दुकान समेटने लगे। पर आज दादा की मुस्कुराहट कुछ अलग थी। ऐसा लगा मानो आंसुओं को बहने से मना करते करते उन्हें हंसी आ रही हो। दादा को देखकर हम सब ने पूछा कि दादा कल दुकान कितने बजे खुलेगी? कुछ कलम, कुछ कॉपी, किताब आदि लेनी है, पर मैं लिस्ट घर पर भूल आया हूँ, तो कल आके ले लेंगे। दादा ने कहा कि बेटा कल शायद दुकान न खुले। तो हमने कहा तो परसों आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और मैं पूरी बात बोल भी नहीं पाया कि दादा ने बोला, मेरा मतलब था कि बेटा शायद कल से दुकान ना खुले। जो सुना उस पर विश्वास कर पाना कठिन था, पर फिर भी पूछना तो जरूरी था कि ऐसा क्यों। दादा को कोई कारण खुद भी शायद पता न था। शायद दादा अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहते थे कि वह थक चुके हैं, क्योंकि उन्हें कभी थका हुआ तो किसी ने नहीं देखा था। तो शायद वह यही चाहते थे उनके जानने वाले या जान ही न सके कि इस व्यक्ति में थकने का भी कोई सिस्टम है भी कि नहीं। तो मैं भी कुछ और पूछ न सका। रास्ते में सोचते सोचते कि कुछ दिन पहले दादा से मैंने शायद एक कलम ली थी जिसमें मैंने 2-4 रुपए कम करवाए थे, वो सही था या नहीं था। खैर, सोचते सोचते घर आ गए। रात में नींद तो आ नहीं रही थी। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, कल जाके देख लेंगे, शायद दादा फैसला बदल दें। काश कि ऐसा हो जाए। या हो सकता है अपनी बरसों पुरानी आदत के चलते दुकान खोलने के समय खुद ही आ जाए। खैर, उत्सुकता में सुबह सुबह थोड़ा जल्दी ही नहा धोकर दादा की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। काफी देर तक वहीं खड़ा रहा कि शायद दादा आ जाए, शायद दादा आ जाए। मन तो मनाता रहा, शायद यह दादा का कोई मजाक हो। काश मजाक ही हो। दादा की दुकान का बंद दरवाजा शायद आज पहली बार देखा था, और देखते देखते मैंने देखा कि दादा आ रहे हैं। और यह देखकर मैं कुछ कह न सका। पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, और शायद दादा को मेरी सवाल सूची के बारे में पता था। दादा मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। दादा ने जल्दी से दुकान का शटर खोला और कहा, बताओ बेटा क्या चाहिए? बेटा बताओ, लिस्ट लाए हो कि नहीं? नहीं, आज भी भूल गए। मैंने कहा, दादा लेकिन दादा आप तो... मेरी बात बीच में काटते ही दादा ने कहा कि कल की बात कल की, कल पर ही छोड़ दो। अपने दोस्त को भी कोई भूलता है क्या? ये बताओ क्या है कि ये दुकान, ये किताबें मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। बुलाने लगे मुझे तो मुझे आना पड़ा, अब क्या करूं? कभी छुट्टी का दिल करेगा तो वो भी कर लेंगे, इसमें क्या है? ये दिल की और दिमाग की बात है, और दिक्कत यह है कि दोनों सही है और दोनों गलत है। तो मैं तो यही मानता हूँ, ये पल पल की बात है। अभी की कहानी है जिंदगी, कल तो बीत गया, आने वाला कल क्या है किसे मालूम। किताब का यही पन्ना अभी पढ़ना है।

0: सामने खुला है। बस करो, अब ये सब बात बस करो, चलो जल्दी से लिस्ट दिखाओ क्या क्या लेना है। स्कूल की छुट्टी होने वाली है, बच्चे आ जाएंगे, तो ये मत कहना बिल्कुल कि क्या दादा देर हो रही है, मेरा सामान पहले दो। बस कहानी बस यही थी। शायद आप सब कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़ पाए होंगे। हम सब की कॉलोनी में, मोहल्ले में, घर के आसपास कोई तो ऐसी स्टेशनरी की पुरानी दुकान अवश्य होगी। खैर, इसी कहानी को रखते हुए मैं आप सबको सहृदय नमस्कार करना चाहती हूँ। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी कहानी, कहानीकार थी ओमजा सिंह। दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं संदेश।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
5: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
6: दोस्तों, अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सेगमेंट प्रेरणा कुंज में, और आज के प्रेरणा कुंज में हम स्मरण कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व को जिसने अपना संपूर्ण जीवन समाज, शिक्षा, साहित्य और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसे महान समाज सेवी, साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी को जिन्हें लोग प्रेम और सम्मान से उत्कल मणि अर्थात उत्कल की मणि कहते हैं।
1: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान राष्ट्रवादी और समाज सेवी गोपाल बंधु दास की, जिनकी जयंती आज पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। दोस्तों, गोपाल बंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को उड़ीसा के पुरी जिले के सुआंडो गांव में हुआ था। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, देश में सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां थी, शिक्षा का अभाव था और आम जनता अनेक समस्याओं से जूझ रही थी।
0: लेकिन गोपाल बंधु दास का व्यक्तित्व बचपन से ही असाधारण था। उनमें दूसरों की पीड़ा को समझने और उनके लिए कुछ करने की गहरी भावना थी। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था मानव सेवा। उनके लिए राष्ट्र सेवा केवल भाषाओं या नाराओं तक सीमित नहीं थी। वो मानते थे कि देश की वास्तविक उन्नति तभी होगी जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनेगा।
1: गोपाल बंधु दास शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम मानते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विद्यालय केवल पुस्तकीय शिक्षा देने वाला संस्थान नहीं था।
0: बिल्कुल, यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, सामाजिक सेवा और प्रकृति के साथ जुड़कर सीखने की प्रेरणा दी जाती थी। इस विद्यालय का उद्देश्य ऐसे युवाओं का निर्माण करना था जो केवल अपने भविष्य के बारे में न सोचे बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। आज जब हम शिक्षा को केवल नौकरी और करियर से जोड़कर देखते हैं, तब गोपाल बंधु दास का शिक्षा दर्शन हमें ये याद दिलाता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक का निर्माण भी है।
1: गोपाल बंधु दास केवल शिक्षाविद और साहित्यकार ही नहीं थे, वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा ली तथा ओडिशा में राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: बिल्कुल, उन्होंने लोगों को विदेशी शासन के विरुद्ध जागरूक किया और समाज के विभिन्न वर्गों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। उनके लिए स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, वो सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, समानता और मानवीय गरिमा को भी स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। उनका जीवन हमें ये बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल कुछ महान नेताओं का आंदोलन नहीं था, इसमें ऐसे असंख्य लोगों का योगदान भी था जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जनता को जागरूक किया और राष्ट्र निर्माण की नींव मजबूत की।
1: गोपाल बंधु दास ने पत्रकारिता को भी समाज सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने समाज नामक समाचार पत्र की स्थापना की जो आगे चलकर ओडिशा के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक बना।
0: बिल्कुल, उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं था, वो पत्रकारिता को जनता की आवाज बनाने के पक्षधर थे। गरीबों की समस्याएं, सामाजिक अन्याय, शिक्षा, जन

0: जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना, इन सभी विषयों को उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से सामने रखा। यानी कलम उनके लिए केवल लिखने का साधन नहीं था, बल्कि समाज को जगाने का हथियार भी था।
1: बिल्कुल, यही कारण है कि गोपाल बंधु दास को साहित्य और पत्रकारिता दोनों क्षेत्रों में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। गोपाल बंधु दास के जीवन की सबसे प्रेरणादायक बात थी दूसरों के दुख को अपना दुख समझना। ओडिशा के जब प्राकृतिक आपदाएं और बाढ़ जैसी परिस्थितियां आती थी, तब वे स्वयं लोगों की सहायता के लिए आगे आते थे। कहा जाता है कि वे समाज के गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अपना व्यक्तिगत सुख तक त्याग देते थे।
0: बिल्कुल, और अब बात करें उनकी प्रसिद्ध कृतियों की, तो उनमें शामिल है बंदिरा आत्मकथा और धर्मपद जैसी अन्य साहित्यिक रचनाएं, जो कि काफ़ी उल्लेखनीय है। उनकी कविता में केवल भावनाएं नहीं थी, बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदार और देश के प्रति समर्पण का संदेश भी था। और इसी विचार के साथ मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को गोपाल बंधु दास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उन्हें बहुत प्रेरणा मिली होगी कि उन्हें अपने साथ साथ अपने समाज का और अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उनके आसपास, उनका भी कल्याण करने का उनमें विचार आएगा, और वो भी अपने आसपास के लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। अब इसी विचार के साथ अपने श्रोताओं को चलते चलते एक और गीत सुनवा देना चाहिए, क्यों मिथिलेश?
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की। आज हमने बात की विश्व डाक दिवस पे और टेरिटोरियल आर्मी डे पे, और आज के हमारे प्रेरणा पुंज के प्रेरणा स्रोत थे उत्कल मणि गोपाल दास बंधु, जिनके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला, जिनसे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन दोस्तों, इस मौसम में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि मौसम का परिवर्तन हो रहा है।
0: बिल्कुल, कभी बहुत गर्मी हो जा रही है, फिर कभी हमें ठंड लगने लग जा रही है, फिर कभी कभी तो बारिश भी हो जा रही है, कभी इतनी तेज़ धूप निकल जा रही है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस टाइम पर हम अपनी अपने सारे काम को अच्छे से करें, खान पान भी सही से करें, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी
1: ध्यान
0: रखें।
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौसम में होने वाले बदलावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में गर्मी की तीव्रता, अत्यधिक वर्षा और अन्य चरम मौसमी घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल, तो चलो अपने श्रोताओं को कुछ आसान टिप्स हम लोग दे देते हैं कि वो कैसे अपने अपने आप को और अपने आसपास वालों को कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं। तो जैसे कि आप कभी धूप में बाहर निकलते हैं, तो अगर आपको लगता है कि उस दिन ज़्यादा धूप है, तो आप अपने चेहरे को पूरा कवर करके निकलें। आप अपने साथ पानी वगैरह लेके निकले, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। फिर कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास का जो मौसम है, आजकल इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे जो आसपास का मौसम है वो कभी कभी ठंडा पड़ जाता है, मतलब कि उस दिन बहुत बादल हो जाते हैं या फिर उतने तेज सनलाइट नहीं रहती है, उतनी धूप नहीं निकलती है, तो ऐसे में हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं।
1: 29 शाम को समय हल्का सा गर्म कपड़े पहने।
0: हाँ बिल्कुल, अब जैसे कि सही कहा तुमने, जैसे कि अब हम नवंबर की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, तो अब हल्की हमें सुबह और शाम की ठंड भी महसूस हो रही है, जो कि वैसे तो बहुत मजा आता है कि मतलब ठंड आ रही है, हम मतलब
1: अच्छा लगेगा
0: और जो वार्म सनलाइट होती है उसमें हम रह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ अब हम वक्त हो चला है कि जब हम अपने श्रोताओं से इजाजत लें। मैं यानी उन्नति
1: और मैं मिथिलेश,
0: हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: हमारी युवा श्रोता भी अपना युववाणी कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित हैं। डॉ. जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथिओस हेसेबॉन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए

उपचुनाव में टीवीके ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तटान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है आपको जानकारी देने का आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का। पहले आज के शेष कार्यक्रम। नौ बजकर 30 मिनट पर गजलों का प्रोग्राम प्रसारित होगा कहकशा। रात्रि 8 बजे और 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम में हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत के अलावा हमारे किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर विजय बहादुर की वार्ता हार्टिकल्चर से इनकम। 7:30 पर संस्कृत कार्यक्रम में दीक्षा पांडे से उनकी काव्य रचनाएं प्रसारित की जाएंगी। 8:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे के राशि कुमार की वार्ता अ डायलॉग ऑन गिफ्ट ऑफ राइटिंग। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं।

कल रात 9:30 पर संस्कृति भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। श्रोताओं, कल है 10 अक्टूबर 2026। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 4:23 पर और इसमें हमारी विशेष कार्यक्रम प्रसारण होगा महालया का। 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु में लाला लाजपत राय के विचार प्रसारित किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर राजेश कुमार यादव से अवधेश मिश्र की बातचीत, पशुपालन का वैज्ञानिक तरीका।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर जल श्रीवास्तव और शाम 7:45 पर इन्हीं के गाए आप भजन और गीत सुनेंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे सुनवाया जाएगा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 6:50 पर होगा, जिसमें डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी की वार्ता होगी उच्च रक्तचाप का होम्योपैथी द्वारा समाधान। सुबह 8:45 पर हमारा विशेष इंटरैक्टिव कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर कमला बोस का और दिन में 12:15 पर पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी कमल सिंह की वार्ता महिलाओं के सपने और परिवार का सहयोग। इसके अलावा

शशि बाला जैन से लोकगीत हमारी ग्रामीण महिलाएं सुन सकेंगी। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे रामसूरत और साथी के गाये लोकगीत। इसके अलावा दिन में 2:30 पर भी आप लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे। कलाकार होंगे लहरी लाल जी यादव और उनके साथी। सुबह 10:30 पर हमारे संग्रहालय से इसके तहत हम आपको सुनवाएंगे पूर्व नाट्य कलाकार विजय बोस से युक्ति भद्र दीक्षित की विशेष भेंटवार्ता। कल शाम 5 धरती के गीत कार्यक्रम में अखिलेश कुमार यादव और साथियों के स्वर भी लोकगीत सुनिएगा। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई पन्नालाल यादव और साथी के गाए लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर विमलेंदु शेखर की वार्ता सुनेंगे, कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं। 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे किसान वाणी। 7:31 पर हमारी सांधिकालीन सभा में हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष भदौरिया की वार्ता होगी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स के साथ साथ प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब हमारे पास खोए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं हैं। टीकम सिंह, ग्राम चंद्रभानपुर, थाना एयरपोर्ट प्रयागराज से हमें सूचित करते हैं कि इनके संबंधी सूरज सिंह, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, एक गहरा बदन है, रंग गेहुआ है, इनके नाक की एक तरफ मस्से का निशान है। ये दिनांक 7 सितंबर 2026 से एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्र से लापता हो गए हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, गिरिजा देवी, पत्नी टीकम सिंह, ग्राम चंद्रभानपुर, थाना एयरपोर्ट, प्रयागराज। एक अन्य सूचना, मोहम्मद रऊफ खान चक प्रयागराज से हमें सूचित करते हैं कि इनके संबंधी, जिनका नाम मोहम्मद शाह हमाद रऊफ है, ये दिनांक 16 सितंबर 2026 से अफाक कलेक्शन नरुल्ला रोड प्रयागराज से लापता हो गए हैं। मोहम्मद रऊफ खान, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, रंग गोरा है, चेहरा लंबा है, ये गुलाबी रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने हुए हैं। इनके प्रयागराज और उसके आसपास से सटे जिले, विशेषकर दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में इनके पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को मोहम्मद रऊफ खान के विषय में, क्षमा कीजिए, मोहम्मद शाह हमाद रऊफ के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध हो वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, मोहम्मद रऊफ खान, निवासी 147/99 चक प्रयागराज, मोबाइल नंबर है 9335111183 यानी 9335111183। एक अन्य सूचना, शिव बहादुर यादव, मुंगारी चिरई कपूरा, प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनकी बेटी खुशी यादव, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 4 फीट 5 इंच, शरीर की बनावट एक गहरा बदन है, रंग गोरा है, चेहरा लंबा है, ये गुलाबी रंग के सलवार सूट पहने हुए हैं और इनके प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है।

इस किसी भी सज्जन को खुशी यादों के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध हो वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, शिव बहादुर यादव, मुंगारी, चिराई का पूरा औद्योगिक क्षेत्र, प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी प्रयागराज आपकी सेवा में निरंतर नित नए नए कार्यक्रमों के साथ हाजिर है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: दक्षिण ऐक्य भावे प्रतिष्ठितः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अदीस अबाबा नगरे स्वसमकक्षेण इथियोपिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा गेडियन तिमोथिवोस हेसेबोन इत्यनेन सह द्विपक्षीयवार्तां विहितवान्। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये पञ्च प्रतिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीया प्रतिस्पर्धा रांची नगरे आयोजिष्यते इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब ग्रामीण भाई अपना पंचायत घर कार्यक्रम सुनिए।

0: पंचो राम राम।
1: हम कहा भैया भोला,
0: हाँ भैया।
1: देखा भाई खेती किसानी में पंचरे बहुत मेहनत करत हैं, और बारह महीना भाई मेहनत करते हैं कि तूर दर तूर फसल अच्छी रहे, बढ़िया उनका लाभ हो सके। और यह लाभ के बड़े भाई मेहनत के साथे साथे तमाम लागत भी लागत है, तमाम कृषिकर्म होत हैं,
0: बिल्कुल
1: तमाम
0: भैया।
1: वैज्ञानिक तरीके का शोध कभी प्रयोग हो तो खेती में, तो कुल मिलाए के लागत अच्छी खासी आई जात है भाई ओकर भंडारण तक करे में। तो ऐसन में अगर उनका अच्छा दाम न मिले, निर्धारित मूल्य न मिले, तो दिक्कत बहुत हो, तो किसान हराश ही आते हैं। तो यही कुल का देखा तो भाई कि भाई उनका उचित मूल्य मिले और सही मिले, सीधे उनके खाता में आवे। तो एकरे बड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य का सरकार की तरफ से घोषणा की गई,
0: बिल्कुल।
1: जेकर उद्देश्य ही बाटे भाई कि हर फसल के पीछे कितना समर्थन मूल्य बाटे, और समर्थन मूल्य निकाले में भाई पूरा ओकर लेखा जोखा होत कि लगभग कितना खेत में कितना लागत लागत है, कितना मेहनत लागत है, कुल जोड़ गांठ के जितना हो तो ओकर भाई उसे बढ़ाई के दाम समर्थन मूल्य में दीन
0: बिल्कुल
1: जात,
0: भैया,
1: समझता है ना।
0: बिल्कुल भैया।
1: और यहाँ स्तर पे सरकार तमाम खरीदारी करत है और दाम का निर्धारण करत है। तो कहे का मतलब ये बाटे भाई, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बाटे उससे ज़्यादा तो हमें मिले तो कोनो रोक ना बा, बढ़ाई के बेच सका था अपन।
0: बिल्कुल भैया, सरकार के यह मुख्य उद्देश्य होते है कि जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो कौनों भी तरीके से यह बात से ना डरें कि अगर हम जो लागत लगावत है यह में और जो फसल पैदा करते ही एक सही दाम मिली कि ना मिली। अगर बाज़ार में अगर दाम कमा हुआ है तो आप सरकार के माध्यम से भी जो उनके खरीद के जो मन चाहे उसे अपन जो ना है अपन
1: हाँ, जो
0: उचित,
1: फसल खरीद के केंद्र रहत भैया,
0: हाँ, ओ
1: ठीक
0: पे
1: ना।
0: अपन फसल बेच के अपन सही जो ना है ओके लाभ ले सकें और किसान मन से अपन खेती किसानी करें।
1: तो कहे का मतलब ये बाटे भाई कि सरकारी तरफ से सब सुविधा दीन जात बाटे, जरूरत यह बात का बा कि पंचरे जागरूक हों, एकरे बारे में भाई जाने समझें और ओकर पूरा पूरा लाभ लें।
0: बिल्कुल भैया,
1: नहीं तो
0: देखा।
1: होत का रहा कि देखा पीढ़ी पर पार्टी सुरे में आवे कि भाई सवैया चले तो शेर चले तो पसेरी चले, ओकर हिसाब नहीं मिल पावे, जे शेर से साहूकार आवे हमुर मुर तौल के चलत चलें फिर पैसा देत रहें, समझता है ना। तो कहे का मतलब ये बाटे भाई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एकर पूरा घोषणा की जात कि इतना मिले भाई। अब जैसन अच्छी फसल बा, जैसन जो ने भी भाई श्रेणी का उत्पाद बाटे, वहाँ तरीके से समर्थन मूल्य का निर्धारण होता।
0: बिल्कुल भैया, देखें तो हम कहें कि अब जिस समय धान की कटवाही चलती है, सब किसान भैया रहे अपन मेहनत करत हुई दिन भर से जो ना थका हुई हैं, तो हम कहें आज पंचायती में का कहा है ओके बता दिन जाए,
1: बिल्कुल
0: फिर
1: भैया,
0: आगे बातचीत हम लोग बढ़ाई। एक तो हम लोग आज धान के

0: कटाई आदि तथा भंडारण पे जो उचित विधि है एकरे बारे में भी देखा एक बातचीत सुनवाओ, बेका किसान भैया जरूर सुनी ऐसी उनका लाभ मिली। और साथ ही साथ भैया एक वार्ता है हार्टिकल्चर से इनकम, ये पे भी जो ना है एक वार्ता सुनी पंच भैया रेन मूला हम कहे देखा पंचायती में जो ना है लोकगीत की जो परंपरा है और जेका पंच भैया रेन बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर थी। तो हरविंद कुमार यादव और साथी के गावा विकास गीत है, हम कहे भैया एक आवाज पंच भैया हरिन के सुनवाई दिन जाए तो फिर आगे के बात बत कही कीन जाए।
1: बहुत बढ़िया भैया सुनवाई दे
0: बिल्कुल भैया।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ भैया, देखा कितना बढ़िया से जो नहाए अपने हरविंद कुमार यादव भैया और साथी जो नहा विकास गीत सुनाए और साथे साथे संदेश भी हम लोग सुनागा। भैया एक बात यह है कि जैसे देखा अपन सरकार के माध्यम से किसानन के संबल बनावे खातिर तमाम योजना चलत रहा थे, वैसे ही समाज के अन्य वर्ग हैं जौन अपने व्यवसाय से जुड़ा है, पारंपरिक व्यवसाय से जौन है, उन्हों के थोड़ा सा और मजबूत करे खातिर सरकार एक विशेष योजना चलावत यह है जेका कहा थी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना।
2: हाँ,
1: तो भैया ये इतना बढ़िया योजना है कि एका अगर जो भी अपने समाज में अलग अलग कार्य से वर्ग से लोग हैं, जैसे बढ़ई काम करे वाले लोग हैं या नाव बनावे वाले लोग हैं या अस्त्र शस्त्र बनावे वाले लोग हैं, लोहार और जैसे कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, मोची हैं या राजमिस्त्री हैं या टोकरी चटाई बनाने वाले बुनकर हैं, गुड़िया खिलौना बनाने वाले हैं और तमाम मतलब कि ये तरह से जो भी समाज से जो उन लोग हैं जो दर्जी हैं
2: पारंपरिक परंपरा चली आ रही बात है
1: और मछली के जाल बनाने वाले मतलब ये तरह के कारीगर रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परंपरा से वो अपन व्यवसाय करते रहे हैं, तो उनका भी सर समय के साथ कहा है कि भैया देखा ओकरे प्रति लोगन की रुचि कम हो जाती है, तो ऐसे में कुशल कारीगर के अब बहुत ही कमी होती है। तो सरकार के माध्यम से ऐसे जोन भी व्यक्ति इस तरह के कार व्यवसाय से जुड़े चाहती ओकरे लिए विशेष प्रशिक्षण भी सरकार दे थे और साथ ही साथ उनका जो है प्रतिदिन के जो है उनका भत्ता भी दे थे 500 रुपया तक जो
2: बहुत बढ़िया भैया।
1: हाँ, और उनका एडवांस ट्रेनिंग दी और रहा के खाए की व्यवस्था दी और साथ ही साथ ट्रेनिंग के बाद भैया 15,000 रुपये तक के जो नहा सामान खरीदे के भी जो नहा उनका
2: अनुदान
1: दे थे। तो ऐसे में जौन भी भैया लोग इस तरह के व्यवसाय से जुड़े चाहती या जे पारंपरिक व्यवसाय से उनके साथ घरे में है परंपरा लेकिन ओके कुछ प्रशिक्षण ले चाहती तो विश्वकर्मा योजना से जुड़ें, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बहुत ही लाभकारी बा। साथ ही साथ भैया देखा हमें एक और व्यवस्था है कि अगर वो अपने व्यवसाय के बढ़ावे के लिए थोड़ा बड़ा करे के लिए कुछ उनका आर्थिक सहयोग चाहिए तो 1,00,000 रुपये तक के समझें कि उनका लोन भी मिली।
2: अच्छा,
1: वो भी मात्र 5% ब्याज पे मिला थे, बाकी ब्याज तो सरकार अपने तरफ से भरा थे और इस तरह से अपने व्यवसाय के बढ़ाए के अपन रोजी रोजगार बढ़ाए के अपन आमदनी बढ़ाए सका थी।
2: हम कहा भैया भोला ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम बटे, देखा अपने यहाँ पारंपरिक जोन कारीगर हैं ना उनका कुशलता प्रदान करब, उनका सहायता करब, समाज में देश में उनका आगे ले आओ, इस सब का जिम्मेदारी बटे भाई।
1: बिल्कुल,
2: तो वो कार्यक्रम भूल चुका रहन है सब, अब धीरे धीरे ओका मुख्य धारा में लावे के बाटे, बाजार से जोड़े के बाटे।

0: सरकार के जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, हम कहते हैं पंचहरी से जुड़े भाई और एक पूरा लाभ लें। और हम
1: बिल्कुल
0: कहा देखा भाई एक बात और पंचहरी से कहा कहा कि धान का कटाई का समय चलत बा, जी अगेर लगा रहे हैं वो काटता वहाँ है समझे था ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो धान का कटाई और साथे साथे का कुछ कृषि कार्य करे के रहा था भंडारण से लेकर सटकवही तक का, ये पर एक पंचरे विशेष बात कही सुनी है मुलुकरे पहले हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर मतलब बाग बगीचा भैया
1: बिल्कुल
0: समझता है ना,
1: बिल्कुल
0: बागवानी से का कुछ आए हो तो किसान भैया है इनका
1: बिल्कुल
0: कैसे का अच्छे से कैसे करते हैं, तो पर विजय बहादुर डॉक्टर विजय बहादुर भैया पंचन का कुछ बताओ तो हम कहते हैं सुने गुने भाई।
1: बिल्कुल भैया सुनवाई दें।
2: हॉर्टिकल्चर से बढ़ाएं आमदनी। मैं डॉक्टर विजय बहादुर विभागाध्यक्ष हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट शुआर्ट्स नैनी से आज आप लोगों के बीच में हॉर्टिकल्चर से आमदनी कैसे बढ़ाएं इसके बारे में बातचीत करेंगे। और सभी किसान भाइयों को पता है कि पारंपरिक खेती से बहुत ज़्यादा उनको इनकम नहीं मिलता, उनको आय ज़्यादा नहीं मिलती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि लागत भी कम लगे और आमदनी भी अच्छा हो और प्रति इकाई क्षेत्रफल में आमदनी कैसे ज़्यादा हो इसके बारे में आज किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। तो उसके लिए से अच्छा चुनाव वो है उद्यानिकी फसलों का। हॉर्टिकल्चर से आमदनी प्रति इकाई क्षेत्र में बहुत अच्छे से किसान भाई बढ़ा सकते हैं। एक और भी वजह है कि पारंपरिक खेती से हटकर हॉर्टिकल्चर से आमदनी क्यों बढ़ाएं। हॉर्टिकल्चर से प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है और आप देखते हैं कि टमाटर आलू बैंगन इसमें 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है और बहुत कम से कम समय में 3 से 4 महीने में ही। हॉर्टिकल्चर फसलें कैश क्रॉप की तरह होती हैं, तुड़ाई करके तुरंत बाजार में ले जाया जा सकता है और तुरंत आमदनी प्राप्त हो सकती है। आम अमरूद केला पपीता नींबू संतरा मौसम्बी सब्जियों में टमाटर बैंगन मिर्च आलू कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिसकी तुरंत उड़ाई करके आप तुरंत उसको बाजार में ले जा सकते हैं और उससे आपको आय प्राप्त हो सकती है। फूलों की जो फसलें हैं बहुत ही अच्छे हैं, ग्लैडियोलस रजनीगंधा गुलाब गेंदा तगड़ जिनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है और तुरंत ही ये मार्केट में बिक जाती हैं, तो इससे भी तुरंत आय प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी वजह है कम अवधि में तैयार होती हैं, पालक मेथी धनिया सलाद वाली फसलें मूली गाजर चुकंदर ये 45 दिन 2 महीना 3 महीने में पूरी की पूरी फसल आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है और तुरंत इसकी तुड़ाई करके आप बाजार में बेच सकते हैं और उसे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लगातार प्रति इकाई 3 से 4 फसलें ली जा सकती है, अगर आप 2-2, 3-3 महीने के लिए सकते हैं, जैसे मूली है गाजर है 2 महीने में मूली तैयार हो जाती है, पालक है 45 दिन में, मेथी है 45 से 50 दिन में, इस तरीके से अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं और प्रति इकाई क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है क्योंकि इनको कैश क्रॉप के रूप में माना जाता है। इसलिए उद्यानिकी फसलों की लोकप्रियता पारंपरिक खेती से ज्यादा है और पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से यदि बात किया जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उद्यानिकी फसलें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, खली रवण होते हैं, रेशे होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। कुछ बातों का ध्यान रखें किसान भाई कि हॉर्टिकल्चर से आमदनी को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सबसे पहले इसमें आती है उचित किस्मों का चुनाव करें। आजकल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, बहुत सारे राज्य कृषि संस्थान है, यूनिवर्सिटीज है जो कि फसल सुधार पे कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी किस्मों का चुनाव किए हैं, उसमें से आप खासकर आम के लिए पूसा अरुणिमा अंबिका आम्रपाली मल्लिका दशहरी लंगड़ा चौसा ये सब किस्मों का चुनाव कर सकते हैं और इनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है, इनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अमरूद में इलाहाबाद सफेदा इलाहाबाद सुर्खा एप्पल कलर श्वेता ललित लखनऊ 49, पपीता में पूसा नन्हा पूसा डेलिशियस पूसा मजेस्टिक रेड लेडी ताइवान, केला में ग्रैंड नैन रोबस्टा और अंगूर में उत्तर भारत के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण और अच्छी किस्में हैं पूसा नवरंग पूसा उर्वशी और ड्रैगन फ्रूट भी आजकल बहुत प्रचलित है जिसमें की प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, इसमें फाइबर पाई जाती है और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो किसान भाई इन फलों का चुनाव कर सकते हैं और तुरंत कैश क्रॉप के रूप में अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। नींबू में भी कुछ अच्छी प्रजातियां हैं, पंत प्रणालिनी कागजी कलान बारामासी विक्रम चक्रधर किन्नो संतरा नागपुर संतरा चीकू की कुछ किस्में हैं काली पट्टी क्रिकेट बॉल, तो इन उन्नत प्रजातियों का आप चुनाव कर सकते हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती है मार्केट में डिमांड अच्छी होती है, तो इससे आपको आमदनी भी अच्छी मिलेगी और आपको किसी भी तरीके से बाजार में आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसको तुरंत ग्राहक खरीद लेते हैं। सब्जियों में भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनकी उन्नत प्रजातियां अभी आ गई हैं विकसित की गई हैं जिनको कि किसान भाई जिनका चुनाव कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। भिंडी में काशी प्रगति काशी विभूति काशी क्रांति टमाटर में पूसा रूबी शीतल काशी विशेष काशी अमृत काशी अनुपम बैंगन में काशी संदेश काशी तरु काशी प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में हैं मिर्च में पूसा ज्वाला पूसा सदाबहार है आलू में

आप सभी जानते हैं कि कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, पालक में पूसा भारती, पूसा ज्योति, पूसा हरित, इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। मेथी में पूसा अर्ली बंचिंग, जो कि 45 से 50 दिन में बिल्कुल कटाई के लिए तैयार हो जाती है, तुरंत काटें और बाजार में बेचें, पूसा कसूरी। धनिया सिंधु, साधना, स्वाति, सुगुना, सुरुचि। गाजर में पूसा मेघाली, पूसा रुधिरा, पूसा असिता। मूली में पूसा चेतकी, जो कि 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है, पूसा रेशमी, पूसा हिमानी, जैपनीज व्हाइट, जिनका की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इनको किसान भाई ले सकते हैं और बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। प्याज की कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं, नासिक रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, बासवंत 780, भीमा राज, भीमा सुपर, भीमा शक्ति, ये बहुत ही उन्नतशील प्रजातियां हैं। उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होता है, 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। करेले में अगर आप देखते हैं तो प्रिया, पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, अर्का हरित। लौकी में पूसा संदेश, पूसा समृद्धि, पूसा नवीन, नरेंद्र रश्मि, नरेंद्र माधुरी। नेनुआ में पूसा चिकनी, सुप्रिया और स्नेहा। तोरई में पूसा नसदार, नूतम। लूबिया, काशी कंचन, काशी उन्नति, काशी गौरी, पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। फूलों की फसलों की अगर हम बात करें तो उसमें से ग्लैडियोलस है, अमेरिकन ब्यूटी और व्हाइट प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही उन्नत प्रजातियां हैं और तुरंत इसको काटें और मार्केट में बेचें तो बहुत अच्छी इनकम प्राप्त होती है। रजनीगंधा में रजत रेखा, श्रृंगार, स्वर्ण रेखा, प्रज्वल। गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा। गुलाब में सुपरस्टार, सेंटेड डैमेस्क रोज, हाइब्रिड टीज, फ्लोरीबंडा, ये सब बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं, जिनसे कि किसान भाई तुरंत इसकी तुड़ाई करके और बाजार में इसको उपलब्ध करा के तुरंत इससे आय प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी मौसम है, खासकर जैसे मटर है, मटर में पूसा प्रगति, काशी नंदनी, काशी उदय, ये अभी अभी विकसित की किस्में हैं। पंत सब्जी मटर 3, पंत सब्जी मटर 4, आजाद मटर 3, आजाद मटर 4, ये जो उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनकी उपज भी अच्छी होती है, गुणवत्ता भी अच्छी है, इनको किसान भाई अवश्य लगाएं। फूलगोभी में पूसा दीपाली, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल। शिमला मिर्च की मांग भी बहुत ज्यादा है मार्केट में आजकल, तो कैलिफोर्निया वंडर, पूसा दीप्ति, अर्का मोहनी, अर्का गौरव, इन किस्मों का किसान भाई चुनाव करें। खीरा, जो कि पूरे साल इसको सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पूसा संयोग, पूसा उदय, पंत खीरा वन, पंत शंकर खीरा वन। तरबूज और खरबूज के बारे में भी किसान भाई सोच सकते हैं, जो कि फरवरी मार्च में लगाने का समय है, और तरबूज की किस्में हैं सुगर बेबी, अर्का मानिक, अर्का ज्योति। खरबूज में है पूसा मधुरस, पूसा शरबती, काशी मधु, अर्का जीत, इनका चुनाव करें। और कद्दू, जो कि इसको भी पूरे साल ग्राहक इसको पसंद करते हैं, पूसा विश्वास, पूसा हाइब्रिड, काशी हरित, अर्का सूर्यमुखी, अर्का चंदन, ये इसकी उन्नत प्रजातियां हैं जिनका किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है और प्रति इकाई उनसे उत्पादन भी अच्छा मिलता है, तो इस प्रकार से किसान भाइयों की आय निश्चित रूप से ज्यादा प्राप्त होगी। सलाह देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि फल वृक्षों के साथ साथ सह फसलों या अंतर्वर्तीय फसलें जरूर लें, क्योंकि उनके बीच की दूरियां जो होती है, चाहे आम, अमरूद, आंवला, ये सब फसलें, फल वृक्ष हैं जो किसान भाई लगाते हैं, उनके बीच में काफ़ी जगह बची रहती है, तो उसमें सह फसलों जरूर लें। सब्जियों में लोबिया, मटर, बाकला, इनकी खेती करें। मसाले वाली फसलों में मेथी, धनिया, अदरक, हल्दी, इनका भी इस्तेमाल करें, परंतु बेल वाली सब्जियां बाग में न लगाएं, क्योंकि वो लतर उसमें चढ़ जाती हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब पौधे फल वृक्ष जब बड़े हो जाते हैं, उसमें छाया आने लग, अदरक है और हल्दी है, तो हल्दी की खेती भी छायादार जगह में भी की जा सकती है और उससे फल वृक्षों से आमदनी तो प्राप्त होती ही है, साथ में सह फसल के रूप में हल्दी और अदरक उगाकर किसान भाई बखूबी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। संरक्षित खेती के द्वारा बेमौसम में भी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। 50% से लेके 75% तक सरकार इसमें सब्सिडी देती है, जिसमें कि नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, हाईटेक पॉली हाउसेस, इन सब चीज़ को सरकार अनुमति देती है और 50 से 75% की सब्सिडी देती है, तो इसमें उच्च कीमत वाली सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, तरबूज, इन फसलों को उगाकर किसान भाई बखूबी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और बहुत कम से कम क्षेत्रफल में बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसान भाई ध्यान दें, क्योंकि अब पानी की कमी भी होते जा रही है, तो टपक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करें। और टपक सिंचाई प्रणाली के साथ साथ आप सभी को पता है कि फर्टिगेशन करते हैं, जिसमें कि टपक सिंचाई के साथ साथ पोषक तत्वों को उसके द्वारा पौधों को सीधे उनके जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। और
और पानी की बचत भी होती है और उर्वरक की भी बचत होती है, क्योंकि कम मात्रा में उर्वरक पौधों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, पौधे उसको बहुत आसानी से सोख लेते हैं, और इस प्रकार

0: से कम फर्टिलाइजर में, कम उर्वरक में और कम पानी में फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ नैनो फर्टिलाइजर, जो कि एक बहुत ही पिछले कुछ महीनों से इसका प्रयोग बढ़ रहा है, तो इफको फर्टिलाइजर ने नैनो यूरिया, डीएपी, नैनो पोटाश इसका भी इजाद किया है। किसान भाई इसका जरूर प्रयोग करें, जिससे कि आमदनी और उपज दोनों में बढ़ावा मिलेगी। मल्चिंग का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि खरपतवार बहुत ज़्यादा खेत में हो जाता है, और इस प्रकार से प्लास्टिक मल्च जो कि उपलब्ध है, इसके अलावा पैडी स्ट्रॉ है, इन मल्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मृदा में उसकी नमी को और उसकी तापमान को बरकरार रखा जा सकता है, पौधे का विकास अच्छा होता है, और इस प्रकार से पौधों की फलत उपज में बढ़ावा होती है, और इस प्रकार से आमदनी भी अच्छी प्राप्त होती है। कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत ही आवश्यक घटक है, जिसमें कि फल वृक्षों को समय समय पर तुड़ाई के पश्चात उनकी शाखाओं को काटते रहें, और जिसमें बीमारी लगी है उन शाखाओं को, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं, भीड़ है, उन शाखाओं को भी काट कर चारों तरफ से इस प्रकार से काटें कि उसका तापमान और प्रकाश पूरी तरीके से जा सके। बायो फर्टिलाइजर्स का भी किसान भाई जरूर उपयोग करें, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, वैम, इनका उपयोग करने से भी जो लागत है वो कम किया जा सकता है और आमदनी अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। समय पर तुड़ाई करें और उसकी छटाई करके, अच्छे से ग्रेडिंग करके, पैकेजिंग करके इसको मार्केट में सप्लाई करें, जिससे कि मार्केट में उससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो। तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें, और अगर इन सारे घटकों का किसान भाई अगर ध्यान रखते हैं, तो प्रति इकाई उनको उपज ज़्यादा प्राप्त होती है और प्रति इकाई उनको आमदनी भी अच्छी प्राप्त होती है। धन्यवाद।
1: हाँ
0: अरे
1: भैया,
0: यार
1: बोला
0: हाँ
1: देखा भाई, तो बातचीत रहे, वार्ता रही है, कितना अर्थ है समझाए कि भैया बताएं कि कौन तरीके से हमारे किसान भैया हरे बाग बगीचा से अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं, समझता है ना।
0: बिल्कुल
1: और हम
0: भैया,
1: कहा देखा, सनेस बाटे हो जाए फिर बत कही हो।
0: बिल्कुल भैया, सुना दें।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम कहे भैया,
2: हाँ भाई,
1: हम कहे कि धान की कटाई का समय तो शुरू हो गया है, तो आपन धान की कटाई शुरू कराएं कि नहीं?
2: ये भैया देखा, कुछ तो धान हमारा गेल लाग रहा है, ओकर तो हम कटाई करवाई लिए ही। अब तनी भाई फसल सूख जाए खेते में ना, मौसम भी ठीक है, घाम हो रहा बाटे, तो तनी सूख जाए तब ओकर सटकवनी कराई।
1: हमरो भैया देखा जो ना है, दो बीघा जो ना है पटिया जौन रही कट गया बा, लेकिन अब जो ना है एक बीघा बचा है, तनी पिछड़ के लगा रहा। तो लेकिन भैया देखा, धान की कटाई तो इस समय चलत है, लेकिन बहुत सारे किसान भैया ने इतना मेहनत करके फसल के उत्पादन करत हैं, लेकिन ओके कटाई के सही तरीका कई बार नहीं जानते हैं या भंडारण के सही तरीका नहीं जानते हैं, तो ऐसे में फसल भी जो ना है उनके खराब हो के हमेशा डर बना रहा थे।
2: ये भूला भैया देखा, धान के फसल में या गेहूँ के फसल में कभों कभों ये होता कि आदमी जाने अनजाने में थोड़क लापरवाही हो गई, ध्यान ना देते, अलग अलग बेहन मिल जाता, अलग अलग प्रजाति के बेहन एक साथ हो जाता, लगावत की तो फसल लगा दिन जाता। बोल हो तो कहा कि एक फसल तपक जा, दूसर का देखबा तो थोड़ थोड़ बीच बीच में कतह छूटा रहा ना पाक रहा था, ओकर समय आगे पीछे रहा था। तो हम तो समझते है भाई ऐसन में मोह माया ना करे, अगर ऐसा फसल दिखाई पड़े तो ओका निकाल दी,
1: बिल्कुल
2: दूसर ताकि खेत खाली हो जाए। दूसर बात एक ये है कि पराली का समस्या जोन बाटे समझता है न, कि होत का कि अब मने मजे का मशीने से कटवाई करावे लगा है, तो हमें खूंथी थोड़ का चार पांच अंगुल ऊपर तक रह जाता था। तब फिर लगा था कौन का कि का हो भाई, गेहूँ खेते में या रवि के तूर में नुकसान करे, तो ओका जराए दिए थे, और जराए से कहा होता कि तीन नुकसान होता, एक तो भाई परी

0: पर्यावरण का, समझे तो है ना, धुआं धक्कड़ भर। दूसर बात यह है कि जो मित्र कीट है वो खत्म हो जाते हैं, और तीसरका है जो उपजाऊ मिट्टी है ना भाई, उजरियात है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: तो पीढ़ी से कमाई माटी अगर खराब हुई तो खराब होगी। तो कहे के मतलब ये बाटे कि भाई ओकर प्रबंधन करें। प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका ये बाटे कि दुई तीन बाग खेत का जुताई दें। आखिर जुताई तो करवा ही को पड़ा था। तो एक तो यह अगर अच्छी जुताई होगी पलेवा, मान लिया नमी ना बाटे, पलेवा दे के पड़ा तो गहराई तक जुताई हो जाए, तो जितना खूंथी बाटे वो सब माटी के नीचे दबाई जाता है, और धीरे धीरे सर के भाई खाद का काम नतजन कत गजबे काम करत है। तो खेती का लागत तो बची, खाद
1: बिल्कुल
0: मुफ्त में
1: बिल्कुल।
0: मिला। दूसर बात यह है कि अगर चाह तो का बिन ले निकाल ले, निकाल के ओकर कंपोस्ट का खाद बहुत बढ़िया बनत है।
1: बिल्कुल
0: माटी
1: बेस्ट।
0: माटी के नीचे केचुआ चुआ डाई के ओका बना ले, थोड़ा गोबर डाल के,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जब तक खेत तैयार हो तुहार गेहूं का या रबी का, तब तक वो खाद डावे के बहुत बढ़िया बन जाता है।
1: बिल्कुल भैया, इतना बढ़िया खाद होते कि पूछा ना। और एक बनावे में इतना फायदा है कि अगर बढ़ियों गवा तो आपके नुकसान नहीं बका, आप दूसरे के बेचू सकत हैं।
0: तब वह कहा कि मतलब बना भाई बहुत बढ़िया बाजार बाटे कर। देखा किलो का आधा किलो का पैकेट बने बने के, और 50-50, 60-60 रुपया भैया मिलते ही, समझता है ना। तो कहा कि मतलब ये बा कि खेती से अगर थोड़ा सा विविधता पंचहरे सोचें तो कई माध्यम से उनका लाभ हो सकता है। एक बात
1: बिल्कुल।
0: भूला यो कहा का है जो भंडारण का बात करते हैं ना, तो एक तो भाई धान का सटकर के पीछे देख ले, पहले देख लें कि धान पकी गो सुखाई हो, ताकि वो डांठे से छूट जाए, समझता ना, पीटे
1: बिल्कुल
0: समय
1: बिल्कुल।
0: अच्छे से। दूसर बात यह है ओकरे बाद धान का झुरवाई लें, जब लगे कि भाई हाँ अब ई मशीनी में ले जाए एक बड़े राइस मिल में, या जो भी विधि चाहे, अब जहाँ तक कूटती दबा रही, अब तो बाटे सहारा मशीने के, तो वह
1: बिल्कुल।
0: तरीके से ओका कह सकत हैं, ताकि उनका धान टूटे ना, बढ़िया चावल निकले, अच्छा चावल दिखाऊ में होकर बाजार भाव अच्छा मिल सके।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो यह कुल बातन पर पंचन का गौर विचार करे क्या है, और अगर भंडारण करता है घर में रोका तो है रखा तो है, तो ये देखे रहा है भाई कि जो ने बोरा में रखा था बोरा खूब सूखा हो, नहीं तो हमें जो नहीं गमकसिन का पाउडर आवत ना भैया, या यह तरीके का दवाई आओ, तो ओमा पहले घोल बना के उसका बोरा खूब अच्छे से धो के सुखवा लें, तब उसमें भंडारण करें। दिवाली से एकदम सटाई के न रखें, थोड़ का ईंटा बाटे या लकड़ी के पाटा बाटे ओकरे ऊपर रखें, और ऐसा जगह पर रखें जहाँ मूस बिलाज ना हो भाई, बारिश के पानी के बौछार ना आवे, समझता है ना।
1: बिल्कुल भैया। देखा ये आप बातचीत जो हम बतावत हैं, एक बातचीत यह है धान की कटाई आदि तथा भंडारण की उचित विधि। तो हम कहे आप मुकेश तिवारी भैया से, सरेन भैया के बातचीत है, आप पंच भैया को सुनवा दें जाए, तो फिर बाद वो कही हम लोग करेंगे।
0: सुनवा दिया श्री मुकेश तिवारी जी, आप ग्राम समन्वय कहाँ हैं, कार्डेट इफको फूलपुर में। तो जैसन कि भैया आप सब खेती बाड़ी जानकार रहा है, किसान के बीच में जात हैं, और उनसे खास तौर पर कृषि का जोन भाई विकास बाटे, कृषि में जोन शोध भा है, जोन आविष्कार भा है, ओकर चर्चा करत हैं, और उनका सहमत करते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि का कार्य करें, कटाई मड़ाई करें और भंडारित करें, ताकि भाई उनका भरपूर उत्पादन और लाभ मिल सके। तो खासतौर भैया जो खरीफ के फसल में हमारे किसान भैया हरे धान का खेती करे रहे ना, तो जगेती लगा रहे हम भाई कटाई मड़ाई और भंडारण चल रहा बाटे, साथे साथ अब जो किसान पिछड़ा है उन्हों को हफ्ता 10 दिन में कटाई मड़ाई भंडारण का काम होबे करे। तो खासतौर भैया कौन वैज्ञानिक तरीका बाटे जैसे कि धान का कटाई करें, मड़ाई करें और का भंडारित करें, ताकि फसल सुरक्षित रहे, धान टूटे न, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।
2: किसान भाइयों, जैसा कि आपकी धान की फसल इस समय तैयार है, जो अगेती किस्में 110 से 15 दिन की हैं वो कटाई हो रही हैं, मध्यम किस्में 120 से 30 दिन की वो भी तैयार हैं, और जो देर से पकने वाली फसलें हैं धान की 130 से 35 दिनों में, वे भी आगे आप काटेंगे।
0: जी
2: धान की कटाई के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें,
0: बिल्कुल बताओ भैया।
2: जिसमें आपको कटाई मड़ाई और भंडारण के दौरान अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको धान का उत्पादन में क्षति जो छोटी मोटी होने वाली रहती है वो नहीं होगी। दूसरे, चावल जो आपको मिलेगा वो साफ मिलेगा, टूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो धान की कटाई, जैसा कि आप जानते हैं,

0: श्रमिकों के द्वारा हंसिया और दराती से की जाती है,
1: हाँ
0: और इससे फसल की क्षति भी कम होती है, साथ
1: हाँ
0: में पुआल की मात्रा भी आपको अधिक मिलती है, जिसको आप बेचकर अपना आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं।
1: नीचे से कटाई करी है भाई तो पुआल ज्यादा मिले, और
0: जी
1: साथ में जब जुताई करी है तो जो जड़ बाटे
0: जी जी
1: वो सड़ के खाद का भी
0: उसको
1: काम
0: सड़ने
1: करे,
0: में भी समय कम लगेगा और खाद का काम करेगा।
1: बहुत बढ़िया भैया।
0: दूसरा, अगर आप शक्ति चलित यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर, रीपर से कंबाइनर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपको समय कम लगता है और लागत भी कम आती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का, जैसे कटाई के समय आपकी बालियों का रंग जो होता है वो सामान्यतः सुनहरा पीला हो जाता है,
1: जी
0: और आपके धान में उस समय लगभग 20 से 22% की नमी होनी चाहिए।
1: अच्छा
0: इससे अधिक नमी पर अगर आप कटाई करेंगे तो चावल की प्राप्ति कम होगी और उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। कटाई सही समय से कर लेनी चाहिए और इतना ध्यान रखना चाहिए कि फसल भूमि पर न गिरे, अन्यथा चूहों कीटों का प्रकोप पड़ सकता है धान की फसल पर।
1: अच्छा और साथ साथ भैया जो मड़ाई के बात बाटे एका कैसे करें, जैसे पारंपरिकता तो यह है भैया कि हम सटकवनी करी थे
0: हाँ
1: ओका
0: हाँ
1: सटक के रखा जात है, तो अगर सटकई का है तो का कुछ सावधानी बरतई का है, और फिर भाई पुआल का और जो अनाज बाटे एका कैसे व्यवस्थित करें।
0: आपको धान की मड़ाई जो अगर आप श्रमिकों के द्वारा कर रहे हैं, तो काटे हुए धान को आपको मड़ाई करने के लिए शक्ति चलित यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, श्रमिकों का उपयोग कर सकते हैं, पशुओं का कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन अगर आप श्रमिकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो लकड़ी के या लोहे के डंडों से आप काटे गए धान को पीट के धान की फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप लकड़ी के फट्टे या लोहे की कठोर सतह पर धान को छटक कर या पटक कर भी धान के दानों को पुआल से अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब एक जरूरी विधि आती है कि आपको समय कम लेना है, तो आप तारों से बने हुए ड्रम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ड्रम को पैर से पैडल बना के चलाया जाता है और बालियों को तार के संपर्क में लाया जाता है।
1: अच्छा
0: और
1: तिवारी जी एक बात ही भैया कि जब फसल का कटाई हुए खेते में ओकरे कितना समय या कितना दिन के बाद सटकवनी करे के चाहिए।
0: देखिए, जैसा कि आप अगर मशीनों से कटाई कर रहे हैं, उसमें तो आपको तुरंत के तुरंत धान की
1: जी
0: फसल दाने अलग कर देते हैं। लेकिन अगर आप श्रमिकों से करवा रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उसको 1 या 2 दिन के अंदर में मड़ाई कर लीजिए,
1: मतलब
0: अन्यथा दाने ओस से भीगेंगे, नमी आ सकती है और एक जगह रखे रखे उसमें कीड़ों का प्रकोप भी पड़ सकता है।
1: का मतलब ये बात है भाई कि रोज दो रोज में को सटकवनी कर ले के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा तिवारी जी एक बहुत जरूरी बात ही होत है कि भाई जब हम पुआल का और दाना का अलग कर लिया तब ओका हम भंडारित कैसे करी, का सुखाई ले ही हम धान का तब भंडारित करी, या जब सटकवनी होई के बाद धान अलग होई के बाद तब हम भंडारित कर ली
0: जी
1: ताकि कुटावे के समय में धान का टूटे के संभावना कम से कम रहे।
0: मैंने पहले बताया आपको कि हम धान की जब कटाई करते हैं तो 20 से 22% तक की नमी रहती है,
1: जी
0: लेकिन इस नमी पर हम भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको भंडारण करना है, तो आपको नमी को 12 से 13% तक लाना होगा। इसके लिए हम शुष्कीकरण की प्रक्रिया को उपयोग में लाते हैं, जिसमें हम काटे जो धान के दाने हैं उनको हम सौर ऊर्जा में सुखा लेते हैं,
1: मतलब सूरज के सामने
0: सूरज के
1: सूरज की
0: सामने रख
1: रोशनी
0: देते
1: में
0: हैं। हाँ
1: फैलाए दे।
0: जी।
1: हाँ
0: इसके अलावा आजकल आपके पास विद्युत चलित शुष्कीकरण यंत्र भी हैं कई आकार में, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर रखनी हैं। उन सावधानियों में देखिए, पहला बात तो ये है कि जब धान को सुखाना हो, तो आप धान को एक पतली परत के रूप में बिछाएं, फर्श पे, तिरपाल पे, चटाई पे, जिस पे भी बिछाएं, पतली परत के रूप में बिछाएं।
1: हमरे सबके बचपने में याद बाटे कि दुआरे पे गोबरे का लेपनी हो जाए और जब गोबर का लेपनी खूब सूख जाए तब ओकरे ऊपर धान का फैलाए दिन जात रहा, और सवेरे फैलावा जाए जब संझा तक खूब घाम लग जाए तब ओका बोरा में बंद करके रख लीन जात रहा। और होत का रहा कि धान का कुटाई हो तो धान अलग हो जात रहा भैया, भूसी अलग हो जात रहा, धान टूटता तो नहीं रहा,
0: जी
1: तो हम
0: जी
1: समझे थे पारंपरिक विधि आज भी कारगर बा।
0: बिल्कुल, पारंपरिक विधि आज भी चल रही है। और उसमें एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह
1: हाँ
0: है कि अब खेतों में एक जगह जगह दूर दूर खेत होते थे, तब लोग वहाँ पे खेतों में ही ओसाई लिपाई करके अपना वहाँ कर लिया करते थे, ओसाई और सुखाने का काम। लेकिन अब आपके पास साधन है, उन साधनों का प्रयोग करके उसमें फसल में क्षति होती थी, आज उस फसल की क्षति को आप कम कर दे रहे हैं।
1: जी
0: अगर आप तिरपाल फर्श पे बिछा के पतली परत के रूप में कर
1: हाँ
0: रहे हैं,
1: पक्का मकान हुआ है कोई छत पर भी रख सकत
0: जी
1: है, ठीक है
0: जी
1: ना।
0: तो आपको ध्यान देना है कि आपको तेज सूर्य की रोशनी में नहीं करना है।
1: अच्छा
0: दूसरे, आप

0: जब उसको सुखा रहे हैं तो उसको दो दिन में दो तीन बार आप चला दीजिए
1: हाथे से
0: धान
1: चला
0: को,
1: दीजिए
0: हाथ
1: हाँ
0: से, पैर से, या आपके पास
1: जी,
0: कोई साधन हो उससे चला दीजिए। इससे धान अच्छी तरीके से सूख
1: उलट
0: पाएगा,
1: पुलट जाए और सब
0: अच्छे
1: चौतरफा
0: से
1: सूख जाए।
0: सूख पाएगा। और एक विशेष चीज़ और रखिए, शाम को 4 बजे के पहले धान को इकट्ठा करके उसको ढक लीजिए ताकि ओस का प्रभाव फिर से उसको गीला ना करे। सुखाते समय धूल मिट्टी, कणों से और कीटों से बचाव करने का कुछ उपाय जरूर रखें।
1: अच्छा, अब भंडारण में और का कुछ सावधानी बरतें क्या?
0: जी, ये आपने जो 140 दिन की मेहनत की है उसको साल भर तक रखना है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उसको उपयोग करना है। इसके लिए आप अगर लघु अवधि में भंडारण करना है तो आप मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, बांस के डलिया, जूट की बोरियों आदि में आप इनको रख सकते हैं। इनकी वायुरोधक क्षमता कम होती है जिसकी वजह से आप इसमें कम अवधि तक भंडारण कर सकते हैं। लंबी अवधि तक भंडारण करना है तो आपको पूसा कोठी, धात्विक बीन, बखार, साइलो, प्लास्टिक के ढक्कन बंद ड्रमों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके धान सुरक्षित होंगे और आपको निकालने में भी आसानी होगी। जिस कमरे में भंडारण कर रहे हैं,
1: हाँ, ये सबसे
0: ये
1: जरूरी बात
0: सबसे
1: है।
0: ज़रूरी चीज़ है कि जिस कमरे में भंडारण कर रहे हैं या जिस बोरे में रख रहे हैं या जिस बर्तन में रख रहे हैं, एक प्रक्रिया धूम्रीकरण होती है उसको कर लेना चाहिए। इसमें आप नीम की पत्तियों को एक तसले में जलाकर उसके धुएं को पूरे कमरे में फैला दें। इससे जो वायु में आपके कीट होंगे वो और जीवाणु होंगे वो नष्ट होंगे। उसके बाद दीवालों पर आप कुछ कीटनाशक छिड़काव करवा दें जिससे आपकी कीटों की समस्या तो हल हो जाएगी भंडारण में।
1: जी
0: एक चीज़ और ध्यान रखें, फर्श पर जब भी आप भंडारण करें तो फर्श पर या तो प्लास्टिक बिछा दें या फिर लकड़ी के सूखे हुए पटरे बिछा के उसके ऊपर आप बखार, बोरे जो भी रखने हो वो आप रखें। इससे ज़मीन से नमी, सीलन की समस्या नहीं आएगी और आपका बीज सुरक्षित रहेगा, धान सुरक्षित रहेगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर दीवार से सटा के बोरों को न रखें,
1: ताकि
0: लगभग
1: नमी ना आवे भाई
0: लगभग
1: वो।
0: 12 इंच की दूरी उसमें रखें।
1: अच्छा, यह तरीके से अगर भंडारित करिए तो हमारा धान का फसल, धान का उत्पाद सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तिवारी जी, आप हमें कार्यक्रम में आए, बहुत बढ़िया जानकारी देना, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
0: हाँ
1: देखा
0: भैया,
1: भैया, हाँ
0: कितना बढ़िया जानकारी देन भैया, मुकेश तिवारी भैया। और हम कहे भैया आपो जो ना इतना फरिया फरिया के पूछे आज जो ना है कि धान की कटाई आदि तथा भंडारण की उचित विधि कैसे करें हमारे पंच भैया रेन। और ये बहुत ज़रूरी रहा भैया, कितना मेहनत के बाद ये फसल पैदा हो थे और तनी तनी लापरवाही में, तनी अज्ञानता में या जानकारी के अभाव में हम लोग अपने फसल के नुकसान कई दिन जाते। तो भैया
1: ना।
0: देखा, हम कहे कि
1: हाँ
0: अपने पंच भैयान के हम सब इतना कार्यक्रम तरह तरह के जानकारी से भरा सुनवावा जाते, मुला जब तक पंच भैया के कोनो प्रतिक्रिया हो पे ना मिले
1: हाँ तो
0: तो।
1: भाई, उनका कार्यक्रम कैसा लगा था
0: हाँ हाँ
1: या एक अलावा भी का उनका सोचा भाई, का उनका चाहा भाई, तो इहो हमारो तो हार फट जाए ना कि जाना जाए और उनकर जो उन भाई चाहत है उनका कार्यक्रम में शामिल की जाए,
0: बिल्कुल
1: ताकि
0: बिल्कुल
1: उनकर उनका और ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से खेती किसानी, घर परिवार, सेहत के तौर पर बागवानी में वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें।
0: बिल्कुल भैया। तो हम कहे पंच भैया, देखा आप अपने प्रतिक्रिया के हमारे आकाशवाणी के जो ना है फेसबुक पे भी जाके अपन दे सकत हैं, साथ ही साथ जो ना आकाशवाणी के व्हाट्सएप नंबर पे भी अपन ही प्रतिक्रिया दे सकत हैं। तो ओकरे खातिर हम कहे भैया पहले नंबर बता दिन जाए,
1: बताओ भैया।
0: तो पंच भैया नंबर लिखा 800-4926-2500। एकदम हम कहे भैया फिर से बता दे
1: हाँ
0: अंग्रेजी में भी जो ना है कि 8004926250।
1: हम समझे थे कि भैया किसान भैया अरे जुड़ी हैं कार्यक्रम से, और कार्यक्रम और अच्छा बन सके, उनकर और ज़्यादा जरूरत पूरी हो सके, तो चले के बेला होता तो पंच बदल जाए। अच्छा पंचो,
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस वक्त आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब हम आपको संवेद स्वरों में एक देशभक्ति पुनर्रचना सुनवाने जा रहे हैं।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में ये देशभक्तिपूर्ण रचना। इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। अब से थोड़ी ही देर में

0: हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव समेत 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीते। और झांसी में कल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 3 डिवीजन की 29 टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में विकास, औद्योगिक निवेश, कृषि, रोजगार, तकनीक और जन कल्याण से जुड़े 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की यात्रा सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना से संचालित रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
1: कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद इस बात के लिए सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी रहेगी कि उन्होंने राज्य के विकास को निरंतर अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से आज उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का नया मॉडल बनकर उभरा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश को मिली एक बड़ी सौगात है। ये एयरपोर्ट आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। इसी भावना के साथ कैबिनेट ने एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है।
1: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्रिपरिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास करती।
0: कैबिनेट बैठक में दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। बैठक में प्रदेश की नगरीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
2: जनपद भदोही में भारतीय संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत एवं समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के द्वारा किए गए सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान के दृष्टिगत उनकी स्मृति एवं सम्मान में जनपद भदोही का नाम परिवर्तित किए जाने पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि जनपद का नाम संत रविदास नगर भदोही रखा जाए। आखिर में उनकी दी गई विशेष बात यह है कि उनका नाम भी रहेगा संत रविदास जी का और भदोही भी रहेगा।
0: बैठक में ब्याज माफी योजना 2026 लागू करने और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान क्रय नीति को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य शामिल हैं। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। राज्यसभा सदस्यों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना था। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों में धर्मपाल सिंह, राम प्रकाश पाल, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह

0: रावत, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडे और राम प्रताप सिंह शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 अक्टूबर को होने वाले CJP विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं पूरी तरह बंद न की जाएं। ये निर्देश दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद करने और रेलवे के कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द करने के फैसले के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से जारी रहनी चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आप जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
1: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
2: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।
3: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे।
1: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झांसी में कल से 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 शुरू होगी। इसमें 3 डिवीजन की कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का समापन 21 अक्टूबर को होगा। उत्तर प्रदेश हॉकी के अध्यक्ष और खेल निदेशक डॉ RP सिंह ने आज लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी मिलना गौरव की बात है।
4: उत्तर प्रदेश तो सदैव खेलों को दुनिया में विकास कर रहा है और उसी के सापेक्ष हमने वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप ले लिया जिसका कल उद्घाटन हो जाएगा 10 तारीख को और 21 अक्टूबर को उसका समापन किया जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव समेत 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीते। और झांसी में कल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 3 डिवीजन की 29 टीमें लेंगी हिस्सा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, वक्त हो चला है संस्कृत कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दीक्षा पांडे से उनकी संस्कृत में काव्य रचनाएं।
1: मम गीत शीर्षकम देवी नदीश्वरी सुरसरी गंगे।

संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दीक्षा पांडे से उनकी संस्कृत में काव्य रचनाएं। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की। एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में सुगम संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं SK घोष। इनके स्वर में हम आपको भजन और गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं योगेश प्रवीण के लिखे इस भजन के साथ।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारे कलाकार हैं एसके घोष। प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं गोपाल दास की ये गीत रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एसके घोष के स्वर में भजन और गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब की पुण्यतिथि है। आज का हमारा ये विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम समर्पित है उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किए चंद नगमों के प्रति।

तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में आज एक खालीपन का दिन है। आज ही के दिन यानी 9 अक्टूबर 2015 को संगीत का वह सूरदास हमें छोड़ गया था जिसने आंखों से नहीं आत्मा से देखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री रविंद्र जैन साहब की, जिनकी उंगलियों पर सरस्वती थिरकती थी। सोचिए, एक बालक जो जन्म से संसार का रूप नहीं देख सकता, वही बालक पूरे देश को प्रेम का, भक्ति का, गांव की मिट्टी का रूप दिखा देता है। 28 फरवरी 1944 अलीगढ़, जहां रविंद्र जैन जी का जन्म हुआ। पिता पंडित इंद्रमणि जैन, माता किरण जैन। संगीत की आरंभिक शिक्षा और फिर एक ऐसा सफर जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया।

आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर हम उनकी 5 अमर रचनाओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के 5 रंगों को समझने का प्रयास करेंगे। सादगी, दर्शन, प्रेम, समर्पण और संस्कार।

कितनी पवित्रता, कोई आडंबर नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो आत्माओं का शुरू में मिलन, यही रविंद्र जैन का दर्शन था।

दोस्तों, राधा का समर्पण और मीरा की दीवानगी, प्रेम के दो छोरों को एक ही धागे में पिरो दिया रविंद्र जैन साहब ने। राधा ने कृष्ण को पाया, मीरा ने खोया, पर दोनों का प्रेम अमर हो गया। रविंद्र जी का संगीत इसी द्वंद्व को समझाता है।

और अब प्रेम का तीसरा रंग। प्रथम प्रेम की अनुभूति, वो प्रेम जो आंखों के झरोखों से दिल में उतर जाता है।

श्रोताओं, 1978 में इस गीत ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेम करना सिखाया और आज भी जब ये गाना बजता है तो लगता है पहला प्रेम फिर लौट आया है। समय बदला, सदी बदली, पर रविंद्र जी का संगीत फिर जवां हुआ।

दोस्तों, समय बदला, सदी बदली, पर रविंद्र जैन साहब का संगीत फिर जमा हुआ राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तली फिल्म विवाह में, जहां उन्होंने विवाह जैसे पवित्र संस्कार को शुरू में परिभाषित किया, और यह है उनका चौथा रंग समर्पण का।

और श्रोताओं, अब इस सूर्यात्रा का अंतिम पड़ाव, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रंग भारतीय संस्कार, गांव की मिट्टी, लोक की महक और सात फेरों का अटूट बंधन, नदिया के पार जैसी फिल्म जिसने शहरों में गांव को जिंदा कर दिया, और आज के कार्यक्रम का अंतिम गाना।

दोस्तों, दूल्हे की बहन की ये लोक टेक बबुआ ओ बबुआ, जब तक सात फेरे पूरी ना हो तब तक दुल्हन पराई नहीं होती, इससे बड़ा संस्कार का गीत और क्या हो सकता है। यही थी हमारे रविंद्र जैन साहब। फिल्म चितचोर की सादगी से लेकर नदिया के पार के संस्कार तक, जन्म से अंधे थे पर उन्होंने हमें जीवन देखना सिखाया। आज 11वीं पुण्यतिथि पर आकाशवाणी प्रयागराज की ओर से हम उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से विनम्र नमन करती हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा विशेष कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब पर। आज उनकी पुण्यतिथि है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपने सुनने वालों को याद दिला दी, आज रात 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम प्रसारित होगा कहकशा, और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे।

कल रात 9:30 पर संस्कृति भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। कल की हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 4:30 पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम महालया। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह 6:45 पर प्रसारित होगा। कल के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी की वार्ता, उच्च रक्तचाप का होम्योपैथी द्वारा समाधान।

कल दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी कमल सिंह की वार्ता। विषय होगा महिलाओं के सपने और परिवार का सहयोग।

कल सुबह 10:30 पर हमारे संग्रहालय से। इसके तहत हम आपको सुनवाएंगे पूर्व नाट्य कलाकार विजय बोस से युक्ति भद्र दीक्षित की ये विशेष भेंटवार्ता। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रही थी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20

0: क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में तीन राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलग वेत्री कड़गम ने दो दो तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएनआरसी को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसीडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमरीका के फैसले से

0: दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
1: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
0: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
1: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
2: There are three parties that have got licenses.
3: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
5: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
6: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
7: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन।
4: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत

0: ईद में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Nogaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by US regarding permanent labour certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin Navnetham Navi Pillai wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket,

0: और बैन अक्वामी कानून के फरोग के लिए उनकी खिदमात के बदले नोबेल इनाम से नवाजा गया। और क्रिकेट में रांची में दूसरे T20 बैन अक्वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 250 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के मशरकी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजी नगर दोनों असेंबली सीटों के जिमनी इंतखाबात में बड़ी जीत दर्ज की है। नंदीग्राम में बीजेपी की उम्मीदवार हसी रानी रथ ने अपने करीबी कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को शिकस्त दी। तमिलनाडु में बरसर इकतदार टीवी के पार्टी ने मधुरंतकम और धरापुरम असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात में जीत दर्ज की है। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद ने आसान जीत दर्ज की। ये सीट पुडुचेरी के वजीर आला एन रंगासामी के जरिए खाली की गई थी। आसाम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए जिमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने जीत दर्ज की है। शर्मा ने AIUDF के सरबरा बदरुद्दीन अजमल को 1,40,000 वोटों से बआसानी शिकस्त दी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आसाम की नगांव और मगरबी बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर पार्लियामानी सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज एक बार फिर बीजेपी NDA की बेहतरीन हुक्मरानी में आवाम के भरोसे की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और पार्टी कारकुनों की सख्त मेहनत की सताइश की। वज़ीर आज़म ने पुडुचेरी की थट्टन चावड़ी सीट पर जीत हासिल करने पर NDA के इत्तेहादी AINRC को भी मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि पार्टी को और तकवियत देंगे क्योंकि ये लोगों की बहबूद और उनके रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की तकमील के लिए अनथक काम कर रही है। वजीर दाखला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने आज कहा कि मगरबी बंगाल, आसाम और पुडुचेरी के ज़िमनी इंतखाबात और हाल ही में मुनक़िद हुए राजस्थान और त्रिपुरा के मुकामी इंतखाबात में बीजेपी की जीत इस बात की अक्कासी करती है कि आवाम ने INDIA इत्तेहाद को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर CJP की जानिब से मुजव्वजा एहतजाजी मुजाहरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। आज नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिल्ली पुलिस की जॉइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरे या दीगर प्रोग्राम मुनाकिद करने की इजाज़त हासिल करने के लिए कम अज़ कम 10 दिन पहले दरख्वास्त जमा कराना ज़रूरी है। मोहतरमा प्रसाद ने कहा कि इससे कबल CJP को जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन CJP ने मुकर्रा रहनुमा खतूत और अपनी जानिब से दी गई यकीन दहानियों पर अमल नहीं किया था। जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि नई दिल्ली के इलाके में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल, अवाम की सिक्योरिटी और ट्रैफिक जवाबित को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है।
1: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
0: मोहतरमा प्रसाद ने मजीद कहा कि इलाके में फिलहाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफ़ा 163 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज हैं। जॉइंट कमिश्नर ने खबरदार किया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेगी। सिक्योरिटी वजूहत के पेश नज़र आज रात 9 बजे से कल अगले अहकाम जारी होने तक 57 मेट्रो स्टेशनों पर दाखिले और बाहर निकलने की सहूलत बंद है। तहम नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दीगर मुतल्लिका मेट्रो स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए मेट्रो लाइन तब्दील करने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इन मेट्रो स्टेशनों में राजीव चौक, सेवा तीर्थ, लोक कल्याण मार्ग, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली और मंडी हाउस शामिल हैं। इस दौरान दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशनों के दरमियान ट्रेन खिदमात भी आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के दरमियान नमो भारत ट्रेन खिदमात मुकर्रा निज़ामुल औक़ात के मुताबिक जारी रहेंगी। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो इसी के मुताबिक अपनी आमोदरफ्त का मंसूबा बनाएं। रेलवे के DCP बी भरत रेड्डी ने कहा कि जंतर मंतर पर कल होने वाले मुजव्वजा एहतजाज के पेश नज़र दिल्ली में अमन कानून बरकरार रखने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस GRP के अहलकारों की खसूसी तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 7 बड़े रेलवे स्टेशन हैं और वहां मजमूई तौर पर GRP के 334 अहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 120 खातून अहलकार भी शामिल हैं।

0: नई दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहुंचने वाली सभी एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को उनके निकलने के मुकाम से ही मनसूख कर दिया गया है। ये वो ट्रेनें हैं जिन्हें आज दोपहर 2 बजे के बाद से रवाना होना था और कल नई दिल्ली पहुंचना था। रेलवे की वजारत ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के अतराफ कल सड़कों पर ट्रैफिक की मुमकिना संगीन सूरत हाल के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो कल 10 अक्टूबर को कौमी राजधानी में होने वाले CJP एहतजाज के मद्देनजर इस बात को यकीनी बनाएं कि दिल्ली मेट्रो और रेलवे खिदमात पूरी तरह से मुअत्तल ना रहें। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि अवामी निज़ाम ट्रांसपोर्ट मुकर्रा निज़ाम के मुताबिक काम करते रहना चाहिए ताकि मुसाफिरों को कम से कम मुश्किल का सामना करना पड़े। जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए दी गई यकीन दहानी को भी नोट किया कि इंतजामिया इन पाबंदियों पर नज़रसानी करेगी। बेंच ने मुतनासिब नज़रिया अपनाने पर जोर देते हुए यह मुशाहिदा किया कि मुकम्मल पाबंदी और अमन व क़ानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए खिदमात को मुनज़्ज़म करना अलग अलग बातें हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो गए हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी हैं और इस अनथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के अज़्म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही है। आज की अपनी खसूसी सीरीज़ में इस बात का तज़किरा किया जा रहा है कि किस तरह सेमीकंडक्टर मिशन जैसे इकदामात के ज़रिए इस विज़न को हकीकी शक्ल दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सेमीकंडक्टर्स जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियादी इकाइयाँ और मुआशी ताकत की बुनियाद हैं। मसनूई ज़हानत, टेली मवासलात, बरकी नकल व हमल, दिफा और जदीद सनतों में इनका अहम रोल है। पिछले 2 बरस में आलमी सेमीकंडक्टर्स बाजार में 20% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। मुल्क की 6 रियासतों में 12 सेमीकंडक्टर्स को मंजूरी दी गई है जिसमें 1,64,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमाई के वादे किए गए हैं। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर शोबे के लिए एक पुरकशिश मकाम बनने के लिए तमाम इकदामात कर रहा है।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बात करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर परसून शर्मा ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर का सफर अब महज ख्वाहिश और उम्मीद की कहानी नहीं रहा बल्कि अमली इकदाम की जानिब बढ़ रहा है। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सऊदी अरब के रियाज में किंग खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर कल हुए हमले में 3 सऊदी शहरियों की मौत हो गई और कई दिगर जख्मी हो गए। शहरी आबादी से मुतालिक सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी GACA ने यह इत्तला दी है। इन हमलों में हवाई अड्डे की इमारत और सऊदी एयरलाइंस के तैयारे को निशाना बनाया गया जिसके सबब माली नुकसान भी हुआ। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज इस बात पर जोर दिया है कि अमरीका की जानिब से मुस्तकिल मुलाजिमत की तस्दीक के प्रोग्राम PERM के सिलसिले में ऐलान करदा इकदाम दोनों ममालिक के मुश्तरक मकासद को आगे बढ़ाने में मददगार नहीं हैं। आज से पहले नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बासलाहियत अफराद की आमदरफ्त से भारत और अमरीका दोनों की मईशतों को फ़ायदा पहुँचता है। उन्होंने वाज़े किया कि इससे जहाँ भारतीय शहरियों के लिए मौके पैदा होते हैं वहीं अमरीकी कंपनियों को भी जदीद तरीन सलाहियतों के हामिल माहरीन तक रसाई हासिल होती है। इसके नतीजे में जिद्दत तराजी, तहकीक, पैदावारी सलाहियत, मुसाबिकत और रोज़गार के मौके में भी इजाफा होता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इससे अमरीका में कंपनियों के शेयर होल्डर्स की दौलत में इजाफे के साथ साथ दोनों ममालिक को बाहमी तौर पर काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। जनाब रणधीर जायसवाल ने वाज़े किया कि अमरीकी हुकूमत की जानिब से बाज कंपनियों को PERM प्रोग्राम से मुअत्तल किए जाने के कदम से बजात खुद पहले से जारी H-1B वीज़ों की कानूनी हैसियत या वीज़ा रखने वालों और इनके ज़ेर किफ़ालत अफराद की हैसियत मुतासिर नहीं होती। ताहम इस कदम से मुतासर कंपनियों के अहल मुलाजमीन के मुस्तकिल रिहाइश के इजाज़तनामे यानी ग्रीन कार्ड हासिल करने के अमल पर कुछ असर पड़ सकता है।
3: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H-1B वीज़ा

0: कार्यक्रम से अलग है। परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: अमरीका के नायब सदर JD वेंस के गैर अमरीकी कारकुनों से मुतालिक तबसरों के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस तरह की इस्तेलाहात का इस्तेमाल गैर मुनासिब है और इस हकीकत को नज़रअंदाज किया जाता है कि अमरीका में काम करने वाले भारतीय पेशावर अफराद आला तालीम याफ्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि कई नस्लों से जारी नकल मकानी और तारिकीन वतन की आमद से खुद अमरीका की तारीख भरी पड़ी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी इस्तेलाहात इस्तेमाल करना जिनमें तारीख के तकलीफदा और नौ आबादियाती दौर की यादें वाबस्ता हैं इंतहाई तोहीन आमेज़ है। अक़वामे मुत्तहिदा के भारत और पाकिस्तान में फ़ौजी मुबस्सिरीन के ग्रुप से मुतालिक सवाल के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत का मुस्तक़िल मौक़िफ़ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान शिमला माहदे पर दस्तखत के बाद इस ग्रुप की अफादियत ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में कौमी सलामती की तशरीह बदल गई है। जनाब सिंह ने कहा कि कौमी सलामती का तायुन महज हिफाजती फोर्सेज की तादाद से नहीं होता बल्कि ये दिफाई शोबे में खुद इन्हेसारी से भी तय होती है। वज़ीर दिफा आज नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स चैंपियंस अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% और इसके साथ बड़ी एक अचीवमेंट यह भी है कि इस लैंडमार्क माइलस्टोन में DPSUs का कंट्रीब्यूशन 54.84% है और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 45.16% तक देखने को मिला है।
1: भारत नजाद जनूबी अफ्रीका के कानूनदान नवीनतम नवी पिल्ले को अमन और बैन अलाक़वामी कानून के फरोग में इनकी खिदमात के बदले आज नोबेल इनाम से नवाजा गया। वह अक़वामे मुत्तहिदा में इंसानी हकूक की साबिक सरबरा रह चुकी हैं और बैन अलाक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में जज के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। क्रिकेट में रांची में 5 T20 बैन अलाक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 250 रन का निशाना रखा है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। BJP ने मगरबी बंगाल में रिजी नगर और नंदीग्राम असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव जीत लिया है। तमिलनाडु में हुक्मरान TVK ने मधुरंतकम और धारापुरम सीटों के जिमनी इंतखाब में जीत हासिल की है। पुडुचेरी में कांग्रेस ने थट्टन चावड़ी असेंबली हलका बरकरार रखा है। BJP ने आसाम की नगांव लोकसभा सीट भी जीत ली है। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर एहतजाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र दिल्ली मेट्रो के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली तमाम मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके इब्तदाई स्टेशनों से ही मनसूख कर दिया गया है। और भारत ने जोर दिया है कि मुस्तकिल मुलाजमत की तस्दीक के प्रोग्राम परम के सिलसिले में अमरीका की जानिब से ऐलान करदा इकदाम दोनों ममालिक के मुश्तरक मकासद को आगे बढ़ाने में माविन नहीं है।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम कहकशा।
4: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपनी महफिली गजल के इस खास प्रोग्राम कहकशा में। श्रोताओं, कहकशा यानी सितारों का झुरमुट, और आज इस झुरमुट में हमने सजाई हैं 5 ऐसी नगमें जो दिल के बहुत ही करीब हैं। तो चलिए चिरागों को थोड़ा मध्यम करते हुए दिल के दरवाजे खोलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये सफर। पहला नगमा है प्यार के बाद, आवाज है चंदन सिंह जी की। श्रोताओं, इश्क का एक दस्तूर है, प्यार होने से पहले सब हसीन लगता है और प्यार के बाद सब कुछ और भी हसीन हो जाता है।
5: प्यार के बाद

वाह क्या बात है, प्यार के बाद की दुनिया ही अलग होती है। और जब प्यार में ठोकर लगी और दुनिया सितम करने लगी तो याद आती है मल्लिका की गजल बेगम अख्तर साहिबा की। अगला नगमा उन्हीं का। श्रोताओं, ये सिर्फ गजल नहीं, ये एक पूरी दास्तान है।

डायरी के पन्ने पलटना है। श्रोताओं, अब जरा नए जमाने की बात करते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपनों को भी दगा दे देती है। इसी पर एक बहुत ही खूबसूरत गजल हरिहरन जी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं। मतला है, दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले। समाप्त फरमाइए।

दगा दुनिया ने दिया और दुनिया का फलसफा क्या है, आइए जरा ठहर कर सोचते हैं। जिंदगी क्या है? अल्ताफ राजा जी कहते हैं, फलसफा ये है जिंदगी।

अथवा जिंदगी का फलसफा कोई आज तक समझ ही नहीं पाया। और श्रोताओं, अब आज की महफिल का आखिरी नगमा, सबसे भारी और सबसे गहरी गजल, उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश है जिन्हें सुनकर दिल भर आता है। आज हम आपके लिए लाए हैं आज हम बिछड़े हैं। बिछड़ना कितना आसान लफ्ज है, लेकिन जिसका दिल बिछड़ा हो उससे पूछिए जनाब, इस एक लफ्ज में कितनी सदियां छुपी हुई हैं। जगजीत सिंह साहब की आवाज में ये शेर समर्थ फरमाइए।

तो दोस्तों, ये थी आज की कहकशा, पांच नगमी पांच एहसास। अगली कहकशा में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, गजलों को दिल के करीब रखिएगा और आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र सुनते रहिएगा। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो दोस्त संतोष श्रीवास्तव को प्रोग्राम कहकशा खत्म करने की इजाजत दीजिए। शब्बा खैर।

अभी आप सुन रही थी गजलों का प्रोग्राम कहकशा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, अब से कुछ क्षणों में। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रात के इस प्रहर में हम आपको भूले बिसरी चंद ऐसे लग्न सुनवाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको सुकून मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आसमान से छनछन कर आती चांद की रोशनी से रोशन हो रहा है मन का कोना कोना। छत की मुंडेर पर बजता रेडियो और रेडियो पर बजता पसंदीदा गीत। ख्यालों की महफिल सजी है, गानों के सुर दिल पर मरहम लगा रहे हैं। सुहानी रात और गीतों की मिठास।

दिल के कोने कोने में ठहरी है तुम्हारी याद, तुम्हारे होने का एहसास, तुम्हारे मिलन का लम्हा। मोहब्बत के लम्हों को थाम लो, हर खुशी और गम के पल को अपनी मुट्ठी में ख्वाबों की तरह कैद कर लो।

करे। कई बरसों से खुद को अपनी कोई खबर नहीं, कई बरसों से अपनी ही धुन में रमा है ये दिल, कई बरसों से ख्वाबों की महल बना रहा है दिल, कई बरसों से दिल को सुकून नहीं। एक रोज जब हमने दिल से कहा सुकून का कोना खोज तसल्ली से बैठो, तो दिल मुस्कुरा उठा। बस उस दिन से सुकून ने पहरा डाला है जिंदगी में।

0: वो आई तो सैकड़ों फूल खिल गए मन की गमली में। जैसी मांझी को मिल जाए किनारा, ऐसे दिया उन्होंने जिंदगी को सहारा। वो मिले उस मोड़ पर जहां था घोर अंधेरा, लेकिन आते ही उनकी जैसे कोई रोशन हुआ हो तारा। जैसे खिल आई हो चांदनी, सैकड़ों फूलों की खुशबू बिखर गई उनके आने से।
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत,

जब भी उनकी याद आती है महक उठती है फिजाएं, हसीन हो जाती है शाम। याद आता है वो मंजर जब दिल का मामला बयां करने चले थे। याद आते हैं वो लम्हे सामने वो कहने चले थे कुछ और, कह गए कुछ और, उनके सामने बदल गई थी बात। न जाने क्या हुआ कि जुबा से नहीं फूटे अल्फाज, ठगी से रह गए हम, नहीं कह पाए वो जो कहने चले थे।

दोस्तों, दुखों को बिसरा जाने की ताकत है प्यार। प्यार की आंच में नफरत सुलग कर नष्ट हो जाती है, लेकिन प्यार में डर सबसे ज्यादा हावी होता है, जो कमजोर बनाता है प्यार करने वालों को।

और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं वो गाना जो एक आशिक का इजहार नहीं, एक एहसास है। हर पल उस एक शख्स के पास रहने का एहसास जिसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के बहुत ही करीब होता है।

0: इस प्रोग्राम के तहत आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उन फिल्मों के नाम गीतकार संगीतकार और गायक कलाकारों से आपको रूबरू कराते चले। मेरी सूरत तेरी आंखें, शैलेंद्र एस जी वर्मन, मुकेश और सुमन कल्याणपुर। फिल्म अमानत, साहिर लुधियानवी, रवि और मोहम्मद रफी।
1: न करो बात करीब जाओ।
0: और ये गाना फिल्म मिलाप से बोल नक्शलालपुरी के संगीत ब्रजभूषण का और आवाज मुकेश की।

0: और आखिर में फिल्म ब्लैकमेल, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आवाज किशोर कुमार साहब की।
1: तुम रहती हो।
0: श्रोताओं, आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर जरूर बताइएगा। और अब हमें प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। वक्त हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग मालखौस में ख्याल गायन। आइए सुनिए।

别要为难着，为难。

कहूं जगे माता है

re ma ba da ma re sa ma re ba ma da ma ra ni da ga ra ni

Mother, money,

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग मालकौस में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है वक्त, हो चला है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचारों का, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। समाचारों की बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि

0: हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram, BJP candidate Hasirani Rath defeated Congress candidate Milan Pradhan by over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakha Rao Sarkar defeated Ghulam Nabi Azad of the Aam Janata Unnayan Party, AJUP, by more than 75,000 votes. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand won the Thattanachavadi Assembly by-election by 8,482 votes. In Tamil Nadu, the ruling Tamil Ragavetri Karagam, TVK, won the by-elections in Madurantakam and Dharapuram. K. Margatham Kumaravel won Madurantakam by 73,801 votes, while B. Satyabham won Dharapuram by 9,471 votes, defeating S. Suganya of DMK. In Assam, BJP candidate Devashish Sharma won the Nagaon Lok Sabha by-election, defeating AIUDF chief Badruddin Ajmal by over 1,40,000 votes. Congress candidate finished third. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP-NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories showed that the people have completely rejected the India alliance. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing media in New Delhi today, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance.
3: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Kokro Janta Party. The application is regarding an intimation for protest of on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 10 अक्टूबर सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 4:26 और 55 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम महालया।

विश्वव्याप्त सलिल सिंधु से पृथ्वी का उद्धार करने के हेतु धारण कर लेते वराह रूप। सर्व प्रकाशमय महाशक्ति परमा प्रकृति का आज हो रहा है आविर्भाव, है समस्त जीव लोक परमानंद मग्न

भगवती महामाया है त्रिगुणात्मिका, रजोगुण के अनुसार ब्रह्मा की गृहिणी वाग देवी, सत्वगुण के अनुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, और तमोगुण के अनुसार

0: चन यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्।
1: पूर्व कल्प के अवसान के पश्चात प्रलय काल में जब समस्त संसार कारण सलिल में परिणत हुआ, तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति प्रभाव संग्रहित कर कारण

अवसान पर नाभि कमल से जाग उठे वाविकल्प के सृष्टि विधाता ब्रह्मा, परंतु विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकैटव असुर ब्रह्मा के कर्म और अस्तित्व के नाश के लिए उद्दत हो उठा। तब पद्म योनि ब्रह्मा ने योग निद्रा मग्न सर्वशक्तिमान विश्वपिता विष्णु को जागृत करने हेतु जगत की स्थिति संहार कारिणी विश्वेश्वरी जगत जननी हरिनेत्र निवासिनी निरुपम

तिरे वजा खड़गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण घूरुणी परिघायुधा सौम्य सौम्य तराशेष सौम्य बस्वती सुंदरी।

वैकुंठ ही प्रलय अंधकार रूपिणी तामसी देवी सबन से प्रबुद्ध हो विष्णु के अंग प्रत्यंग से बाहर प्रकट हो आई भंग हुई भगवान विष्णु की योग निद्रा तत्काल उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और छिन्न कर डाला मधुकैटव का मस्तक ब्रह्मा पुनः ध्यान मग्न हो बैठे इधर दुर्धर्ष दैत्यराज महिषासुर के पराक्रम से परास्त हो देवतागण स्वर्गाधिकार से वंचित हुए

उपस्थित हुए। कारण ब्रह्मा के वरदान से ही था महिषासुर अपराजेय। उनके द्वारा दैत्यराज का क्षय असंभव जान उनके निर्देशानुसार देवताओं ने कमल योनि ब्रह्मा जी को अपना प्रतिनिधि बना वैकुंठ में जा देखा। भगवान विष्णु और देवाधिदेव भगवान शिव परस्पर आलाप मग्न है। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कह सुनाई महिषासुर के दुर्विषह अत्याचार की करुण कहानी। स्वर्ग भ्रष्ट देवताओं का विषाद सुनते ही परम शांति योगीवर महादेव का सुगौर मुखमंडल क्रोध से रक्त कमल के समान लाल हो उठा। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की तन

महाशक्ति के आह्वान से आकाश में निनादित हो उठे महाशंख, विश्व योनि विष्णु और महारुद्र के शरीर से प्रस्फुटित हो निकली तेज की परम ज्योति, ब्रह्मा और देवगण के मुखमंडलों से निकल चला तेज, पर्वत प्रमाण ज्योति पुंज ने प्रज्वलित उताशन के तुल्य दे

ज्ञान किरणों से दिगमंडल को पूर्ण कर दिया। तेज रश्मिया एकत्रित हो परमा सुंदरी रूपवती दिव्य देवी मूर्ति में परिणत हुई। जगन मातृका महामाया के दर्शन कर

का आनंद श्वेत वर्ण है, नेत्र कृष्ण वर्ण, अधर पल्लव आरक्तिम करतल द्वय कामराव, वे कभी सहस्र भुजा वाले, कभी अष्टादश भुजे, कभी प्रकाशित भ्रेम कांत।

है तथापि देवगण के कार्य सिद्ध हेतु सर्वदेव शरीरज तेज पुंज से प्रकाशित उनका अभिनव आविर्भाव हुआ महिषमर्दिनी रूप में। देवी सज्जिता हुई विचित्र रूपा रणचंडी रूप में, हिमाचल ने सिंह वाहन दिया विष्णु ने चक्र पिनाक पाणी शंकर ने शूल यम ने दंड काल देव ने सुतीक्ष्ण खंग चंद्र ने अष्ट चंद्र शोभा से युक्त चर्म सूर्य ने धनुर्बाण विश्वकर्मा ने अभेद वर्म ब्रह्मा ने अक्षमाला और कमंडल कुबेर ने रत्न हार दे डाला सभी देवताओं ने महादेवी को नाना अलंकारों से अलंकृत एवं विविध प्रहरणों से सुसज्जित कर उनसे असुर विजय यात्रा के निमित्त प्रार्थना की। रणदुंद विध्वनि से विश्व चराचर

द्वादशभुजी सिंहवाहिनी मूर्ति का परिग्रह धारण कर फूंका अपना शंख, देवी के रणाह्वान का अनुसरण कर प्रसन्न दौड़ पड़ा महाबलशाली महिषासुर। असुर राज देख स्तंभित हुआ, तेजस्विनी महालक्ष्मी की तेज प्रभा से त्रिलोक ज्योतिर्मय हो उठे। उनका मुकुट आकाश का चुंबन करने लगा, पदभार से सारी पृथ्वी नत हो गई और धनुष्टंकार से प्रकंपित हो उठा संपूर्ण रसातल। देव सेनापति ने महाशक्ति के जय मंत्र के गुण से

देवी के साथ महिषासुर का भीषण संग्राम छिड़ा। देवी के अस्त्र प्रहार से दैत्य सेना छिन्न भिन्न हुई। महिषासुर क्षण क्षण पर रूप परिवर्तन कर अनेक प्रकार के कौशल का करने लगा विस्तार। महिष से हस्ती बना सिंह रूपी दैत्य की रण रमत्वता को देवी ने क्षण में प्रशमित किया। तत्काल वे इंद्रजालिक नयन विमोहन पुरुष वेश में प्रकट हुआ। देवी के हाथों प्रत्याख्यान हो वे पुनः महिष मूर्ति धारण कर बैठा।

0: राज दावाग्नि के समान सारे रण क्षेत्र में विध्वंस करने लगा शत्रुओं को। नाना प्रहरण धारिणी देवी दुर्गा ने मधुपान करते हुए महिषासुर को ललकारा।
1: अर्ज कर यश खलंग बुढ़ो मधु यावत पिबाम हम मैं हते प्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता।
0: देवताओं ने हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से देखा देवी दुर्गा ने महिषासुर को

नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम स्वीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत स्वेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया तवैतदप्या यथे विश्रम अलंघ्य वीर्ये वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्ता तव देवी भेदा श्रीयः समस्ता सकला जगत्सु तवैकया पूरितमम्ब यैतत् कापि स्तुतिः सद्य परा परोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं सूता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके

नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भशरिके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूलचंद्राहीधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूर कुक्कुटवृजे महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप शमस्थाने नारायणी नमस्ते शंख

नमस्ते नृसिंह रूपेण उग्रेण अद्भुत दैत्यानि कृतोद्यमे त्रैलक्ष्य त्राण सहिते नारायणी नमस्ते कीरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमस्ते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दर्शाकराल बदले